0: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
1: साइन मिलना मुश्किल है लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो। विजिट सिग्नेचर क्विजिन .net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Hey, तुमने कभी insurance लिया?
2: लिया.
1: कभी policy समझ भी आया?
2: नहीं आया.
1: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे? इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर. नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास. कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-7772. That's 972-863-7772.
3: Visit www.sanadainc.com today.
0: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
3: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
0: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
4: तुमसे मिलके दिल का है.
3: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
0: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.

इन डैलस की जनता, क्या हाल है आप सभी लोगों के? मेरे तो बिल्कुल ठीक है. यस, इट इज योर बेस्टी एपी द हिपी बैक इन द हाउस एट फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम. और आज है ट्यूसडे 25th ऑफ अगस्त. एग्जैक्टली, अगस्त भी खत्म हो गया यार. देखते देखते पता भी नहीं चला 2026 खत्म हो जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा और हम बोलेंगे अरे ये 2026 गया कहाँ. आई हैड सो मेनी गोल्स इन लाइफ, हैड प्लान. कोई बात नहीं गाइज, अभी नहीं, अभी तक आपने नहीं किए अपने गोल्स तो अभी भी टाइम है, 3-4 महीने हैं तो कर लो फटाफट से. लेकिन गोल से याद आया भाई, टुडे इज अ वेरी सैड डे. सैड क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कंट्री म्यूजिक स्टार्स कॉल्ड डॉली पार्टन पास्ड अवे. एंड अगर आपको डॉली पार्टन के बारे में नहीं पता, आपको वो गाना पता ही होगा, आई विल ऑलवेज लव यू. डू यू रिमेम्बर दैट सॉन्ग? ऑफ कोर्स इट वाज मेड फेमस बाय द वन एंड ओनली विटनी ह्यूस्टन. हाउएवर द सॉन्ग इज ओरिजिनली डॉली पार्टन सॉन्ग. तो गाना ओरिजिनली डॉली पार्टन का है और उसको बहुत लोगों ने गाना बाद में किया है. एंड डॉली पार्टन इज लाइक सो आइकॉनिक कंट्री म्यूजिक की जब हम बात करें, अमेरिका की जब बात करें, आई मीन इट इज सिनोनिमस विद डॉली ऑनेस्टली. इन फैक्ट इट इज सो पॉपुलर दैट टेनेसी में देर इज अ प्लेस, देर इज एक्चुअली अ प्लेस डेडिकेटेड टू डॉली पार्टन कॉल्ड डॉलीवुड. एग्जैक्टली गाइज, आपको अगर नहीं पता तो अब मैं बता देती हूँ. टेनेसी में एक थीम पार्क एंड रिजॉर्ट है एंड दैट होल थीम पार्क इज डेडिकेटेड टू डॉलीवुड, डॉली पार्टन, एंड इट्स कॉल्ड डॉलीवुड. एंड शी हैज़ डन सम इनक्रेडिबल कॉन्ट्रीब्यूशन. सम ऑफ हर कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्लूड रिकॉर्डिंग 50 स्टूडियो एल्बम्स. शी स्टार्टेड रिकॉर्डिंग इन 1967 एंड शी हैज़ ए 60-year करियर as a American singer, songwriter, actress, businesswoman and a philanthropist. And she is also a very, very successful crossover artist. Crossover matlab, do teen genre mein wo ga chuki hain, country mein and pop music mein. And she has also acted in lots of film and television. So, guys, today is a really sad day because this icon just passed away. However, we will celebrate her legacy. And I'm going to play you one of her most favorite tracks of my, नहीं, one of my favorite tracks of hers. थोड़ा गड़बड़ हो गया, फ्लिप हो गया. दिस वन्स कॉल्ड जोलीन. इसको बहुत लोगों ने गाया है. इनफैक्ट बियॉन्से हैज ऑल्सो कवर्ड दिस सॉन्ग, बट शी इज डन अ डिफरेंट मॉडर्न वर्जन ऑफ इट. दिस में जोलीन इज सो आइकॉनिक क्योंकि इट्स लाइक अ गर्ल इज टॉकिंग टू अनदर गर्ल. लिरिक्स पूरे एक ऐसा है कि आप कॉन्वर्सेशन हो रही है, ठीक है. एक हर हस्बैंड, ही गोज टू द बैंक and there in at the bank there is a bank में जो teller नहीं होती, bank जो कर्मचारी होते हैं वो वहाँ पर खड़ी हुई, बड़ी सुंदर सी है और वो उसके husband के साथ flirt कर रही है. तो उसने उस बंदी के ऊपर गाना लिख दिया कि जोलीन जोलीन आई एम बेगिंग यू, मेरे husband से दूर रहो, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम माई मैन. आई थिंक सच अ ग्रेट ट्यून एंड पीपल हैव इंटरप्रेटेड इट इन मेनी डिफरेंट वेज. सो I'm going to start the show today with Jolene.

And guys, we are back. Yes, this is Ippy the Hippie and you are still listening to Funasia Radio 104.9 FM. I started today's show by tributing the one and only amazing country singer, actress Dolly Parton, who is truly, truly, truly, truly an American icon. तो अभी मुझे थोड़ी देर पहले कॉल आई फ्रॉम वन ऑफ आर लिसनर्स जिनको बड़ा अच्छा लगा कि मैंने डॉली पार्टन के बारे में बोला है बिकॉज ही इज़ अमेरिकन इंडियन एंड फॉर पीपल हु आर बॉर्न इन द यूएस यू गाइज नो हु डॉली पार्टन इज फॉर अ लॉट ऑफ द रीसेंट इमिग्रेंट्स जो हम मेरे जैसे हैं आई मीन यू नो आई ऑफ कोर्स न्यू अबाउट डॉली पार्टन बिकॉज आई वॉज रियली इन टू लाइक अ लॉट ऑफ अमेरिकन म्यूजिक व्हेन आई वॉज स्टिल इन इंडिया हाउएवर अ लॉट ऑफ यू डोंट नो अबाउट इट लेकिन जिनको नहीं पता उनके बारे में डॉली पार्टन इज सच ए लेजेंड एंड सच एन अमेरिकन आइकॉन शी डाइड ऑफ कैंसर लेकिन उन्होंने अपने कैंसर का मतलब रोना धोना बिल्कुल भी नहीं किया शी डिडंट मेक अ बिग डील अबाउट इट शी डिडंट वांट पीपल टू नो अबाउट इट एंड इट वाज वेरी क्वाइटली शी पास्ड अवे एंड जिनको नहीं पता डॉली पार्टन वॉज बॉर्न शी वॉज वन ऑफ शी वॉज द फोर्थ वन आउट ऑफ अ फैमिली of 12 kids. उनके जो parents थे वो बहुत ही गरीब farmers थे Tennessee में रहते थे and उनके parents के 12 बच्चे थे आप imagine कर सकते हो 12 मतलब बहुत सारे बच्चे तो आप जितना भी पैसा क्यों ना कमा लो आपके अगर 12 बच्चे हो जाएंगे there's no way you are going to be well off. So what she describes is they struggled so badly with finances and they were really dirt poor. This is quote unquote dirt poor. This is the language she used. They were so poor that when she was born, उनके father के पास जो delivery person के लिए जो आए थे उनको पैसे देने के लिए भी पैसे नहीं थे तो उन्होंने उनको एक बोरा corn meal दिया from whatever he grew on his farm. मतलब और पैसे थे ही नहीं उनके पास. So I think you know from there to wherever she rose in her career, like you know had an entire city kind of named after her and then she became a legend and then she didn't stop contributing to that she contributed to the American society गरीबों की बहुत मदद करी she became a philanthropist she donated a lot of money जिनको पता है उनके बारे में you know she passed on all her fortunes धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके I mean she kept donating and she kept spreading good in the world basically so I think the person who just called me up उन्होंने बोला कि she is such an icon and we should all learn from her and her husband actually passed away बस 6 महीने पहले और उनका प्यार इतना strong था that you know I mean one could also say that she passed away from heartbreak because they were together for almost like 60 years or something I don't have the exact information with me here मैं थोड़ा रिसर्च करती हूँ और लेकिन he wanted to share that he's like desi community should really know about her because she is such a fantastic American icon theek hai to ek gana main aur bajaungi thodi der baad lekin pehle aap ye gana suniye this is aasman ki dukaan by the incredible swarathma

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
2: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
3: ये तारा वो तारा हर तारा।
2: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
4: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
5: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099.
6: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
0: Floors clean?
7: Check.
0: Windows clean?
7: Check.
0: Kitchen clean?
7: Check.
0: Air ducts clean?
7: Wait, air ducts भी clean करना होता है?
5: बिल्कुल, जो दिखता है वो तो हम clean कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duck Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush, plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices ya phir any business, Duck Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
8: होचो
9: होको
8: होचो
9: होको
8: होचो
9: इट्स होको।
10: अरे बस भी करो यार।
9: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है।
10: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है, एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूड़ी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा।
2: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में। वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस। टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज।
11: हेलो गाइस, दिस इज मी किंजल दवे एंड यू आर लिसनिंग एंड वाचिंग फन एशिया रेडियो।
2: What would happen to your business if a key owner, partner, or top employee passed away unexpectedly? Would revenue, credit, client relationships, or daily operations be affected? Key Person Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
1: Hello everyone, welcome back. You are listening to Ippy the Hippie on Fun Asia Radio 104.9 FM and this is my show, An Evening in Dallas. That's right guys. So, we were talking about Dolly Parton. This song you have heard 100%. This is dedicated to all the ladies out there. I feel like Dolly Parton was such a girl's girl. She wrote a lot of songs for the girls as a girl, you know. And this is absolutely iconic. This song is one of my favorite songs also. Pehla wala bhi tha, ye bhi tha, ye bhi hai. Iska naam hai 9 to 5. This is for all my working women out there. We know you're hustling and raising your kids and managing a family while holding a 9 to 5 job. So this one goes out to you guys. Girls, rather, I should say.

Hello, hello, guys. It is 9:45 on the clock. 44, actually, to be specific and precise. लेकिन 45 बनने में अभी सिर्फ 30 सेकेंड्स ही बाकी है, तो why not? हम राउंड ऑफ कर देते हैं उसको, ठीक है? तो गाइज, आपको पता है ना कि जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, लेकिन कई बार सुहाने सफ़र में एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं. एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा. एग्जैक्टली. तो आप तब क्या करेंगे जब एक्सीडेंट हो गया? सुहाना सफ़र वहीं पे ख़त्म हो जाता है. तो उस टाइम पे अपनी ज़िंदगी को सुहाना बनाते हुए रहने के लिए यू नीड टू कॉल अप उमर ख्वाजा जी, बिकॉज ही इज अ अटर्नी हु इज गोइंग टू हेल्प यू फाइट योर लीगल बैटल एंड हेल्प यू गेट द क्लेम दैट यू आर एंटाइटल टू एंड यू पे नथिंग अनलेस योर केस इज वन. तो इंश्योरेंस कंपनीज के साथ डील करना वैसे ही बहुत ही सर माथा पच्ची का काम है. आई मीन आई डोंट लाइक इट, मे बी यू डू. हाउएवर, इफ यू डोंट वॉन्ट टू डू इट योर सेल्फ, you can always delegate it to an expert who's done this lots of times and knows what to do. So don't wait. Call 469-300-5046 or visit attorneyomer.com for your free consultation. Okay? This segment is brought to you by Omer Khwaja. So, without further ado, let's go into some more songs. I hope you're having a wonderful, wonderful Tuesday. Almost midweek ho chuka hai. Matlab, कल हो जाएगा टेक्निकली मिड वीक, लेकिन उसके बाद फिर वीकेंड आने वाला है. वीकेंड में तो बहुत कुछ होने वाला है गाइज, तो आई विल टेल यू मोर अबाउट इट एज वी कीप लिसनिंग टू दिस. ठीक है, तब तक के लिए आप ये गाना एंजॉय करिए.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
3: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
4: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
3: Kya matlab?
4: Oura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
3: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
4: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
3: Ab to karna hi padega, madam.
5: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
6: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। This summer, enjoy 20% off on all appetizers, tandoori items and mocktails only at Tandoori Flame. Chicken tandoori, malai chicken tikka, paneer tikka, momo ya soya champ. Ab har bite ke saath milegi extra savings. Dine in only at Tandoori Flame Garland, where every bite is a celebration.
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
9: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
11: जिंदगी एक रंगमंच है
12: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल। रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो। दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन। फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग, एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com।
13: वी नीड टू टॉक।
14: अब क्या हुआ?
13: Nothing. It's not you.
14: Oh no.
13: It's the distance.
14: Distance? We live 10 minutes apart.
13: अरे, it's actually not you.

0: it's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
1: Irving, that long-distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches, and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
2: Utha le re deva, utha le re baba, ye boxes utha le re.
3: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्डवाइड को बुलाते हैं।
2: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
3: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
2: इंडिया तक।
3: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्डवाइड, कंप्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
1: SFL वर्ल्डवाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
4: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
5: Hi, this is Vinay Pathak and you're listening to me on Fun Asia Radio.
6: And guys, we are back on Fun Asia Radio 104.9 FM. And you're listening to An Evening in Dallas. And this is your bestie, Ippy the Hippie. We are back, guys. So today, we were dedicating Dolly Parton kar rahe the because we lost an incredible icon to cancer. And unfortunately, she's no longer with us. I played two songs by Dolly Parton. And I absolutely love her. She's so cool. लेकिन आज आपको पता ही है 8 बजे क्या होता है भाई, 8 बजे होता है हमारा गिव अवे टाइम. तो आज का गिव अवे भी इज थीम्ड अराउंड डॉली पार्टन. नाउ आई नो वट यू गाइज आर गोना से कि भाई हमें तो डॉली पार्टन के गाने पता ही नहीं है. वी आर देसी फोक्स, वी डोंट नो कंट्री म्यूजिक दैट वेल. ओनली गिने चुने, देर आर सम पीपल हु नो कंट्री म्यूजिक. बट गाइज मैं आपको ये बताना चाहूंगी, डोंट वरी, क्योंकि क्योंकि अगर आपको नहीं भी पता है वो गिव अवे तो आई विल, अगर आपको नहीं भी पता है वो, ये बहुत आसान है. मैं आपको बहुत अच्छा सा हिंट देने वाली हूँ. अभी मेरा जो विंडो था ना जिसमें मेरे गिव अवे का अनाउंसमेंट था वो पता नहीं कैसे बंद हो गया है. तो एक गाना मैं लगाती हूँ व्हाइल आई रिजॉल्व दिस टेक्निकल इशू. आई डोंट नो हाउ दैट हैपेंड, बट आप ये गाना सुनिए. वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस सॉन्ग एंड देन वी विल प्ले द गिव अवे, आई प्रॉमिस.

0: वी आर बैक गाइज. मेरा विंडो पता नहीं अचानक से कैसे बंद हो गया, जिसमें सारी अनाउंसमेंट थी और मैं सोच रही हूँ उसको देख के भाई ये हो क्या रहा है यहाँ पे. मैंने तो कुछ दबाया भी नहीं, आई डेंट इवन क्लिक ऑन एनी थिंग. समटाइम्स कंप्यूटर्स ग्लिच एंड अनफॉर्चुनेटली दैट इज द रियलिटी. तो गाइज इट इज नाउ टाइम फॉर आवर गिव अवे. एग्जैक्टली. तो आज का गिव अवे कहाँ से है? ऑफकोर्स इट इज फ्रॉम द वन एंड ओनली फूडिस्तान इन ऑबरी. इफ यू आर लुकिंग फॉर फ्रेश ग्रोसरीज, हलाल मेड फ्रेश प्रोड्यूस, बेकरी आइटम्स, लाइव पानीपुरी, फ्रेश गन्ने का जूस, केटरिंग सर्विसेज एंड इवन एन अपस्केल डाइनिंग एक्सपीरियंस, देन यू नीड टू विजिट फूडिस्तान इन ऑबरी. They bring everything they see all in one place. Plus, they offer the lowest price match guarantee. Exactly. So, if you find a better price somewhere else, you can just straight away go to Foodistan and be like, bro, I found it cheaper at the other store. So, mujhe bhi aap mujhe $2 ka discount de do ab, theek hai? And on top of that, they will give you free delivery on all orders above $30 within 5 miles. And if you mention Fun Asia, then you get a 10% discount. What? Win-win. Exactly. So, aaj ka hamara gaana hai, aur aaj ka hamara giveaway hai from The Vibe Restaurant inside Foodistan. So, Foodistan ke andar, there's an upscale restaurant called The Vibe. And if you win the giveaway, then you can receive a free dish from The Vibe Restaurant. Exactly. Usko aap thoda naan rice ke saath pair kariye and it's a winner-winner chicken dinner solution. Exactly. So, without further ado, let's go ahead and play the game. My number is 972-235-5555. Aaj ka mera game hai, of course, the same, sounds like, लेकिन बिकॉज यू नो वी आर डूइंग अ डॉली पार्टन स्पेशल, वी वर एक्चुअली नॉट एनी मोर. तो आज का हमारा, शी पास्ड अवे टुडे, तो आज का हमारा गिव अवे वाला क्वेश्चन इज ऑल्सो डेडिकेटेड टू डॉली पार्टन. आई एम गोइंग टू प्ले यू अ डॉली पार्टन सॉन्ग और आपको बोलना है द हिंदी सॉन्ग दैट इज इंस्पायर्ड बाय द सॉन्ग. ओके, सेम गेम ऑलवेज. ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है बिकॉज इसमें आपके कान बहुत, दे हैव टू बी लाइक सुपर शार्प टू एक्चुअली फिगर आउट कि ये कहाँ कहाँ से, क्योंकि थोड़ी बहुत चेंजेस करी है. चलो, हमारे बॉलीवुड कंपोजर्स ने थोड़ा सा इनोवेटिव थोड़ा सा बनाया हुआ है, उतना एग्जैक्टली सुनाई नहीं देगा आपको क्लियरली. लेकिन कोई बात नहीं, ट्राई तो करो, ट्राई करके देखो क्या पता आपको शायद पता भी चल जाए. अगर पहले कुछ एक दो मिनट में मेरे को कोई जवाब नहीं आया किसी से, एंड एवरी वन डजंट गेट इट, देन आई विल गिव यू अ हिंट एंड देन you can get the correct answer. If I will play you the antra, not the mukhda of the song, I will play you the antra and then uske baad aapko gana pata hi chal jayega. Itna mushkil nahi hai. But before we start, I'll give you one little hint. This is from the 2001 movie called Lajja, which features, if I'm not mistaken, there is Madhuri Dixit and then there is Manisha Koirala, I think. Yes, I think Manisha Koirala is there. So, और ये गाना जो है, लेकिन ये गाना इज पिक्चराइज्ड ऑन उर्मिला मातोंडकर एंड शी इज इनवाइटिंग समवन. ओके, उससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकती, नहीं तो फिर आपको गाना ही बता दूंगी फिर आंसर. तो गाना सुनते हैं. दिस इज ऑफ कोर्स द वन एंड ओनली जोलीन, जो मैं पहले बजा चुकी हूँ. आपको बताना है वॉट इज द बॉलीवुड सॉन्ग दैट इज इंस्पायर्ड बाय द सॉन्ग. इट इज फ्रॉम द मूवी लज्जा एंड उर्मिला मातोंडकर इज फीचर्ड इन दैट. एंड वी हैव आवर फर्स्ट कॉलर. हाय, कैन यू हियर मी?
1: हेलो, दिस इज वैशाली.
0: हाय वैशाली, कैन यू हियर मी?
1: यस.
0: ओके वैशाली, आप करेक्ट आंसर बताइए. चलिए,
1: आइए
0: आ जाइए. एग्जैक्टली. क्या बात है वैशाली,
1: के हमें तड़पाइए.
0: एग्जैक्टली वैशाली, क्या बात है, आप जीत चुकी हैं आज का गिव अवे. वाह, तालियां तालियां गाएं हमारी यार ये.
1: थैंक यू सो मच.
0: ऑफ कोर्स. तो गाइज, आप क्योंकि हम ये गाना बजा रहे थे, आप ये गाना सुनिए विच वॉज इंस्पायर्ड बाई जोलीन और आप मुझे बताइए आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं वो प्रॉपरली जोलीन का पूरा रेफरेंस. वैशाली आप लाइन पे रहिए, ठीक है? आई एम गोना प्ले अ सॉन्ग एंड देन आई विल टेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन सो आई कैन गिव यू द गिव अवे आफ्टर दैट, ठीक है?
1: Sure.
0: Okay, guys, enjoy this song from 2001. हम इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं आगे. लेट्स मेक इट अ लिटिल मोर फन.

गाइज बिफोर वी गो ऑन टू दैट सॉन्ग, अभी इट इज 8:25 ऑन द क्लॉक. हम 5 मिनट में ब्रेक में जाने वाले हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले मैं आपके लिए बहुत अच्छा सा गाना बजाने वाली हूँ, यही वाला जो मैंने शुरू किया था फ्रॉम द मूवी गहराई, नहीं फ्रॉम द मूवी डूबे, नहीं फ्रॉम द मूवी गहराई है यार, नाम मूवी क्या है गाना क्या है मैं कन्फ्यूज हो गई. बट ऑफकोर्स दिस इज बाय द आर्टिस्ट ओफ OAFF. द सॉन्ग इज कॉल्ड डूबे फ्रॉम द मूवी गहराया. इट फीचर्स दीपिका पाडुकोन. एग्जैक्टली. तो आपने अगर नहीं देखी है, इट्स अ वेरी मॉडर्न काइंड ऑफ लव स्टोरी. आई वुडंट रियली कॉल इट बॉलीवुड बिकॉज इट्स नॉट मेन स्ट्रीम बॉलीवुड, इट्स अ लिटिल बिट हटके, बट इट्स अ प्रीटी गुड मूवी, यू शुड चेक इट आउट. इट्स गहराइयां, दैट्स द नेम ऑफ द मूवी. लेकिन जाने से पहले गाने में, आपको पता है ना डिनर टाइम हो चुका है यार. फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को इज नाउ सर्विंग द ऑल न्यू वीकेंड लंच बफे फीचरिंग माउथ वाटरिंग डिशेज, एक्साइटिंग लाइव काउंटर, शेफ स्पेशल, फ्रेश फ्लेवर्स दैट यू विल कीप गोइंग बैक टू. All of this for just $24.99. Enjoy the buffet on Saturday, Sunday from 12 p.m. to 3 p.m. Take your family and friends and make your weekend delicious at the Flavor Lounge in Frisco. Exactly. The Flavor Lounge where good food and great memories are made. Exactly. तो हम लोग, मैंने कितनी बार बोल दिया यार. तो आप ये गाना सुनिए. We will be back after this really short break.

0: यार मॉडर्न मंगलसूत्र ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ।
1: तो कैरेटलीन चलो, दे नाउ हैव अ स्टोर इन फ्रिस्को एंड द बेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस।
0: सीरियसली, कैसा कलेक्शन है?
1: मिनिमल, डायमंड, एलिगेंट, एवरीडे स्टाइल्स। यू विल प्रोबेबली स्पेंड मोर टाइम चूजिंग देन शॉपिंग।
2: फाइंड द मंगलसूत्र दैट मैचेस योर स्टाइल एट कैरेटलीन, होम टू द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस। कैरेट लेन नाउ ओपन इन फ्रिस्को नेक्स्ट टू तनिष्क।
3: बेटा, 95% आए?
4: हाँ मम्मी।
3: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
5: मेरा?
3: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
5: वो
6: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
7: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
8: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूं।
9: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
2: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
3: वेट, इतना सब और प्राइस?
2: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
10: मैं ही तो।
11: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
10: फिकर नॉट, वी हैव द परफेक्ट सॉल्यूशन।
2: द फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को ब्रिंग्स यू इट्स ऑल न्यू वीकेंड लंच बुफे, फ्रॉम फ्लेवरफुल इंडियन फेवरेट्स टू लाइव काउंटर्स एंड शेफ स्पेशल, 25 प्लस डिशेस, वेलकम ड्रिंक, चाट, एपेटाइजर्स, मेन कोर्स एंड डिजर्ट, सैटरडे टू संडे 12 PM टू 3 PM। दिस वीकेंड लेट द फ्लेवर लाउंज डू द कुकिंग।
12: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhi Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
13: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
5: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
13: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
5: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
13: सच में? सब संभालेंगे?
5: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
2: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
0: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
3: तुमसे मिलके दिल का है।
2: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
0: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
4: Guys, this is Fun Asia Radio 104.9 FM and you are listening to the one and only absolutely incredible khud apni tareef karne se main kabhi nahi chookti. This is Ippy the Hippie and you are listening to my show An Evening in Dallas. That is right guys. Abhi baatein kam karte hain, thoda gaana wana sunte hain. Abhi to aapne itne sare commercial sune to baatein baad mein karungi main. Pehle aap ye gaana suno. Bade din ho gaye, Prabhu Deva to Dallas mein aake chala bhi hai, lekin hum unke gaane abhi bhi sun rahe because we like it, right?

हेलो हेलो एवरीवन, वी आर बैक। तो गाइस, कल हम लोग बात कर रहे थे ट्विन फ्लेम्स के बारे में। वी विल कंटिन्यू दैट डिस्कशन टुडे, और उसके बारे में हम बात करेंगे 9 बजे के बाद, क्योंकि दैट इज़ अराउंड द टाइम व्हेन वी आर ऑल वाइंडिंग डाउन एंड इट्स टाइम टू बी अ लिटिल स्पिरिचुअल, आई गेस। आई मीन, आई डोंट नो, आई लाइक टू गो इन टू अ लॉट ऑफ दीज स्पिरिचुअल थिंग्स जस्ट बिफोर आई गो टू बेड, सो देन आई कैन ड्रीम अबाउट नाइस थिंग्स व्हेन आई एम स्लीपिंग। आई डोंट नो, आप क्या करते हैं? मैं तो वही करती हूँ, मैं तो मेडिटेट करती हूँ। एक गाइडेड मेडिटेशन चल रही होती है, सो दैट आई स्लीप कामली आफ्टर दैट। लेकिन वो सब की बातें छोड़ के गाइज, पता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ बींग काम एज एन इमिग्रेंट इन अमेरिका इज टू हैव योर वीजा सिचुएशन सॉर्टेड, राइट? तो इफ यू आर ऑन एन H1B, F1, L1 और एनी अदर काइंड ऑफ इमिग्रेंट नॉन इमिग्रेंट वीजा एंड प्लानिंग योर पाथ टू US परमानेंट रेजिडेंसी, दैट इज गेटिंग योर ग्रीन कार्ड एंड एवरीथिंग, देन लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता कैन एब्सोल्यूटली हेल्प। अटर्नी सीमा मेहता एंड हर एक्सपीरियंस टीम, दे स्पेशलाइज एक्सक्लूसिवली इन इमिग्रेशन लॉज, इंक्लूडिंग EB-5, इन्वेस्टर वीजाज, फैमिली एंड एम्प्लॉयमेंट वीजाज, पर्म लेबर सर्टिफिकेशन एंड US सिटीजनशिप। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन EB-5 इन्वेस्टर वीजा प्रोग्राम, ईमेल info@seemamehtalawfirm.com। ओके, सो डोंट वेट, द सूनर यू फाइल योर ग्रीन कार्ड द सूनर इट कम्स। एंड एनी वेज, आजकल तो कुछ भी चल रहा है वीजा शीजा को लेकर, तो जस्ट मेक श्योर यू हैव दिस बेस एब्सोल्यूटली कवर्ड। दिस वन गोज आउट टू ऑल द फैंस ऑफ लकी अली। ये गाना मैं बहुत बार बजा चुकी हूँ, बट मैं दोबारा बजा रही हूँ क्योंकि आई एब्सोल्युटली लव इट, वाई नॉट? अच्छा, ये तो वो ही आ रहा है, थोड़ा आगे इसको फॉरवर्ड करते हैं।

गाइस, पता है फ्राइडे को क्या है भाई? फ्राइडे को रक्षाबंधन है। और पता है फ्राइडे को और क्या है? फ्राइडे को मेरा जन्मदिन है। वाह, इट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट ईयर फॉर मी। और मैं क्यों है वो मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि नहीं तो आपको मेरी एज पता चल जाएगी। तो लेडीज़ को अपनी एज नहीं बतानी होती, पता है ना आपको? इट्स रूड टू आस्क। लेकिन पता है और क्या, और तनिष्क फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स भी चल रहा है। तो राखी के इस शुभ अवसर पर अगर आपको अपनी बहनों के लिए या मेरे जन्मदिन पे अगर आपको कुछ गिफ्ट विफ्ट देना है, देन हेड डाउन टू तनिष्क फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स। एंजॉय एब्सोल्युटली 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस, प्लस 0% डिडक्शन ऑन द एक्सचेंज ऑफ ओल्ड गोल्ड अबव 18 कैरेट। सेलिब्रेट द सीजन विद टाइमलेस स्पार्कल एट तनिष्क। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। क्योंकि डायमंड्स वैसे तो लिखा गया है कि यू नो दे आर जस्ट नॉट फॉर एवर, मतलब दे आर डेफिनेटली फॉर एवर, लेकिन उसके अलावा दे आर ऑल्सो इरेजिस्टिबल। एग्जैक्टली। तो आप ये गाना सुनिए एंड देन वी विल कम बैक एंड टॉक अबाउट ट्विन फ्लेम्स।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो ये वाला।
3: ओह हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, khoobsurat libas khushiyon ko dugna kar deta hai.
6: Har khushi mein aapke saath, Manyavar Mohe, traditional celebration wear for men, women and children, crafted with exquisite blended fabrics. Manyavar Mohe, located on Regent Boulevard off 635 East in Irving.
7: Floors clean.
8: Check.
7: Windows clean.
8: Check.
7: Kitchen clean.
8: Check.
7: Air ducts clean.
8: Wait, air ducts bhi clean karna hota hai?
9: Bilkul. Jo dikhta hai, wo to hum clean kar lete hain. Lekin jo nahi dikhta, uska kya? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No rotor brush. Plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices, ya phir any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
10: भूख लगी
11: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
9: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
12: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी।
13: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
14: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
13: नहीं।
14: बुककीपिंग अपडेटेड है?
13: नहीं।
14: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
13: वो भी नहीं।
14: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
4: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुककीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy.
15: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
16: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
17: Hi, this is Saif Ali Khan. You are listening to Fun Asia Radio.

तो गाइज हम बात कर रहे थे कल ट्विन फ्लेम्स के बारे में. तो जिनको नहीं पता, जिन्होंने कल मेरा रेडियो शो नहीं सुना था, ट्विन फ्लेम्स इज बेसिकली दिस कॉन्सेप्ट. इट इज़ अ स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट जिसमें बताते हैं दैट यू नो यू मीट समबडी इन योर लाइफ एंड सम हाउ इट सीम्स लाइक यू ऑलरेडी नो देम एंड देर इज़ सम काइंड ऑफ यू नो अ फेमिलियरिटी. आप कभी उनसे पहले नहीं मिले हो, पहली बार मिल रहे हो, लेकिन कभी भी आपको लगता है कि यार मैं तो आई थिंक आई नो दिस पर्सन एंड दिस पर्सन सीम्स वेरी वेरी फेमिलियर, यू नो. एंड समटाइम्स वी कांट रियली एक्सप्लेन दोज काइंड ऑफ कनेक्शंस, राइट? या फिर कई बार आपको लगता है कि यू नो यू मीट समबडी एंड यू आर लाइक एन इंस्टेंट, लाइक यू फील सेफ, यू नो. एंड आई डोंट मीन लाइक यू फील सेफ लाइक कि दिस पर्सन इज अ सेफ ऑप्शन फॉर मी, बट इट फील्स लाइक योर सोल इज सेफ, इट इज काम, इट फील्स लाइक देव रीच्ड होम. एंड उस तरह की एक बहुत बहुत सेफ फीलिंग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है. आई एम ट्राइंग टू लुक फॉर अ बेटर वर्ड. अभी मैं ढूंढते ढूंढते अगर मुझे मिल जाता है कोई बेटर वर्ड, देन आई विल टेल यू अबाउट इट. सो दैट इज द आइडिया ऑफ ट्विन फ्लेम्स. अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा और इंटरेस्ट है, देन यू कैन ऑलवेज गूगल इट. हाउएवर टुडे आई विल टॉक अबाउट व्हाट आई थिंक अबाउट ट्विन फ्लेम्स. आई मीन येस्टरडे वी वर टॉकिंग अबाउट ट्विन फ्लेम्स कैन समटाइम्स कम इन टू आर लाइव्स जस्ट टू शो अस एक आईने में शक्ल, ठीक है. मतलब भाई दीज आर द थिंग्स दैट आर रॉन्ग इन यू. एंड समटाइम्स द ट्विन फ्लेम्स कम इन योर लाइफ, देन दे एक्चुअली सेपरेट, देन दे कम बैक, देन दे गो अगेन. एंड इट्स जस्ट लाइक दिस कॉन्स्टेंट पुल एंड पुश. एंड देर इज ऑलवेज दिस रनर चेज आइडिया. देर इज वन पर्सन हु इज ऑलवेज गोन बी रनिंग अवे फ्रॉम यू एंड द अदर वन इज ऑलवेज चेजिंग. लेकिन द ट्विन फ्लेम यूनियन ओनली हैपन्स वेन यू बेसिकली स्टॉप डूइंग दैट इक्वेजन ऑफ रनिंग एंड चेजिंग. एंड इंस्टेड ऑफ परस्यूइंग द रिलेशनशिप, यू परस्यू योर सेल्फ, यू परस्यू इनर ग्रोथ, सेल्फ ग्रोथ एंड सेल्फ रियलाइजेशन एंड डेवलपमेंट. दैट्स वेन द ट्विन फ्लेम एक्चुअली स्टिक्स अराउंड. तो दिस इज अ थियोरी. नाउ आई डोंट नो हाउ मच ऑफ दिस इज ट्रू. हाउ एवर यू नो ट्विन फ्लेम एनर्जी, वी टॉक्ट अबाउट दैट फर्स्ट रिकग्निशन, दैट फीलिंग ऑफ आई डोंट नो यू बट सम हाउ आई नो यू. वी टॉक अबाउट सिंक्रोनिसिटीज, वी टॉक्ट अबाउट द रनर एंड चेजर जैसे मैं बता रही थी, वी टॉक्ट अबाउट सेपरेशन, वी टॉक्ट अबाउट दिस इनसेन ऑब्सेशन, देन वी टॉक्ट ऑल्सो अबाउट अटैचमेंट, वी टॉक्ट अबाउट द पॉसिबिलिटी दैट समटाइम्स वॉट वी कॉल अ स्पिरिचुअल कनेक्शन में एक्चुअली बी रिवीलिंग एन इमोशनल पैटर्न दैट नीड्स हीलिंग. मे बी आपके अंदर कोई एंक्शियस अटैचमेंट है, मे बी आपके अंदर एक कोई अवॉइडेड अटैचमेंट है विच यू नीड टू हील एंड यू नीड टू वर्क ऑन. नाउ देर इज ओनली वन क्वेश्चन दैट एवरीबडी वॉन्ट्स आंसर्ड, ऑल ऑफ यू. आई एम श्योर देर इज ओनली वन क्वेश्चन दैट यू ऑल वॉन्ट नो. दैट क्वेश्चन माइट बी वेन दे माइट बी आस्किंग दिस क्वेश्चन जब आप रात को सोने जाते हो ना, सोने से पहले दे द क्वेश्चन दैट दे आस्क देयर फ्रेंड्स, दे क्वेश्चन दे ऑलवेज टाइप इन टू गूगल, या फिर दे आस्क देयर एस्ट्रोलॉजर और टैरो रीडर्स, दे आस्क देयर साइकिक्स, दे आस्क द यूनिवर्स, विल माई ट्विन फ्लेम एवर कम बैक. अगर आप वो सवाल बार बार पूछ रहे हैं, देन यू आर इन द राइट प्लेस. बिकॉज येस टुनाइट आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग डिफरेंट. तो ठीक है, इंस्टेड ऑफ आस्किंग, या फिर इंस्टेड ऑफ रात को आप बैठ के सोच रहे हो कि क्या मैं आई ट्विन फ्लेम इज आर दे गोना कम बैक एवर, टुनाइट डोंट आस्क दैट क्वेश्चन. इंस्टेड मे बी आस्क हु विल आई बिकम इफ दे डोंट कम बैक. And that question, the answer to that question is maybe that prompts the growth that you are looking for. And maybe then your twin flame might come back. But don't get attached to that. Get detached.

guys, this song goes out to that person, yeah, aapke liye, who's ever loved someone so intensely, so deeply, that they temporarily forgot ki unki zindagi kya thi unke bagair. कई बार क्या होता है, हम इतना ज़्यादा प्यार में मग्न हो जाते हैं कि हमें हम भूल जाते हैं कि हम क्या होते हैं बिना प्यार के. बट यू नो व्हाट, यू आर योर ओन पर्सन, तो मे बी आपको यू नीड टू टैप डाउन इनटू दैट.

गाइज, अब आते हैं यूनियन के बारे में. समटाइम्स डज यूनियन, डज इट एक्चुअली मीन री यूनियन? जैसे मैं बता रही थी, ट्विन फ्लेम के कॉन्सेप्ट में ना होता है कि देर इज अ रनर, देन देर इज अ चेजर, एंड फाइनली वन दैट यूनियन हैपन्स, इट्स लाइक मैजिकल. आप लाइक पिछले जन्म का साथ ही बहुत सब, यू नो, बॉलीवुड मूवीज तो बहुत बन चुकी है इस कॉन्सेप्ट में, लाइक पिछले जन्म का प्यार इन दिस जन्म एंड ऑल ऑफ दैट. ये वाली कॉन्सेप्ट हमारे हमारे कल्चर में न्यू नहीं है. ये बहुत सालों से ये वाला कॉन्सेप्ट चले आ रहा है. आज हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं. तो ये जो यूनियन जब होता है ना, इन ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअलिटी, यूनियन इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज दैट पॉइंट जब दो पीपल, जब टू पीपल दे फाइनली कम टुगेदर आफ्टर अ लॉन्ग सेपरेशन. नाउ दैट सेपरेशन कुड बी अ मंथ, 2 months, 6 months, अ ईयर, समटाइम्स मैनी मैनी ईयर्स. ओके, वॉट हैपन्स देन? द रनर स्टॉप्स रनिंग, द चेजर स्टॉप्स चेजिंग. बोथ द पीपल हील विद इन देम सेल्व्स, बोथ पीपल बिकम स्पिरिचुअली अवेकंड, एंड फाइनली दे फाइंड देयर वे बैक टू ईच अदर. वॉट अ ब्यूटिफुल स्टोरी, इज़न्ट इट? बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है इसमें? रियल रिलेशनशिप्स डोंट कम विद अ स्पिरिचुअल गारंटी. आई विश रियलिटी कुड बी प्रिडिक्टेड बाई एस्ट्रोलॉजर्स एग्जैक्टली लाइक द वे इट इज़. या फिर स्पिरिचुअलिटी में जो हम ये जो मीनिंग्स ढूंढते रहते हैं हर चीज़ों में, यू सी 11-11, यू सी 2-2-2-2, एंड देन यू फील लाइक अरे द एंजल्स आर वॉचिंग आउट फॉर मी. आई विश रियलिटी कुड बी समथिंग लाइक दैट. बट समटाइम्स अ लिटल डोज ऑफ प्रैक्टिकलिटी ऑल्सो इज नीडेड, है ना? बिकॉज इफ यू बिलीव दैट योर ट्विन फ्लेम इज डेस्टिन टू रिटर्न, यू कैन समटाइम्स पुट योर इंटायर लाइफ ऑन होल्ड. बिकॉज आप वेट करे जा रहे हो, करे जा रहे हो. यू स्टॉप डेटिंग, यू स्टॉप मीटिंग पीपल, यू स्टॉप चेकिंग देयर सोशल, आई मीन यू स्टॉप मीटिंग पीपल बट यू विल कीप चेकिंग देयर सोशल मीडिया प्रोफाइल. मतलब यू आर काइंड ऑफ बिकमिंग लाइक अ स्टॉकर. ओके, दैट इज नॉट सेल्फ ग्रोथ. ओके, यू इंटरप्रेट एवरी कोइंसिडेंस एज अ साइन. दे व्यूड योर स्टोरी, ओ माई गॉड, ही व्यूड माई स्टोरी. They liked an old picture, that means, oh, they are still thinking about me. You saw their name twice today, oh, somebody else named, I don't know, Krishan showed up on my Facebook. I guess this is a sign. Do you resonate with that? I'm telling you, there are so many people out there who are listening and like, मुझे तो ये लग रहा था, यही है, ये तो मेरी बात ही बोल रही है. Exactly. Your universe is telling me something, it's a sign from God. You heard your song at the grocery store. This can't be a coincidence. Ye to sign hai universe se. And maybe those things feel meaningful to you. That's okay. But, you know, it can be meaningful, sure. But here's the important distinction. Apni sanity barkarar rakhni bahut zaruri hai. A sign can be meaningful without a prediction. ठीक है, अगर आपको वो साइन मान के चलना है, ठीक है भाई, हमने भगवान को भी नहीं देखा तो, लेकिन भगवान को बहुत लोग मानते हैं. तो अगर आपको साइन में बिलीव करना है, यू इफ यू वांट टू बिलीव इन दो साइंस, टोटली द चॉइस इज योर्स. लेकिन डोंट टर्न दैट साइन इनटू अ प्रिडिक्शन. ओके, दैट्स पावरफुल. बट यू कैन से दैट मोमेंट रिमाइंडेड मी ऑफ देम विदाउट सेइंग देयरफॉर आई सॉ द साइन, सो आई नो माय ट्विन फ्लेम इज कमिंग बैक. यू बिलीव इन सिंक्रोनिसिटी without rendering your ability to see the reality clearly. तो reality में और science में फर्क समझना सीखो, bros and girls.

0: Cameron. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
1: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications ab aa chuka hai digital media platform par. Kai million followers ke saath, both in English and Urdu. Led by the famous and fearless journalist Raja Zahid Akhtar Khanzada, jinhone apne kalam se social injustice aur corrupt practices ke khilaaf bharpoor awaaz uthai. Dallas aur duniya bhar ki taaza tareen khabron ke liye The Jago Times available hai ek click par, thejagotimes.com. For more details and advertisement, contact Raja Zahid Akhtar Khanzada 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
2: आप पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
3: साइन मिलना मुश्किल है लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो, विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
4: 90s के गाने सिर्फ हिट्स नहीं, हमारी यादें हैं, और अब वो लेजेंडरी आवाज आ रही है लाइव टू प्लेनो, वो आवाज जिसने 90s को अनफॉरगेटेबल बना दिया। कुमार सानू लाइव इन कॉन्सर्ट, अनफॉरगेटेबल 90s, सितंबर 11th एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स प्लेनो। लिमिटेड सीट्स, फ्री पार्किंग एंड मीट एंड ग्रीट ऑप्शंस अवेलेबल। टिकट्स एट eventbrite.com। मोर इन्फो 2148692668। प्रेजेंटेड बाय फोकस एंटरटेनमेंट एंड फॉर्च्यून ग्रुप।

Guys, that was absolutely sensational. Sania Malhotra with Sunidhi Chauhan. अगर आपने वो वाला गाने का वीडियो नहीं देखा ना तो इट इज सो अमेजिंग. सुनिधि चौहान, आई न्यू दैट शी वॉज ए फैंटास्टिक सिंगर, बट आई डिड नॉट नो दैट शी वॉज ऑल्सो ए सुपर्ब डांसर. दैट इज सानिया मल्होत्रा एंड सुनिधि चौहान विद दैट सॉन्ग. बाय द वे गाइज, यू हैव टू चेक इट आउट. इट वॉज कॉल्ड आंख. And these days, Sania Malhotra actually tours with Sunidhi Chauhan. If I'm not mistaken, उनका शो होने वाला था या होने वाला है डैलस के आसपास. आप उसकी डिटेल्स ढूंढ सकते हैं. फनीशा इज नॉट प्रमोटिंग दैट, सो वी कॉन्ट टॉक अबाउट इट. हाउ एवर, यू आर वेलकम टू गो लुक इट अप ऑन यूट्यूब और गूगल और समवेयर. एंड दीज डेज आई नो दैट सानिया मल्होत्रा इज ट्रैवलिंग विद सुनिधि चौहान वेर एवर शी गोज ऑन टूर विद हर कॉन्सर्ट. सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वर्थ वॉचिंग. तो गाइज, आगे बढ़ते हुए हम बात कर रहे थे ट्विन फ्लेम्स के बारे में, लेकिन ट्विन फ्लेम्स के बारे में बात हम करते रहेंगे आज भी कल भी, क्योंकि दैट इज़ आवर कॉन्सेप्ट दिस वीक. उसके पहले मैं ये बोल दूँ, इट इज़ 9:37 ऑन द क्लॉक. मैं आपके साथ सिर्फ अराउंड 15-20 मिनट ही रहने वाली हूँ, तो इसीलिए एक लास्ट अनाउंसमेंट. टेक्सस प्राइमरी केयर, पिछले 13 सालों से टेक्सस प्राइमरी केयर प्राउडली केयर्ड फॉर आवर कम्युनिटी, नाउ ग्रोइंग विद ए ब्रांड न्यू नेम एंड ए सेकेंड फ्रिस्को लोकेशन इंक्लूडिंग लनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. लनॉक्सी मेडिकल ब्रिंग्स प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्सरेज, सीटी स्कैन्स, कार्डियक डायग्नोस्टिक्स एंड हिमालयन मेड स्पा सर्विसेज all under one roof. Open 7 days a week from 8 a.m. to 8 p.m. You can walk in anytime. No appointment needed. So guys, ek gana sunte hain, then we will continue our conversation about the twin flames.

भाई बातें नई हमेशा ज़रूरत होती हैं, ठीक है। हम ट्विन फ्लेम्स के बात कर रहे थे, तो बट व्हाट इफ दे एक्चुअली कम बैक। हम लोग इसके पहले में बात कर रहे थे, यू नो द सेपरेशन। आप उसमें उसी के ख्यालों में पड़े हुए हो कि आधे गुणा कम बैक, आधे गुणा कम बैक। हर साइन को आप इंटरप्रेट करोगे, नहीं दे आर गोइंग टू कम बैक ऐसे करके, यू नो। बट डोंट टेक द साइन एज प्रिडिक्शन। दैट्स वेयर वी लेफ्ट ऑफ, ओके, बिफोर द ब्रेक। नाउ लेट्स फ्लिप द क्वेश्चन। व्हाट इफ दे एक्चुअली कम बैक? लेट्स से आपने 6 महीने यू हैव स्पेंट ऑन हीलिंग योर सेल्फ, हीलिंग ऑल दोज वूंड्स। यू हैव स्टॉप चेकिंग द पेज, आपने ब्लॉक ही कर दिया उनको, ठीक है। यू स्टॉप्ड वेटिंग, यू स्टार्ट गोइंग आउट विद फ्रेंड्स अगेन, यू आर एक्सरसाइजिंग, यू आर वर्किंग, यू आर मेकिंग थिंग्स हैपन, यू नो यू आर ईटिंग हेल्थी, यू आर गोइंग आउट विद फ्रेंड्स, यू आर लाफिंग, यू आर बिकमिंग योर सेल्फ अगेन। And then one random Tuesday at 10:47 p.m., there is a like from them. They have unblocked you. Now there's a like from them on one of your posts. Okay. And then a text aata hai. Your phone lights up. Hey, it's been a while. How are you? And then you're like, OMG. You know that feeling, right? Suddenly your heart is beating faster. Like, oh my God, this person is back. Mujhe pata hi tha. Ye wapas aayega. Ya aayegi ya jo bhi hai. You know, your brain is going, what do I say? Why now? After all this time, does this mean something? Have they changed? Now, here's where I would like you to slow down. Don't ask this question, ki is my twin flame coming back? Ask. कि इतने जो 6 महीने में जो सेल्फ ग्रोथ पे आपने काम किया, व्हाट हैज एक्चुअली चेंज्ड? बिकॉज रिटर्निंग इज इन द सेम थिंग एज ट्रांसफॉर्मिंग, राइट? बिकॉज रिटर्निंग इज इन द सेम थिंग एज ट्रांसफॉर्मिंग। समवन कैन मिस यू एंड स्टिल बी अनएबल टू लव यू प्रॉपरली। समवन कैन फील द कनेक्शन एंड स्टिल बी इमोशनली अवेलेबल। गाइज, इसी से रिलेटेड मैंने ना एक बड़ी अच्छी शो देखी आजकल, रिसेंटली आई थी नेटफ्लिक्स पे, कॉल्ड मुसाफिर कैफे। तो अगर आपने वो शो नहीं देखा है, दिस होल आइडिया ऑफ ट्विन फ्लेम इज सो रिलेटेबल, स्पेशली आफ्टर वॉचिंग दैट। तो आप ये गाना सुनिए फ्रॉम मुसाफिर कैफे एंड वी विल बी राइट बैक।

गाइस, इट इज 9:55 ऑन द क्लॉक. तो टाइम हो गया है मेरे घर जाने का. आई होप यू एंजॉयड आज का शो. हम लोग कल फिर बात करेंगे ट्विन फ्लेम्स, और इस डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे. देर इज सो मच मोर टू टॉक अबाउट व्हेन इट कम्स टू ट्विन फ्लेम्स. सो वी विल हैव दिस डिस्कशन कंटिन्यूड टुमारो. लेकिन आज के लिए गुड नाइट. आई होप यू हैव ए वंडरफुल रेस्ट ऑफ योर इवनिंग, एंड आई विल सी यू टुमारो 7 से 10 यहीं पे फनीजा रेडियो 104.9 FM. दिस इज इपी द हिप्पी साइनिंग ऑफ.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
3: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
4: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
5: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
4: Kya matlab?
5: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
4: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
5: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
4: Ab to karna hi padega, madam.
6: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
7: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
8: Dallas, are you ready? Jabu Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
3: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
9: Aji sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
10: India mein? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
9: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
10: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
9: सच में सब संभालेंगे?
10: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
11: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
12: माल है जाने ना जाने ना, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, माने ना।
13: Bollywood, Tollywood, Lollywood. 24 karat pure on 104.9 FM.

Storming into a million hearts. 104.9 FM. Number one hit station.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, डैलस में रेडियो का डैड, फनीशा 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो।
1: और इस तरह बल्ली को भी अपनी रानी मिल गई, वीरे की गीत से वेडिंग हो गई और शादी में घोड़ी के सबसे आगे नाचे मामा जी और भांजा जी।

0: अजी सुनते हो?
1: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
2: The OG of Tax Planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
3: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
4: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
2: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
4: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
5: तुमसे मिलके दिल का है।
2: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
4: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

0: de hoy.
1: सॉरी
0: हम ठीक हैं.

0: तमाशे थिएटर भर देते हैं, इससे फिल्मों का भी फायदा हो जाता है।
1: तुम इस तमाशे में शामिल?
0: तुम्हारी जिंदगी के तमाशे में शामिल काफी है।

0: कुछ बदल गया है,
1: नहीं तो
0: आपकी आवाज में नहीं, आपके मन में।

0: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
1: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
2: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है
3: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन
4: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस
5: तुमसे मिलके दिल का है
3: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन
4: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क
6: Hi, this is Ranveer Shori and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: दोस्तों, जिंदगी सचमुच एक हसीन इत्तेफाक है। अगर इत्तेफाक ना हो तो मोहब्बत ना हो, शायरी ना हो, संगीत ना हो। अभी जो गजल मैं आपके सामने पेश कर रहा था, कभी उसमें एक आवाज और भी शामिल थी। उस आवाज की मलिका नेहा आज इस वक्त हमारे बीच हैं। दोस्तों, मैं आप सब लोगों की तरफ से उन्हें गुजारिश करूंगा कि वो एक बार फिर मेरा साथ देकर इस अधूरी गजल को पूरी कर दें और शाम को अमर कर दें।
1: ये क्या कह रहे सागर?

रात गुजरते शायद थोड़ा वक्त लगे, हमें साथ रखिए। मंजिल तक पहुंचने में शायद वक्त लगे, हमें साथ रखिए। आपका साथी, आपका हमसफर, हर पहर। फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है। सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डैलस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

0: जब तुम्हारा
1: अजी सुनते हो
2: अजी नहीं एजी सुनते हैं
3: दी ओजी ऑफ टैक्स प्लानिंग एजी फिनटैक्स सुनेंगे आपके फाइनेंशियल कंसर्न्स देंगे स्मार्ट सॉल्यूशंस एवरी फ्राइडे 9:45 AM ओनली ऑन फनेजिया रेडियो.
4: Hi, this is Konkona Sen Sharma and you're listening to me on Fun Asia Radio.

हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इनटू 104.9 एफएम फनी शेयर रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा? डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनी शेयर रेडियो के साथ।

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है. नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है. तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा. नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर.

0: क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, जैसे वर्कआउट किया हो आपने। मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनीशर रेडियो।
1: अर्ज है, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा ना लगे। आदाब।

Thank you for tuning into 104.9 FM Fun Asia Radio. एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है. मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं. छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे. जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट. सो कमाल धमाल फन मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ.

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: Hi, this is Rani Mukherjee. You're listening to Fun Asia Radio.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।

Bollywood, Tollywood, Lollywood. 24 karat pure on 104.9 FM.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड। डैलस में रेडियो का डैड फनीशिया 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

0: FM turns up the heat in Dallas.
1: Hey,

0: बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डॉलर्स। Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
5: Hi, this is Priyanka Chopra and you're listening to Fun Asia Radio.

0: Oh my God!
1: मैं चट्टान से कूदने जा रही हूँ तो मेरी बहनों से तो मैं बता रही हूँ, पर क्यों? क्योंकि ये देखो #you #ouch #her और उसे भी लगता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रब हूँ।
0: उसे कूदने से पहले उसे बता के तो जा।
1: क्या

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

0: नेशन का फन स्टेशन फनेशियर रेडियो।
1: क्या बात है क्या चीज है पैसा क्या बात है क्या चीज है पैसा क्या बात है क्या चीज़।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

बस आशिकों पे रहे।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, डैलस में रेडियो का डैड, फोनेशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: अजी सुनते हो?
1: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
2: The OG of Tax Planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
3: Same order again? Same pizza, same taste, same story. Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
4: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
2: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
4: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
5: तुमसे मिलके दिल का है।
2: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
4: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

0: Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the show on this lovely Wednesday morning. It is today, the 26th of August. Sabse pehle, tareef us upar wale ki, jisne duniya banai. Chand sitare banai, zameen aasman banai. Insaan ke dil mein mohabbat ka jazba paida kiya. Usi upar wale ki tareef hai, jisne mujhko, aapko, aur ye saari kainat ko, इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए बनाया है आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम याली मदद एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एज वी गेट स्टार्टेड विद आवर प्रोग्राम टुडे विद द वॉइस ऑफ डॉली पार्टन नंबर इन द स्टूडियो 972-235-5555 एज वी मूव ऑन विद आवर गेट स्टार्टेड विद आवर प्रोग्राम
2: Speaking terms, can you help me like the voice?
1: Part of my program today will be dedicated to Dolly Parton.
2: Are you out there? Can you hear me?

0: भगवान से, रक्षाबंधन हमें जोड़ता है अपनों से, और कुछ रिश्ते एक डोर से शुरू होते हैं और एक अनमोल निशानी के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और PMJ ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे।
1: PMJ ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को।
2: होचो
3: होको
2: ओचो
3: होको
2: ओचो
3: इट्स होको।
4: अरे बस भी करो यार।
3: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है।
4: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है। एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा।
1: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में। वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस। टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज।
5: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
6: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे।
5: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
6: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
5: सच में सब संभालेंगे।
6: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनोन्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
1: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
7: हेलो, वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू।
5: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है।
7: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
1: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25-plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
8: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
9: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
1: Paid spokesperson. Principal Office, Dallas, Texas.
4: Floors clean.
10: Check.
4: Windows clean.
10: Check.
4: Kitchen clean.
10: Check.
4: Air ducts clean.
10: Wait, air ducts bhi clean karna hota hai?
11: Bilkul. Jo dikhta hai, wo to hum clean kar lete hain. Lekin jo nahi dikhta, uska kya? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush. Plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices, ya phir any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
1: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
12: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
1: That magic removal ho, love and relationship issues ho, get trusted solutions with 100% privacy.
12: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn.
1: Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar.
12: Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
13: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
14: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
13: Kya matlab?
14: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
13: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
14: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
13: Ab to karna hi padega, madam.
15: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
16: इस रक्षाबंधन चौकटॉक कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटॉक कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837 7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फनीशा रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
9: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली.

जो बन पाए कितनी देर उजालों की राह देखूंगा। कोई नहीं है, कोई भी नहीं, ना पास ना दूर, एक यार है दिल की धड़कन, अपनी चाहत का जो ऐलान किए जाती है, जिंदगी है जो जिए जाती है, खून के घूंट पिए जाती है।

बजाए प्यार की शबनम मेरे गुलिस्तान है, बरसते रहते हैं हर सिमत मौत के साए, स्याहियों से उलझ पड़ती हैं मेरी आंखें, कोई नहीं कोई भी

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: Yaar, modern mangalsutra dhoonte-dhoonte thak gayi hoon.
3: To Karat Lane chalo, they now have a store in Frisco and the best collection of modern mangalsutras.
2: Seriously? Kaisa collection hai?
3: Minimal, diamond, elegant, everyday styles. You will probably spend more time choosing than shopping.
4: Find the Mangalsutra that matches your style at Karat Lane, home to the largest collection of modern Mangalsutras. Karat Lane, now open in Frisco next to Tanishq.
5: अरे यार, घर मिल गया।
6: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग।
1: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर। वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी।
6: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
1: बिल्कुल। विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम।
7: Party is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
1: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, cause miracles happen in Mirage.
8: जिंदगी एक रंगमंच है
9: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल। रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो। दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन। फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com।
10: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
11: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
10: कैसे?
11: पेज 3 ईटरी?
10: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
11: ड्यूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्ट एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
10: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
12: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।

0: Dolly Parton, ladies and gentlemen, that beloved country music icon has died at the age of 80 after a brief battle with the cancer, and her death comes months after she had announced she was cancelling her Las Vegas residency due to health challenges. And part of our show today has been dedicated to her. Her publicist said that the country music icon had been bravely facing this brief battle with cancer. And of course, she was surrounded by her loved ones while she was at the Vanderbilt Ingram Cancer Center. Renowned for her self-deprecating wit, down-to-earth authenticity and extensive philanthropy, most notably her Imagination Library, the literacy project that she set up in 1995, that has gifted more than 300 million books to young children around the world. A small private service held for the immediate family at the singer's request, and in lieu of flowers and family, they are asking for donations to be made to the Dolly Parton's Imagination Library. And the American flag has been lowered to half-mast throughout the United States for a one-week period that began yesterday. Rest in peace, Dolly. The world loves you. Her death comes after she cancelled her Las Vegas residency, which was set to begin in September. And known as this queen of country, she built a successful career that has spanned decades. She herself crossed over to the pop charts with her recording of Here You Come Again in 1977, and the honors continued throughout her life. Grammy Lifetime Achievement Award came in 2011 after a Kennedy Center Honors Award in 2006. And 4 years ago, she was inducted into the Rock and Roll Hall of Fame. A very humble tribute to her this morning right here on the Fun Asia Network. And tributes are coming in from Taylor Swift, from Beyonce, from Jane Fonda. All these tributes after this country legend has died. Her passing of this, not just the music legend, but a philanthropist, has sparked a wave of tributes from the world of music, politics and fame. And she is being remembered very fondly today. She addressed her health issues just days before her death, gave a virtual video message days before her death at Dollywood, telling fans she wouldn't be traveling to open a new ride because she'd had a few little health issues, she called them, sporting butterfly wings in the video, a symbol that became closely associated with her. She delivered this message for the opening of her Dollywood's Night Flight Expedition ride after she was unable to attend the celebration in person. And we have Willie Nelson also paying tribute to her, and he is 93, and they both knew each other for more than 50 years, having crossed paths as young songwriters in Nashville. The Empire State Building pays tribute with that pink illumination sparkling for you, Dolly. And we have other skylines also colored pink, including the Dallas skyline. Barbara Streisand shared a throwback photo with Dolly Parton, along with Taylor Swift, saying her legacy will be everlasting. She was just amazing. And TV networks all paying tribute to Dolly Parton. Since yesterday, Eminem shared a touching letter that he had received from Dolly Parton, and lots of other stars and celebrities paying homage to the lovely Dolly Parton.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume! देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में। सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज, अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, here everything is better।
4: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
5: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099.
6: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
7: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
8: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
7: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
8: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
7: सच में सब संभालेंगे?
8: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
9: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
10: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे।
11: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्ड वाइड को बुलाते हैं।
10: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
11: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
10: इंडिया तक।
11: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्ड वाइड, कंप्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
9: SFL वर्ल्ड वाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
12: हेलो,
13: मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
12: फिकर नॉट, वी हैव द परफेक्ट सॉल्यूशन।
9: द फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को ब्रिंग्स यू इट्स ऑल न्यू वीकेंड लंच बुफे, फ्रॉम फ्लेवरफुल इंडियन फेवरेट्स टू लाइव काउंटर्स एंड शेफ स्पेशल, 25 प्लस डिशेस, वेलकम ड्रिंक, चाट, एपेटाइजर्स, मेन कोर्स एंड डिजर्ट, सैटरडे टू संडे 12 PM टू 3 PM। दिस वीकेंड लेट द फ्लेवर लाउंज डू द कुकिंग।
14: Are you on F1 visa and looking for mortgage options? Ya aap H1B pe hain and looking options with 5% or 10% or even 3% down? So call kijiye Kamna ko at 214-845-4189, kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 926641.
15: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
16: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
15: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
16: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
17: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
18: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फन एशिया रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस।
9: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांत, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली।
0: This Rakshabandhan, Fun Asia Radio and Choctaw Casino and Resort in Durant, Oklahoma want to hear your most unforgettable memory with your brother or your sister. Send a 1-minute voice note on WhatsApp at 214-837-7147. And you could win exciting daily prizes, including dining experiences, entertainment, resort stays, and the grand prize, an unforgettable sibling reunion weekend at the Choctaw Casino and Resort in Durant. For complete contest details, do check out the Fun Asia Radio social media pages. Choctaw Casino and Resort in Durant, where unforgettable memories are made together. You must be 21 or older to participate. Terms and conditions apply. Please play responsibly.

0: The official Onam Anthem 2026 on the airwaves of the FunAsia Network. As we head towards 101 degrees today with a heat index of anywhere between 105 and 108. At 9:30 this evening, our lunar eclipse starts. You'll see a full coverage around 11:15. I will have world news coming up a little bit later in the program, and then we have a giveaway also that we haven't done today. That should be coming up at the 9:45 segment.
1: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
2: अरे सारे तो सेम है.
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो ये वाला.
2: ओ हाँ, ये तो अलग है.
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
5: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
6: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
7: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस.
8: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
7: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
8: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
7: ये क्या होता?
8: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
9: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
10: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 doors डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन.
11: बेटा, 95% आए?
12: हाँ मम्मी.
11: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
13: मेरा?
11: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
13: वो
14: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. AG Fintechs helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintechs.com. Call 972-618-8555. AG Fintechs, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
15: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
16: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
17: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो. जॉइन पासिया एंड मार्केट योर बिजनेस फॉर फ्री. शोकेस योर डील्स एंड गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स नियर बाय. पासिया, बी वेयर योर कस्टमर्स आर लुकिंग.
18: गिव योर चिल्ड्रन द गिफ्ट ऑफ स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग एंड कल्चरल आइडेंटिटी थ्रू चिन्मया मिशन्स बालविहार प्रोग्राम. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration of Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

0: A tribute to Dolly Parton. Also, I have the best wishes going out for Milad al-Nabi to all of you celebrating the birthday of Prophet Muhammad, peace be upon him. And also, happy Onam wishes to everyone from Kerala. And with that, ladies and gentlemen, I'm going to end my show for today. Me Too's coming on next, and you'll continue listening to the Fun Asia Network 24 hours a day. It is 10 a.m.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: श्रावण हमें जोड़ता है भगवान से, रक्षाबंधन हमें जोड़ता है अपनों से, और कुछ रिश्ते एक डोर से शुरू होते हैं और एक अनमोल निशानी के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और पीएमजे ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे।
1: पीएमजे ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को।
4: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
5: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
4: कहाँ?
6: फूडिस्तान इन ऑबरी। फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
1: फूडिस्तान इन ऑबरी। मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट।
7: ये तारा वो तारा हर तारा।
5: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स। कॉल 844-428-2808 और विजिट ताराएनर्जी.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
2: Call the SBA Loan Experts.
1: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
2: Call the SBA Loan Experts.
1: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
2: Call the SBA Loan Experts.
1: Construction ho ya renovation, business kharidna ho ya refinance karana ho. For all your business financial needs at the best interest rate and lowest down payment, call the SBA Loan Experts at 817-786-3338. That's 817-786-3338.
3: Mere kal wale khane mein dosa. आने वाले खाने में डोसा।
4: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? Your search ends here.
5: San Idli Vegetarian Restaurant, 100% pure vegetarian made with fresh authentic flavors. Crispy dosas, fluffy idlis, comforting South Indian thali और साथ में शहर की best filter coffee. Family dinners to catering services with Jain friendly options.
4: Visit San Idli Veg Restaurant at the Highway 121. और कस्टर जंक्शन.
6: जिंदगी एक रंगमंच है
7: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल. रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो. दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन. फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन. कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com.
8: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चौकटा कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चौकटा कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.

डेट इज 26th of August, लेडीज एंड जेंटलमैन, घड़ी मिला लीजिए हमारी घड़ी के साथ. इट इज 12:10 बाय द स्टूडियो क्लॉक एंड हियर आई एम. दिस इज मी टू फॉर ऑल ऑफ यू. और शुरू हो चुका है हमारा गपशप गली, बट आई कैन नॉट मूव फॉरवर्ड अंटिल आई थैंक शबनम जी. शी इज बैक फ्रॉम अ शॉर्ट वेकेशन एंड शी लुक्स फ्रेश, आई कैन टेल यू दैट. आप देख तो नहीं सकते लेकिन सुन के समझ में आ गया होगा. वैसे कोई भी दिन हो उनके लिए, आई हैव टू से दिस रियली, द डेज दैट शी हैज बीन द मोस्ट चंगा और नॉट सो चंगा, शी हैज गिवन द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू हर शोज. And do want to really a big shout out to her and her show, Morning Drive Time with Shabnam Ji. And here I am with Gapshap Gali with Meetu all the way till 12:30. To shuru kiya jaye.

गुम होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर स्टूडियो का नंबर कहीं गुम हो गया है तो भाई सेव क्यों नहीं किया आपने? 9722355555 नंबर इन द स्टूडियो लेडीज एंड जेंटलमैन. और इससे मुझे याद आता है कि कुछ याद दिलाऊं मैं आप लोगों को, एंड दैट इज अबाउट लेडीज एंड जेंटलमैन माई टाइम एक्विटी. एंड यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि आपके जितने भी इंडिविजुअल्स या फैमिलीज के लिए अगर आपको स्मार्टर फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज चाहिए ना थ्रू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल स्टेट अपॉर्चुनिटीज या फिर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स का कुछ सोच रहे हैं, तो आप याद रखें कि भाई माई टाइम इक्विटी लेड बाय सीपीए सुधीर पाए एंड हिज टीम, दे कैन डेफिनेटली हेल्प यू. तो अगर आप प्लान कर रहे हैं ना लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए, रिटायरमेंट के लिए या फिर अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, माई टाइम इक्विटी के पास बहुत ही पर्सनलाइज सोल्यूशंस हैं जो आपके गोल के इर्द गिर्द बुना जाएगा. तो याद रखिएगा माई टाइम इक्विटी.com इज द वेबसाइट that you must remember.

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
3: जी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
4: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
3: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
4: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
3: सच में सब संभालेंगे?
4: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
1: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
9: भूख लगी, जोरों की भूख लगी.
10: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
11: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी. ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
12: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी.
13: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
14: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
13: क्या मतलब?
14: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
13: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
14: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
13: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
15: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
16: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
17: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
18: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
17: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
19: तुमसे मिलके दिल का है.
18: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
17: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.
4: That put you on the right track.

आज ईद मिलानुन्नबी है और द कम्युनिटी सेलिब्रेटिंग इट. हम बहुत सारी विशेस भेजना चाहते हैं आपकी तरफ. एंड यस, एक बहुत ही अमेजिंग आज का दिन जो ये सेलिब्रेशन लेकर आता है. दिस ब्यूटिफुल डे इज़ अ पावरफुल रिमाइंडर ऑफ हिज यूनिवर्सल टीचिंग्स ऑफ पीस, कंपैशन और आपस में वो जो भाईचारा का भाव है ना, वो भी ये सेलिब्रेट करता है. और मस्जिदों में और घरों में बहुत सारी रोशनी, फैमिली के साथ वक्त बिताना और चैरिटी के ज़रिए इस दिन की बरकत दूसरों के साथ बांटी जाती है. एंड दिस इज़ ए वेरी स्पेशल डे फॉर मैनी सेलिब्रेटिंग. एंड मे द नोबल टीचिंग्स एंड यूनिवर्सल कंपैशन of Prophet Muhammad guide your paths towards kindness and unity today and always. और talking about which, ओनम की भी बात करना चाहती हूँ जो आज है. ये फेस्टिवल सिर्फ एक सीजनल हार्वेस्ट सेलिब्रेशन नहीं है, इट इज़ एन एब्सोल्यूट इमोशन फॉर द मलयाली कम्युनिटी. एंड घरों के आंगनों में जो खूबसूरत ना फूल से काफ़ी कुछ सजाया जाता है, आई डोंट नो वॉट इट इज़ कॉल्ड. आई नो इट स्टार्ट्स विथ पी, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा. पर से जो वाइब्रेंट फ्लोरल एक कारपेट जैसा सजाया जाता है ना, उसे क्या बोलते हैं? आई एम फॉरगेटिंग, रिमाइंड मी इफ यू रिमेंबर. जी हाँ, एक ही बनाना लीफ पे जो बहुत सारे आइटम्स, डिलिशियस ट्रेडिशनल डिशेस बनाए जाते हैं. तो आज परफेक्ट दिन होगा कि आप किसी मलयाली फ्रेंड के घर जाएं और इन्जॉय करें दोज वेरियस थिंग्स दैट दे मेक फॉर ओनम. एंड ओनम का सबसे डीप मीनिंग है यूनिटी और इक्वालिटी. और इसी फेस्टिवल, दोनों फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हुए, विशिंग यू ऑल ए हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ.

0: यार मॉडर्न मंगलसूत्र ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ।
1: तो कैरेट लेन चलो, दे नाउ हैव अ स्टोर इन फ्रिस्को एंड द बेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस।
0: सीरियसली, कैसा कलेक्शन है?
1: मिनिमल, डायमंड, एलिगेंट, एवरीडे स्टाइल्स। यू विल प्रोबेबली स्पेंड मोर टाइम चूजिंग देन शॉपिंग।
2: फाइंड द मंगलसूत्र दैट मैचेस योर स्टाइल एट कैरेट लेन, होम टू द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस। कैरेट लेन, नाउ ओपन इन फ्रिस्को नेक्स्ट टू तनिष्क।
3: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Panacea.
4: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
5: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
6: Hey, तुमने कभी insurance लिया?
7: लिया.
6: कभी policy समझ भी आया?
7: नहीं आया.
6: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772। दैट्स 972-863-772।
8: विजिट www.sanadainc.com टुडे।
9: चीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
10: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
9: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
10: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
9: और एंटरटेनमेंट,
10: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स, सब आपकी खिदमत में।
9: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
10: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
11: द बिगेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव योर चाइल्ड इज द गिफ्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। I, Sunhi Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
12: When life feels too loud, it's time to listen within. Join Miracle Rhythms, a 4-day meditation, bodywork and movement retreat by Osho Universal at Osho Kevalya Dham in Denison.
13: My name is Ritika Anand, Sanyas Vema Prem Jaya. I am coming to Dallas on the 27th, 28th and 29th of August.
12: Experience meditation, breath work, intuitive movement, music and inner healing. Limited to just 25 participants. Book now at oshouniversal.org or call 214-395-6757.
14: Tracks that put you on the right track.

फ्रॉम द फिल्म नो एंट्री, जो आज के दिन यानी कि अगस्त 26, 2005 में रिलीज हुई थी, और इसीलिए अनीस बाज़मी की फिल्म का ये गाना, जो मैसिव मल्टी स्टारर कॉमेडी थ्री नो एंट्री स्टारिंग अनिल कपूर, सलमान खान, फरदीन खान, लारा दत्ता एंड बिपाशा बासु, ये एक क्रेजी मिक्स ऑफ एब्सोल्युटली लव्ड कैरेक्टर्स दैट दे पोर्ट्रेट इन दिस वन, एंड दैट्स नो एंट्री, जो कि ब्लॉकबस्टर रही. इट वॉज 2005's हाईएस्ट ग्रोसिंग बॉलीवुड फिल्म, और क्या ही कहा जाए. आज 26th अगस्त है, लेकिन हमने एक वेटरन को खोया है कल, और उन्हीं को हम याद करते हुए उनके गानों को और उनकी फिल्मों से सेलिब्रेट करने वाले हैं. एंड दैट्स कुकू कोहली, लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट, एंड द रेस्ट ऑफ द सेगमेंट विल बी अ ट्रिब्यूट टू हिम. एंड बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, आई डू वॉन्ट टू मेक श्योर दैट वी ऑल आर ऑन द सेम पेज एज फार एज हेल्थ इज कंसर्न्ड. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, जहाँ पर आपको सेम डे अपॉइंटमेंट मिल जाता है, ज़रूर जाएं. बहुत आराम से आपका चेकअप होगा, बहुत सारा वक्त दिया जाएगा, अनलाइक मेनी अदर प्लेसेस जहाँ पे आपको बड़े हरिड तरीके से, बड़े हेस्टी तरीके से देखा जाता है. तो यहाँ पे वो आपको पूरा केयर मिलने वाला है, एंड प्राइमरी केयर विजिट्स आपके लिए जो हैं, फॉलो अप एंड प्रिवेंटिव केयर, क्रॉनिक डिजीजेज, मेडिकेशन मैनेजमेंट, टेली हेल्थ व्हेन एप्रोप्रिएट. सो ऑल ऑफ दैट यू कैन गेट, एंड यू कैन गेट दैट केयर condition plus 20% savings on eligible self-pay labs, imaging and diagnostic services. This is Passion Health Direct for just $85 a month. Stay connected to affordable primary care with them. No health insurance or if you are in a situation jahan pe aapka out of network hai, Passion Health Direct for just $85 a month can help you. इसके बारे में जानना हो तो 214-666-6259 इज द नंबर टू कॉल. फाइंड आउट ऑल द डिटेल्स, गो ऑन टू देयर वेबसाइट, दे हैव इट अप ऑन देयर वेबसाइट अबाउट द पैशन हेल्थ डायरेक्ट दैट गिव्स यू ऑल द हेल्थ केयर, इवन इफ यू आर आउट ऑफ नेटवर्क और इफ यू हैव नो हेल्थ इंश्योरेंस, जस्ट फॉर $85 ए मंथ. पैशन हेल्थ फिजिशियंस डॉट कॉम इज द वेबसाइट. एंड वंस अगेन, ये सेगमेंट हम पूरी तरह से कुकू कोहली को याद करते हुए करने वाले हैं, जहाँ पर हम आपको कुछ गाने सुनवाएंगे उनकी फिल्मों का, एंड दैट विल सॉर्ट ऑफ रिफ्रेश योर मेमोरीज, क्योंकि एक वेटरन रह चुके हैं हिंदी सिनेमा के. ये बॉलीवुड में उनका कंट्रीब्यूशन हमेशा याद रखा जाएगा, खासकर जिस तरह से उन्होंने 90s के रॉ एक्शन और प्योर रोमांस को बिग स्क्रीन पर प्रेजेंट किया ना, उसके लिए डेफिनेटली उनको हमेशा याद रखा जाएगा. Forever be known as the visionary filmmaker who gave Bollywood one of its biggest superstar by launching Ajay Devgan in absolute blockbuster Phool Aur Kaante.

फूल और कांटे में अजय देवगन का जो एंट्री सीन था वो कौन भूल सकता है। वो दो मोटरसाइकिल्स पे बैलेंस करते हुए वो जो लेजेंडरी उनकी एंट्री हुई है ना हिंदी सिनेमा में, वो आइकॉनिक मोमेंट कुकू कोहली की देन थी, हिज डायरेक्शन दैट इट वाज। और फूल और कांटे जो कि एक एक्शन फिल्म भी थी, रोमांटिक फिल्म भी थी, इसके साथ अजय देवगन की जो एंट्री है वो आज तक चल रही है एंड इट ही डेफिनेटली ओज इट बिग टाइम टू कुकू कोहली। और यही नहीं, एक और फिल्म जिसका गाना प्ले करना चाहते क्योंकि म्यूजिकल स्कोर वॉज प्रिटी अनफॉरगेटेबल फ्रॉम हिज फिल्म्स। कुकू कोहली के डायरेक्शन में बनी फिल्म्स में गाने बड़े चार्टबस्टर्स होते थे, जिनमें से सुहाग फिल्म का एक गाना मैं लगाना चाहती हूँ, नॉट द वन दैट यू आर थिंकिंग प्रॉबेबली, जो मास ने पसंद किया, लेकिन दिस इज ए मोर रोमांटिक सॉन्ग दैट आई एम गोना प्ले फ्रॉम दिस मूवी। और उन्होंने अपने लंबे करियर में ना हमेशा फ्रेश टैलेंट को बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट किया है, और मास एंटरटेनर्स जो उन्होंने बनाए हैं उन्होंने डायरेक्ट कनेक्शन अपना ऑडियंस के साथ बनाया है विद दोज फिल्म्स दैट ही मेड इन द 90s। मे ही रेस्ट इन पीस कुकू कोहली, पास्ड अवे यस्टरडे।

0: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
1: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
2: Paid spokesperson. Principal Office, Dallas, Texas.
3: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
4: Restaurant choose karna ho? Google Reviews. Hotel book karna ho? Google Reviews. Lekin bachcho ke doctor ki jab baat aaye to ek hi review sabse important hota hai. Maa ka review.
1: Isliye Dr. Farhad has been recognized as a DFW Child Mom Approved Pediatrician for 4 consecutive years, 2023 through 2026. Meet Dr. Nishat Farhad at Passion Health Pediatrics, serving families at Frisco and Aubrey, starting at the end of August. Passion Health Primary Care, because every healthy smile begins with trusted care. Call 214-666-6259 and schedule your appointments today.
5: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
6: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
7: हेलो, वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
8: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन इज आस्किंग लंच में क्या है?
7: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
1: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25-plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
9: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड. अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फनीशा रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
1: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पांसिबली.
10: हाय, दिस इज श्रद्धा पंडित एंड यू आर ट्यून्ड इनटू फनीशा रेडियो.
11: Tracks that put you on the right track.

जी हाँ, अगर कुछ ब्लैंड लग रहा हो ना आपको अपने हाथ का खाना, या जनरली जिंदगी का रिदम कुछ फीका पड़ रहा हो, तो भाई होको जाएं। होको एक ऐसी जगह जो जेनरेशन से जेनरेशंस को लुभाती आई है बैक इन इंडिया। इट इज़ वन ऑफ दोज वेरी लव्ड फूड ब्रांड्स, और अब आपके लिए फ्रिस्को में है। इससे अच्छा गुड न्यूज़ तो मैं आपको क्या दे सकती हूँ कि आप वही जो बहुत स्पेशल उनकी चना पूरी होती है, बहुत स्पेशल उनके जो सैंडविचेस होते हैं, करीज होते हैं, और उनका जो फेमस होको कोल्ड कोको, वो भी आप इंजॉय कर सकते हैं राइट हियर। तो अपने जीपीएस में एड्रेस फीड करें 2693 प्रेस्टन रोड सुइट 1000 इन फ्रिस्को, और सीधे इंजॉय करें इनकी स्पेशलिटीज़। इट इज़ होको क्विजीन दैट यू मस्ट ट्राई आउट, होको रेस्टोरेंट दैट यू मस्ट ट्राई आउट, द देसी क्विजीन दैट दे ब्रिंग फॉर ऑल ऑफ अस हियर इन फ्रिस्को। यू आर लिसनिंग टू फनीशर रेडियो 104.9 FM, और ये है गपशप गली। और गपशप गली में ना आज हम कुछ नॉस्टैल्जिया गली में लेकर जाने वाले हैं आपको। जी हाँ, हम टेक और नए गैजेट्स की कितनी सारी सेलिब्रेशन करते हैं जब वो आते हैं, लॉन्च होते हैं, और हम बड़े एक्साइटेड होके आपको बताते हैं। लेकिन इन सब चक्करों में ना कई बार हमने सोचा है कि कितनी सारी चीज़ें पीछे रह गई हैं ना, उनके ही कुछ पन्ने पलटेंगे और आप देखेंगे कि इनके बारे में तो शायद आपने

करते हैं, लेकिन इन सब चक्करों में ना कई बार हमने सोचा है कि कितनी सारी चीजें पीछे रह गई है ना, उनके ही कुछ पन्ने पलटेंगे और आप देखेंगे कि इनके बारे में तो शायद आपने सोचा ही नहीं था। आज सोचने का वो दिन आ गया है, क्योंकि क्या है ना कि आजकल टीन्स को हम बदनाम करते हैं, लेकिन यार ऑनेस्टली हम सब घंटों बिताते हैं यार वो सेलफोन स्क्रॉल करते करते, वो डूम स्क्रॉलिंग जो शब्द है ना हम जैसे लोगों के लिए इन्वेंट हुआ है। तो आज की जिंदगी अनप्लग सेगमेंट में ना उस नॉस्टैल्जिया गली को पकड़ेंगे, जहाँ पे वी आर गोइंग टू ब्रेक डाउन वेरी यू नो वेरी स्पेसिफिक ब्यूटिफुल एक्सपीरियंसेस जो हमारी लाइफ से कम्प्लीटली गायब हो चुके हैं। तो थोड़ा सा याद करते हैं और ये सब कुछ इस गायब होने के लिए रिस्पॉन्सिबल सेलफोन्स को कहें या हम अपने आप को कहें।

अफशप गली विथ मी टू दैट वी आर ऑन टू. और हम बात कर रहे हैं उस छोटी सी चीज़ ने जिसने एक बहुत बड़ा सफ़र हमारी ज़िंदगी में वो लेकर आया है. बहुत सारे प्रोज हैं, उनमें से कुछ कॉन्स, कुछ चीज़ें जो खो गई हैं कहीं, वही आप लोगों के साथ याद करना चाहती हूँ. सेलफोन नामक जो चीज़ है ना, ज़िंदगी को बहुत आसान कर दिया है इसने, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें ना ये उड़न छू भी हो गई है हमारी ज़िंदगी से, हमें पता भी नहीं चला एक्चुअली. लेट्स स्टार्ट विथ एक्सपीरियंस नंबर वन. एक जो वो होता था ना बोर्डम वाली चीज़ जो होती थी, ये सुनने में बड़ा नेगेटिव लग रहा है लेकिन उसके भी अपने एक मज़े थे. आपको आपको बोर होना, ये आजकल के डेफिनेशन में तो आ ही नहीं सकता. आपके हाथ में फ़ोन है, जब चाहो आप उठा लो, है ना. वो बोर होना यूज़ टू बी ए डिफाइनिंग एस्पेक्ट ऑफ आर डेली लाइफ. पहले जब हम किसी डॉक्टर के वेटिंग रूम में होते थे या यू नो ग्रॉसरी स्टोर के एक लंबी सी लाइन में खड़े होते थे, हम लिटरली कुछ नहीं कर रहे होते थे. हम सिर्फ आसपास देखते थे, लोगों से स्माइल एक्सचेंज करते थे, मन किया तो उनके साथ बात कर लिया, या बस अपने ख्यालों की दुनिया में खोए रहते थे, है कि नहीं. दैट जेन्युइन डाउन टाइम एक्चुअली गेव आवर ब्रेन्स द नेसेसरी स्पेस टू रिचार्ज एंड रेस्ट, वुडंट यू से. आजकल क्या होता है, जैसे कि दो सेकंड्स भी हमें मिल जाते हैं, एनी टाइम दैट वी गेट, इवन एक सेकंड का टाइम भी, हम कहाँ फ़ोन बिना चलते हैं. हमारे हाथ में वो ऑटोमेटिकली हमारा हाथ जो है पॉकेट में चला जाता है या अपने बैग्स में चला जाता है एंड वी स्टार्ट स्क्रोलिंग. यहाँ तक कि हम लोगों के बीच भी ये चीज़ करने लग गए हैं. कितनी अजीब सी बात है. वो जो बोर्डम हुआ करता था ना कि कुछ नहीं है करने को, अगर आप कहीं पे वेट कर रहे हो, कहीं पे यू नो ऐसे अटके हुए हो, तो सच में या तो आप एक दूसरे से कनेक्ट कर लेते तो जाने अनजाने लोगों से, या अपने ख्यालों की दुनिया में पकवान बना रहे होते थे.

ये तो बात बिल्कुल सही है कि बिल्कुल मस्त मौला हो गए हैं हम। हमारे हाथ में सेलफोन होता है तो किसी बात की कोई चिंता नहीं होती है। आप मानेंगे कि नहीं, जिंदगी अनप्लग सेगमेंट दैट वी डू बिटवीन 11 to 12 लेडीज एंड जेंटलमैन ऑन गपशप गली, इसमें जो मैंने आज का टॉपिक थोड़ा नॉस्टैल्जिक पकड़ा है और वो टॉपिक पकड़ा है कि जहाँ पे कि सेलफोन के आने के बाद कुछ चीज़ों का होना बंद हो गया है, और वो कब होना बंद हुआ हमने कभी रियलाइज भी नहीं किया। अब मैं अगर एक एक्सपीरियंस की बात करूँ कि आप कहीं गए हो, किसी के लिए वेट कर रहे हो एंड वंडरिंग इफ द पर्सन यू प्लान टू मीट विल शो अप। कहाँ होता, तब ये होता था ना। आजकल के दिन में क्या है कि सेलफोन उठा के पूछ ले कि कोई कहाँ तक पहुंचे हो एंड ऑल ऑफ दैट। बिफोर सेलफोन्स जब आप दोस्तों के साथ प्लान बनाते थे ना, इट रिक्वायर्ड ब्लाइंड ट्रस्ट। आप किसी मूवी थिएटर या रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हैं और आपके पास कोई तरीका नहीं था टू चेक कि सामने वाला कहाँ है, कब आने वाला है, कितने बजे पहुंचने वाला है। वो जो कभी बात हुई, मिलके जो आपने बात की उनके साथ, और उस पे बेस्ड आप पहुंच जाते हो। यू जस्ट हैड टू स्टैंड देयर, रेस्ट इन दैट मिस्ट्री, और होप करते हैं कि भाई पहुंच जाएगा उसी डेट और उसी टाइम पे, सही वक्त पे पहुंच जाएगा। और आजकल तो भाई टेक्सटिंग और ये सारा कुछ स्केड्यूल बनाना, रीस्केड्यूल करना, कैंसिल करना, ये तो मिनटों की बात होती है। डोंट यू रियलाइज कि ये जो हमारा एक ट्रस्ट होता था अपने दोस्तों पर, जिनके साथ भी कमिटमेंट कुछ किया, और उनका वक्त पे पहुंचना, सही दिन पे पहुंचना, ये अपने आप में गैम्बल होता था। नहीं, कभी दिक्कत नहीं हुई इस बात को लेके? कभी कभार हाँ, वक्त को लेके हुई होगी, लेकिन जनरली स्पीकिंग कभी भी, तब भी दिक्कत नहीं होती थी यार।

You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, ladies and gentlemen. हम आगे बढ़ने वाले हैं और आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको जो बताने वाली हूँ, it is to do with you know business owners. तो जितने भी business owners मुझे सुन रहे हैं ना, थोड़ा ध्यान से सुने. एक smarter commercial energy solution अगर आपको चाहिए तो वो solution आपके लिए तारा commercial energy के पास है. Proudly serving Texas businesses since 2002, competitive rates, reliable सर्विस और कस्टमाइज एनर्जी प्लान्स जो इनके पास हैं, इसके बारे में आप इंक्वायर कर सकते हैं बाय कॉलिंग एट 844-428-2808. taraenergy.com इनकी वेबसाइट है जो आपको तुरंत सारे सर्विसेज के बारे में पूरी डिटेल्स जो आपको चाहिए ना, सारी की सारी आपको मिल सकती है. एंड यस, वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर कि बस हम एक फ़ोन कॉल दूरी पे हैं. जी हाँ, दोज सेल फोन्स, दोज मोबाइल फोन्स दैट आर द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, दैट इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन एक्चुअली राइट नाउ. जिंदगी अनप्लग्ड में ना वो सारी चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ जो कहाँ कब गुम हो गई, हमें पता ही नहीं चला सेलफोन के आने की वजह से. यू नो, कॉलिंग एंड एक्चुअली टॉकिंग टू पीपल, ये भी एक चीज़ ना कहीं तो गुम होती जा रही है. याद कीजिए वो टाइम जब किसी से हमें कुछ काम होता था ना, तो हम सीधे या तो फ़ोन कॉल कर लेंगे या तो पहुँच जाते थे उनके घर में. कोई ऐसे अपॉइंटमेंट्स नहीं लेने पड़ते थे, कुछ नहीं होता था, कोई एक मतलब कोई हेजिटेशन नहीं था. दैट वॉज द ओनली वे टू डू इट, राइट? कि फ़ोन उठाया आपने, लैंडलाइन उठाई और आपने कॉल किया और दूसरे तरफ एक रियल ह्यूमन आपकी बातों का जवाब दे रहा हो. खाना ऑर्डर करना हो, प्लान्स बनाने हो या किसी स्टोर की टाइमिंग्स पता करनी हो, यू हैड टू यूज़ योर वॉइस एंड लिसन टू रियल पीपल फ्रॉम द अदर साइड. आजकल फूड डिलीवरी एप्स और यू नो इतने सारे क्विक मैसेजेस का ज़माना जो है, हम हज़ारों इमोजीज भेज देंगे बट एक्चुअल फ़ोन कॉल करने में हमें एक अजीब सी एक क्या कहूँ, आलस्य हमारे में होती है. या यू नो पीपल आर मोर कम्फर्टेबल जस्ट नॉट हैविंग दैट रियल ह्यूमन इंटरफेस, दे आर मोर कम्फर्टेबल विद दैट. वी वुड रादर ऑर्डर ऑनलाइन देन टॉक टू पर्सन फेस टू फेस एंड we are more connected than ever, right? Yet more disconnected than ever. Hamari actual face-to-face or voice conversations kafi kam ho gayi hai pehle se. Wouldn't you agree?

0: कभी ऐसे आपकी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ कि यू वर इन लव विद समबडी और आपके भाई या बहन ने पूरी तरह से आपकी मदद की थी टू कीप दैट सीक्रेट अवे फ्रॉम पेरेंट्स इफ दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स दैट यू वर कंसर्न्ड अबाउट? भाई रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन ही कुछ ऐसा होता है जो भाई बहनों को एक साथ लाता है. इसी के बारे में कुछ बात करने वाली हूँ राइट आफ्टर द ब्रेक एज वी कंटिन्यू आर नॉस्टैल्जिया सेगमेंट.
1: दिस श्रावण सेलिब्रेट ट्रेडिशन विद लिटिल एक्स्ट्रा स्पार्कल. श्री कृष्णा ज्वेलर्स is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases from silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make this Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers, 10 glorious years and countless sparkling memories.
2: Immigration is a serious concern for our community. And when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, firm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
3: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूंगी.
4: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
2: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
5: इतना सब और प्राइस?
2: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
6: मैं हीरो.
7: डैड, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ हैं?
8: लैपटॉप में.
7: इन्वेस्टमेंट?
8: गूगल ड्राइव.
7: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
8: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है.
7: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है.
2: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
9: Hi, this is Deepti Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
2: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
10: Utha le re deva, utha le re baba, ye boxes utha le re.
11: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL Worldwide को बुलाते हैं.
10: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
11: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
10: इंडिया तक.
11: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और Worldwide, कंप्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज.
2: SFL Worldwide, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
12: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग. फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव.
13: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099.
12: मेंशन फन एशिया एंड गेट 50% ऑफ ऑन ट्रायआउट सेशन.
14: अगर किसी चीज को दिल से चाहो
15: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं.
16: डील कहाँ?
15: सिंपल, पास्या पे. इंट्रोड्यूसिंग पास्या. डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ. ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड अ डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन.
2: डाउनलोड पास्या, दैट्स PASYA टुडे, बिकॉज़ डील्स दूर नहीं, पास है.
17: व्हेन लाइफ फील्स टू लाउड, इट्स टाइम टू लिसन विद इन. जॉइन मिरेकल रिदम्स, ए 4-day मेडिटेशन, बॉडी वर्क एंड मूवमेंट रिट्रीट by Osho Universal at Osho Kevalya Dham in Denison.
18: My name is Ritika Anand, Sanyas name Ma Prem Jaya. I am coming to Dallas on the 27th, 28th and 29th of August.
17: Experience meditation, breath work, intuitive movement, music and inner healing. Limited to just 25 participants. Book now at oshouniversal.org or call 214-395-6757.
6: tracks that put you on the right track.

0: की गल करनी है?
1: तेरे मेरे बारे
0: की?
1: यार बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
0: बचपन दी बात और सी।
1: यार 10 साल हो गए।
0: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन ते गल करती हूँ।
1: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

0: अच्छा बाबा मान गई, बस कर अब।
1: What a lovely song जो पूरी तरह से वायरल हो गया था एंड वी enjoyed इट सो वेरी वेरी मच, isn't इट ट्रू। और यहाँ पे ये भी कहना चाहती हूँ कि जब ऐसा रोमांटिक रिलेशनशिप कभी हम जब हमारा रहा है ना, वो चाहे स्कूल कॉलेज के दिनों में हो या उसके बाद के दिनों में हो, और जब हमें वो सीक्रेट रखना पड़ा है कुछ लोगों से या अपने फैमिली से फॉर एनी गिवन रीज़न, तो भाई हमारे दोस्तों ने और हमारे भाई बहनों ने बहुत मदद की है हमारी। वेल दिस इज गपशप गली विथ मीठू, और गपशप गली विथ मीठू में हम इस सेगमेंट पे हैं जो 11 से 12 के बीच होता है एंड इट्स कॉल्ड जिंदगी अनप्लग्ड। और सेलफोन से लेकर हमारी बातचीत जो शुरू हुई है कि क्या पीछे छोड़ दिया हमने, वो बात करने वाली हूँ। लेकिन पता है ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार होता है ना, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें ना छूट गई हैं हमारी, कि वो जो होता था ना कि जब भाई बहन एक साथ मिलके वो बिल्कुल सेलिब्रेशन होता था कि वो राखी बांधी जाती थी और वो सारी चीज़ें होती थी, वो बचपन के साथ हम अलग अलग जगह पे हैं, फ़ोन पे हो जाती हैं बातें और वीडियो कॉल भी हो जाता है और राखी एक वर्चुअल हम बांध भी देते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन वो जो एक मज़ा एक फिज़िकल मिलने में और बंधवाने में, राखी बांधने और बंधवाने में जो था, वो एक अलग मज़ा था। और वही मज़ा लेकर आ रहे हैं आपके लिए फनीशा रेडियो और चौकटाओ कैसीनो एंड रिजॉर्ट इन ड्यूरेंट, जो आपसे जानना चाहते हैं आपका एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट आपकी ज़िंदगी का, वन मिनट वॉइस नोट दैट वी वांट फ्रॉम यू। भाई और बहन के उस रिलेशनशिप को या बहनों के साथ या भाइयों के साथ उस रिलेशनशिप को सेलिब्रेट करता हुआ आप हमें व्हाट्सएप कीजिए 2148377147 एंड आई विल गिव यू दिस प्लेटफॉर्म टू ऑल्सो शेयर इफ़ यू वॉन्ट टू गो ऑन एयर एंड यू नो गिव दैट वन मिनट वॉइस नोट ऑन एयर, यू आर मोर देन वेलकम टू डू दैट। ऑलराइट, यू कैन विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस। आप अगर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं तो आप वन ऑफ द विनर्स बन सकते हैं, इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसिस दैट यू कैन विन, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज, ऑल ऑफ दैट। और पता है ना ग्रैंड प्राइज क्या है? सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटाओ कैसीनो एंड रिजॉर्ट इन ड्यूरेंट। सो येस, कॉन्टेस्ट डिटेल्स चेकआउट करने के लिए आपके पास बस अब दो ही दिन रह गए हैं। 28th को है रक्षाबंधन और उसके बाद ये जो ये अमेजिंग एक सेलिब्रेशन चल रहा है विद चौकटाओ कैसीनो एंड रिसोर्ट, ये बंद हो जाएगा। तो जल्द से जल्द इसमें पार्टिसिपेट करें, हमारी सोशल मीडिया पेजेस पे जाके आपको सारी कॉन्टेस्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। चौकटाओ कैसीनो एंड रिसोर्ट इन ड्यूरेंट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड together. You must be 21 or older to participate. Certain terms and conditions do apply. Or you know, responsibly खेलिएगा जब आप चौकटाओ कैसीनो एंड रिजॉर्ट में अगर जीतते हो और जाते हो तो आराम से थोड़ी शांति के साथ खेलिएगा। यू आर लिसनिंग टू गपशप गली विथ मीठू। सेलफोन की बातें, वो जो नॉस्टैल्जिया सेगमेंट हमने पकड़ा है ना जिंदगी अनप्लग में, हम वो कंटिन्यू करने वाले हैं राइट हियर एंड इन In the moment, I am going to play another Apar Shakti Khurana song, जो मुझे अभी फिलहाल मेरे दिमाग में आया, मैंने सोचा why not यार, ये बंदा वो है जो एक्टिंग भी ज़बरदस्त करता है और बंदा गाता भी बहुत अच्छा है।

0: ऐसी है कहानी दो अजनबियों की, हम दोनों की।
1: हमारी भी कहानी कोई कम रोमांचक नहीं है, क्योंकि हम एक दूसरे को चेहरे से नहीं जानते हूँ लेकिन आवाज़ से पहचानते हैं, और हमारी इस आवाज़ की दुनिया में आप हमारे पार्टनर्स इन क्राइम हैं। और यहाँ पर आपको इसीलिए बताना चाहती हूँ कि भाई funpizzakitchen.com ये वेबसाइट आप खोल के रखें अपने फ़ोन पर, क्योंकि इस अगले गाने के बाद ना आप लोगों के लिए उनकी तरफ से एक गिव अवे है। सो गेट रेडी विद दैट वेबसाइट ओपन ऑन योर फोन्स ladies and gentlemen, and talking about which, जी हाँ, इस जिंदगी अनप्लग सेगमेंट में नॉस्टैल्जिया का जो ये रास्ता पकड़ा है कि सेलफोन के पहले की दुनिया हमारी क्या होती थी, जहाँ पर बोर्डम वॉज हाउसोएवर नेगेटिव इट साउंड्स, लेकिन बोर्डम एक फैक्टर जिंदगी का ऐसा था कि हमें वो बोरिंग भी नहीं लगता था, कहीं वेट करना पड़ता था और घंटों वेट कर लेते थे, चाहे वो ग्रोसरी की लाइन में हो, चाहे कहीं किसी वेटिंग रूम में हो, हम आराम से वेट कर लेते थे एक दूसरे का चेहरा ताकते हुए या बातचीत ही कर लेते थे। यार ये सारी चीजें वो फोन सेलफोन हमारे पॉकेट्स में होने के पहले की बात है। जैसे कि बात कर लिया यार फोन उठा के कि दुकान कब तक खुली है, या उस तरह की सारी चीजें जो आजकल हम काफी ऑटोमेटेड में बिलीव करते हैं। हम एप्स पे जाकर देख लेंगे यार कितने बजे बंद हो रहा है, हम कॉल क्यों करें, किसी के साथ बात करने की तमन्ना ही थोड़ी सी हमारी कम हो गई है। वी वुड रादर लाइक इन्फॉर्मेशन जस्ट सर्व टू अस ऑन द स्क्रीन, और ऐसे में एक और चीज़ जो बिल्कुल गायब हो गई है वो है गुम हो जाना। पता है ना आपको, वो रास्ता भटक जाते थे जब हम एक अपना एक रूटीन पार्ट था ये हमारी ज़िंदगी का, कि जब वो प्री गूगल मैप्स और जीपीएस हमें डायरेक्शंस हमें नहीं पता होती थी उस ज़माने में, और हम क्या करते थे, कुछ लैंडमार्क के हिसाब से याद रखने की कोशिश करते थे। और अगर आप एक नए नेबरहुड में जा रहे थे उस टाइम पे, तो आपके आसपास जो भी एक आपके लिए सोल्यूशन था, आप वो क्या करते थे, आप या तो प्रिंटआउट्स मैप क्वेस्ट का निकाल लेंगे। वो सारी बातें हमारी एक बार हो चुकी है मुझे पता है। और जब कुछ समझ नहीं आता था, जब मान लीजिए मैप क्वेस्ट के मैप से भी हमें बातें नहीं समझ में आती थी, तो हम सिंपली अपनी कार का विंडो रोल डाउन करके या तो कहीं रुक कर हम पूछ लिया करते थे रैंडम किसी इंसान से कि भाई ये रास्ता कहाँ जा रहा है या फलाना जगह कहाँ पर हमें मिलेगी, और वो आगे से लेफ्ट पीछे से राइट वो सब करते करते पीले घर के पीछे एंड ऑल ऑफ दैट करते कराते हम पहुँच ही जाते थे सही डेस्टिनेशन पर। आजकल अनलेस आपके फ़ोन की बैटरी कम्प्लीटली मर रही हो ना, गेटिंग ट्रूली लॉस्ट इज एब्सोल्यूटली इम्पॉसिबल। एवरीथिंग इज मैप्ड आउट यार, इट इज डेफिनेटली सेफर एंड फास्टर नाउ, बट वी डेफिनेटली लॉस्ट ए लिटिल बिट ऑफ दैट स्पॉन्टेनियस एडवेंचर दैट वी यूज टू हैव बिफोर सेल फोन टाइम्स।

0: क्या सोच रही हो?
1: मैं?
0: हाँ हाँ
1: कुछ भी तो नहीं।
0: बोलो ना कुछ तो।
2: ऐसा ना हो तू कभी छोड़ दे मेरा साथ,
0: फिर ना कभी कहना।

और जितने भी प्रेमी है ना फन पिज्जा किचन के, वो फटाफट अपना सेल फोन उठाएं और फोन लगाएं, क्योंकि आप लोगों के लिए सवाल है और सवाल के साथ जुड़ा एक गिव अवे है दैट आई इड लाइक टू गिव वन ऑफ यू $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन, अगर आप मेरे एक सिंपल सा सवाल का जवाब देते हैं. और वो सिंपल सा सवाल बहुत ही सिंपल है एक्चुअली, इसीलिए पहले से ही मैंने आपको कहा था कि भाई फन पिज्जा किचन डॉट कॉम पे तैयारी रखें आप अपनी, सो दैट यू कैन क्विकली गो ऑन टू द वेबसाइट एंड फाइंड आउट द डिटेल्स. अब डिटेल कुछ पहले मैं दे देती हूँ, उसके बाद आप कॉल कीजिएगा. 972-235-5555 हमारे स्टूडियो का नंबर है. और आप जानते हैं ना कि भाई फन पिज्जा किचन में आपके लिए देसी पिज्जा लाइनअप है, वो जो इटालियन पिज्जा में जो वो देसी ट्विस्ट जो आता है ना, मतलब कमाल ही लगता है. अब ब्रांड न्यू मेक्सिकन इंस्पायर्ड पिज्जा लाइनअप जो है वो भी आप बहुत इंजॉय करने वाले हो. फुल ऑन फ्लेवर फिएस्टा आपके लिए होने वाला है, फ्रेश फिएस्टा विद वेजी टू द फायरी पोलो लोको दैट यू कैन एंजॉय, एंड देर इज प्लेंटी मोर. ये तो मैंने दो खास ऐसे मेक्सिकन ट्विस्ट के साथ जो पिज्जा सर्व की जाएंगे आपको उनके बारे में बताया. बाकी के लिए वंस अगेन यू हैव टू गो टू फन पिज्जा किचन डॉट कॉम. फिलहाल पता है मैं क्या जानना चाहती हूँ कि आप मुझे ये बता दो कि उनका फोन नंबर क्या है. सिंपल, फन पिज्जा किचन डॉट कॉम का फोन नंबर क्या है. जरूर जाएं फन पिज्जा किचन डॉट कॉम पे, यू विल फाइंड ऑल द इन्फो अप देयर. इट इज इन फ्रिस्को लेडीज एंड जेंटलमैन दैट यू हैव टू गो एंड पिक अप दैट $10 गिफ्ट कार्ड अगर आप जीतते हैं. फिलहाल तो ये अगला गाना प्ले करने के पहले ना, आई डू वॉन्ट मेक श्योर कि सेलफोन के बारे में एक और चीज़ आप लोगों को याद दिलाऊं मैं, कि क्या है ना सेलफोन के पहले का ज़माना जो होता था वो ऐसा ज़माना होता था कि दोस्तों या फैमिली के बीच अगर कुछ मूवी ट्रिविया फॉर इंस्टेंस या कोई रैंडम फैक्ट अगर उसके बारे में डिबेट अगर हो जाए तो वो डिबेट ही बना रहता था. आजकल कोई भी सवाल आए आप क्या करते हो, आप तुरंत अपने फ़ोन पे जाते हो, गूगल निकालते हो और उस पे अपने डिबेट का इंस्टेंटली 5 सेकेंड्स के अंदर आंसर ढूंढ के कौन सही कौन गलत तुरंत पता चल जाता है. पर पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. पीपल सिंपली हैड टू स्पेंड फार मोर टाइम सिटिंग इन द अननोन. करेक्ट, अगर किसी फैक्ट के बारे में कोई कन्फ्यूजन थी तो यू हैड टू रिलाई ऑन योर ओन थियरीज, आर्ग्यू विथ योर फ्रेंड्स, या फिर घर जाकर किसी हैवी एनसाइक्लोपीडिया में ढूंढना पड़ता था. वी हैड टू एक्चुअली वेट फॉर आंसर्स विच मेड फाइंडिंग देम आउट सो मच मोर सैटिस्फाइंग एंड मेमोरेबल एट द सेम टाइम आई वुड से. क्योंकि जब आप मेहनत करके कुछ चीज़ सीखते हो ना, वो दिमाग में ना रह जाती है बात, क्योंकि अभी हमें पता है कि एक सेकंड में हमें जवाब मिल जाएंगे, तो अगर भूल भी जाएं हमें पता है कि एक और सेकंड लगाएंगे और फिर याद दिला देगा गूगल हमें.

0: जिंदगी अनप्लग सेगमेंट में कुछ यादों की अलमारी ही तो खोल के बैठी थी. द प्री सेलफोन टाइम्स दैट वी वर टॉकिंग अबाउट एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट कि कुछ चीज़ें कैसे गायब हो गई, कब गायब हो गई पता ही नहीं चला यार. जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, हमारे जो कम्प्लीटली अनरिकॉर्डेड एक्सपीरियंसेस हैं उस ज़माने के, लाइफ का मेजॉरिटी हिस्सा पहले कम्प्लीटली अनडॉक्यूमेंटेड होता था. मानते हैं कि आप जब तक आप स्पेशली एक हैवी वीडियो कैमरा या फिर एक कोडैक कैमरा लेकर नहीं जाएं कॉन्सर्ट्स पे या पार्टीज पे या स्पेशल मोमेंट्स, तो ये मेमोरीज आपके दिमाग में ही रह गई, दिल में ही रह गई, और वो कितनी खूबसूरत जगह पे हैं, है कि नहीं. आजकल इट्स हार्ड टू गो टू अ लाइव कॉन्सर्ट या इवेंट विदाउट सीइंग अ मैसिव सी ऑफ ग्लोइंग सेल फोन्स इन द एयर. हम हर छोटी चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं आजकल, इजंट इट ट्रू. वी डेफिनेटली हैव यू नो मोर फोटोग्राफ्स एंड रिकॉर्डिंग्स ऑफ आर लाइव्स देन एवर बिफोर. बट द बिग क्वेश्चन इज, डज रिकॉर्डिंग एवरीथिंग मेक अस लेस प्रेजेंट इन द एक्चुअल मोमेंट? Are we missing the magic while trying to capture it? कुछ pertinent questions के साथ छोड़े जा रही हूँ और इस segment को यहीं पे wind up किए जा रही हूँ. अगले segment में we will talk about something new, something fresh. Keep.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender and MLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Heere moti, main na chahun.
8: Achha, manifest karne se pehle thoda dubara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy 2 get 1 free offer. Tanmay Jewelers in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy 2 get 1 free. Aur wo bhi sab kuch wholesale price par. Chahe proposal ho, wedding ho ya bas apni sparkle upgrade karni ho. Ab shine double within budget. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
9: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
10: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
11: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
12: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
13: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
14: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
15: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
14: नहीं।
15: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
14: नहीं।
15: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
14: वो भी नहीं।
15: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
16: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply. Sadia.
17: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
18: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
16: 360 shows True Payment presents Sonu Nigam live in Dallas.
19: तुमसे मिलके दिल का है।
18: Saturday, September 26th, 8:30 PM onwards at the Credit Union of Texas Event Center, Allen.
16: Tickets available at Ticketmaster. For more info, call 855-360-SHOWS. Exclusive media partner, Fun Asia Network.
20: Tracks that put you on the right track.

0: ladies and gentlemen, Sonu Nigam Revolution, that is coming to our town. Kal ho na ho bhai, tickets khareed lein. Jal se jal, before they, it is a sold out concert, September 26th at 8:30 p.m. at the Credit Union of Texas Event Center. And it is happening in a month's time, exactly a month's time. To zarur yaad rakhi, aapke sare favorite gaane honge yaar. And Sonu Nigam ka presence in itself is a memory that you are going to make for yourself. Aur wo experience bahut kamal ka hoga. Jinhone bhi unke concerts attend kiye, wo jante hain ki wo apna presence leke jo ek khas concert ko banate hain na, it is absolutely mind-blowing and it's absolutely very, very special. So do that, ladies and gentlemen, all right? And it is at ticketmaster.com that you can actually check it out, the tickets that are available for all of you. Once again, thank you very much for tuning in. This is गपशप गली विथ मी टू. और आप लोगों के साथ ना एक चैलेंज आपको प्रेजेंट करना चाहती हूँ, और एक बहुत प्रैक्टिकल सा चैलेंज है. और मैं समझिए कि आपके हाथ में ना मुफ्त के कुछ पैसे देने वाली हूँ, और आप मुझे बताओगे कि वो पैसे आप कैसे स्पेंड कर सकते हो. 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, मैं सीधे आपको $85 आपके हाथ में रखने वाली हूँ. एंड यू हैव टू सीरियसली थिंक अबाउट इट. जब आप अपनी पॉकेट या बैंक ऐप देखते हैं ना, तो आज के टाइम में एग्जैक्टली $85 आप कैसे स्पेंड करोगे व्हेन आई गिव यू दैट? शायद एक लेजी डोर डैश ऑर्डर, जिसमें आधा पैसा तो आप टैक्स को दे दोगे, डिलीवरी फीस को दे दोगे, या टिप में निकल जाता है, राइट? या तो वीकेंड मूवी या स्नैक्स फॉर द फैमिली. टिकट्स एक बड़ा प्राइस टैग लेकर आता है, उसके अलावा पॉपकॉर्न, ड्रिंक्स लेते लेते वो 85 का कुछ हिसाब बन ही जाता है इफ़ यू आर गोइंग विथ ए पार्टनर, राइट? तो हियर इज माई चैलेंज. अगर मैं आपको $85 कहती हूँ कि आप कैसे स्पेंड कर सकते हो, ये चैलेंज आप एक्सेप्ट कीजिए और मुझे तुरंत बताइए 972-235-5555 पे कॉल करके कि आप उन $85 को सबसे बढ़िया तरीके से कैसे स्पेंड कर सकते हो. बिकॉज आई हैव समथिंग फॉर ऑल ऑफ यू दैट यू कैन डू विथ योर $85 दैट आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग आफ्टर दिस नेक्स्ट ट्रैक दैट आई एम गोइंग टू प्ले फॉर ऑल ऑफ यू. सो यस, मजा मना लीजिए यार. आई वॉन्ट टू नो $85 आप कैसे स्पेंड करते हो. ठीक है, मैं एक पहला कॉलर लेती हूँ ऑन एयर. यू आर लाइव ऑन एयर, बताइए $85 का खर्चे का हिसाब दीजिए मुझे.
1: मैं पूरे अपने बीवी बच्चों में बांट दूंगा.
0: पूरे अपने बीवी बच्चों में बांट देंगे आप? क्या बात है यार, क्या बात है. दोस्तों में बांटेंगे क्या? मतलब जस्ट सेइंग,
1: बीवी बच्चे पहले.
0: बच्चे, बीवी बच्चे पहले, क्या बात है जी, क्या बात है. थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल. व्हाट्स योर नेम?
1: सैयद.
0: सैयद साहब, शुक्रिया.

0: एक कॉल के लिए, एंड यहाँ पे एक और कॉल लेना चाहती हूँ और पूछना चाहती हूँ कि अगर आपके हाथ में मैंने $85 रखा तो आप वो कैसे स्पेंड करोगे?
1: आई विल डोनेट इट.
0: यू विल डोनेट इट. यार हमारे लोग बड़े अच्छे हैं यार, बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं एवरीबडी. वेरी नाइस टू हियर दैट. $85 आप डोनेट कर दोगे. वेरी ब्यूटिफुल थॉट देयर. व्हाट्स योर नेम?
1: स्वागतिका.
0: स्वागतिका. थैंक यू वेरी मच. इसके बाद मैं आपको बताऊं कि एग्जैक्टली $85 का ये जो ये स्पेंडिंग का हिसाब हमने रखा है ना, नॉट एवरीबडी यू नो सॉर्ट ऑफ डोनेट, राइट? लोग मौजा मस्ती में लगाते हैं, तो वो मौजा मस्ती वाला जो हिसाब है उसमें एक बहुत बेहतरीन चीज़ फिट इन हो सकता है $85 में. वो मैं आपको बताने वाली हूँ राइट आफ्टर दिस सॉन्ग. थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माई $85 challenge, ladies and gentlemen.

आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि भाई अटर्नी ओमर ख्वाजा आपकी बहुत बेहतरीन हेल्प कर सकते हैं. इफ़ यू हैव बीन इनटू ए कार एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल, कुछ आपका कुछ यू नो इंजरी हुई है आपको, तो आप इनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं. इफ़ यू थिंक यू डिज़र्व ए कॉम्पनसेशन फ्रॉम द अदर पार्टी, वो लीगल बैटल जो होता है ना, वो बिल्कुल परेशान कर देता है आपको. एंड ऑलरेडी अगर आप परेशान हैं अपनी इंजरी को लेकर, इसके लिए और परेशान ना हो. द कॉम्पनसेशन बैटल दैट दे कैन विन फॉर यू, और सिंपल सी बात है जो इन्होंने बड़े स्ट्रांग तरीके से कही है कि यू पे नथिंग अनलेस योर केस इज वन, दैट इज अ बिग प्रॉमिस दैट दे कम विथ. 4693005046 इज द नंबर टू कॉल. attorneyomer.com is their website, and for that free consultation do give them a call. Ek traffic update attorney Omar Khwaja ki taraf se, ye main batana chahti hu ki I-35 east at Dallas North tollway northbound right exit is closed because of a major collision there. So if you are on that route, and if you think you want to take that exit, be mindful about it, and maybe you can take an exit before that, after that, or if you want to take a detour. This is for all of you to know. I-35 east at Dallas North tollway northbound. Acha, कल द वर्ल्ड हैज़ लॉस्ट एन एब्सोल्यूट ट्रेजर. डॉली पार्टन सिर्फ एक कंट्री म्यूजिक सुपरस्टार नहीं थी, शी वॉज ए लेजेंड एज वी ऑल नो, जिन्होंने अपनी ब्रिलियंट स्टोरी टेलिंग से शी मेड अ प्लेस इन गजिलियन हार्ट्स एज वी नो. सम 26 ईयर्स बैक आई थिंक मैंने उनको पहली बार टीवी पे सुना था, और उनकी आवाज़ तो कमाल की लगी ही थी, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी बहुत मेस्मराइजिंग लगी थी. Just so beautiful that her presence was on the screen. And since then, kafi sunti aayi hoon unko. Aur isme koi shak nahi that her true magic came from her glittering personality, sharp wit, and a heart that was even bigger than her iconic hair. It's no brainer ki unko log itna pasand karte the. She stayed genuine, she stayed humble and very helpful, as I come to know from the stories that I'm reading. Bahut kind thi, absolute real person that she felt like sirf एक ह्यूमन बीइंग के तरह नहीं, लेकिन अपने क्राफ्ट में भी बहुत रियल रही हैं वो. एंड दैट वाज द मोस्ट एंटाइसिंग फैक्टर अबाउट हर फॉर मी. एंड टाइमलेस क्लासिक्स अगर उनके उनके गानों की बात करूं मैं, तो जोलीन से लेकर 9 to 5 डिन जस्ट टॉप द चार्ट्स, दे बिकेम डिफाइनिंग कल्चरल एंथम्स फॉर जेनरेशंस. Every fan globally उन्हें याद कर रहे हैं आज. And in fact, today morning Buckingham Palace gave a royally touching tribute to Dolly Parton during the changing of the guard ceremony. The military band played the late country singer's hit song 9 to 5. And talking about her songs, I really need to take a moment to talk about her ultimate masterpiece, I Will Always Love You. शायद बहुत लोग ये नहीं जानते होंगे कि ये गाना जो है, जो लेटर विटनी ह्यूस्टन ने 90s में फिल्म बॉडीगार्ड के लिए गाया था, द बॉडीगार्ड विद केविन कॉस्टनर, ये गाना एक्चुअली 1973 में डॉली पार्टन ने अपने मेंटोर के लिए गाया था, पोटर वैगनर के लिए गाया था, जब वो अपना सोलो करियर शुरू करना चाहती थी. और पोटर वैगनर का जो टीवी शो था वो छोड़ना चाहती थी, वो परमिशन उन्हें नहीं मिल रहा था. दैट्स व्हेन शी रोट द सॉन्ग ओवरनाइट एंड सैंग इट डायरेक्टली टू हिम इन हिज ऑफिस द नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि पोटर उन्हें जाने की इजाज़त नहीं दे रहे थे. एंड ये गाना सुनकर उनकी आंखों में भी पानी था, एंड ही लेट हर गो. एक बात जो दिल से कहना चाहती हूँ डॉली पार्टन के लिए, वी विल ऑलवेज ऑलवेज लव हर.

0: help life, treat you kind, and I hope that you have all that you ever dreamed of, and I wish you joy and happiness. But above all of this...
1: And that's all the time I have with you all. This is Me Too signing off for the day.
2: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
3: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
4: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
5: जी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे?
6: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
5: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
6: हेलो, तुम डेलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
5: सच में? सब संभालेंगे?
6: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
3: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
7: Breaking news! Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai transparent pricing, no hidden fees, no surprises. Aur haan, sabse badi khabar, unka AI-powered platform real-time rates compare karta hai taki aapko mile better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews, hazaro families ka bharosa. Visit MyFamilyHomeLoan.com or call 469-734-3338. 469-734-3338. MyFamilyHomeLoan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
8: Dude, life में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं front page पे रहूँ.
9: Front page का तो पता नहीं, but तेरा page 3 में होना मेरी guarantee है.
8: कैसे?
9: Page 3 eatery?
8: No, not another restaurant again.
9: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours, and the food crafted to suit every craving, every appetite.
8: मतलब great food, great drinks, and great company, yani ki main.
10: Page 3 Eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
11: It's true. Hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life. From relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
12: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
13: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स। और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो। विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
14: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
15: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
14: Kya matlab?
15: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
14: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
15: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
14: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
9: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
16: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
17: 104.9 FM, Fun Asia Radio, Fun Asia Radio, non-stop infotainment.
18: एंड गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून डैलस. आपकी होस्ट आयुषी स्टूडियो से आपके साथ जुड़ चुकी है और कुछ प्यारे खूबसूरत गानों के साथ आपकी दोपहर को और हसीन बनाने आए हैं हम. और मौसम बदल रहा है तो मेरे जहन में एक गाना था. मैं ऐसे ही गाने बजाती हूँ, जो मैं गुनगुनाती हूँ ना, बस वही आला करके आप तक पहुँचा देती हूँ और शायद ये गाने आपके दिल से जुड़ भी जाते हैं. तो आज का पहला गाना मौसम को नज़र में रखते हुए, बड़ी गर्मी पड़ रही है और इससे राहत चाहिए बस.
19: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

हम आपके हैं कौन का ये गाना बॉलीवुड की एक आइकॉनिक फिल्म है ये, जो कि रिलीज हुई थी और एक रीमेक भी है ये, नदिया के पार की रीमेक है ना, पता है आप लोगों को? जी हाँ, ये नदिया के पार की रीमेक है जो सूरज बड़जात्या जी के फादर ने डायरेक्ट की थी, दैट वाज बैक इन द 80s, एंड उसके बाद से फिर से इस पर एक फिल्म बनी। और इस फिल्म में सलमान खान, आपको पता है, पहले चॉइस नहीं थे। इस फिल्म का पहला चॉइस कौन था क्या आप ये जानते हैं? हम आपके हैं कौन के लिए जो लीड एक्टर थे, वो अभी कुछ दिन पहले एक एक्टर ने ये बात इस बात की चर्चा की है, सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हुआ कि वो पहले चॉइस थे। क्या आप लोग जानते हैं कि वो कौन से एक्टर थे जो इस फिल्म की पहली चॉइस बने थे?

Involved in a car or truck accident or a slip and fall incident, attorney Omar Khwaja will fight your case and help you get compensation that you deserve. Dealing with insurance companies can be stressful and you need an attorney that will make you compensated. Don't pay until you win. For a free consultation, call 469-300-5046 or visit attorneyomar.com. तो चलिए अपने शो को आगे बढ़ाते हैं और हम चर्चा कर रहे थे हम आपके हैं कौन के बारे में. ये फिल्म 1994 में आई थी, सूरज बड़जात्या की फिल्म थी और इसमें सलमान खान और माधुरी दीक्षित हैं. ये सब हमको पता है ऑलरेडी, लेकिन सलमान खान के पहले इस फिल्म की फर्स्ट चॉइस कोई और था और वो थे पीयूष मिश्रा. पीयूष मिश्रा जो कि उस समय पर वो भी उनकी पहली फिल्म होने वाली थी और सूरज बड़जात्या की पहली चॉइस थी. फिर कुछ उथल पुथल हुई एंड देन सलमान वॉज गिवन दिस मूवी. और ये एक ऐसी मूवी है जो हम बार बार बोलते हैं, कितने बार भी देख सकते हैं. और उस समय भी इस फिल्म ने सबसे बहुत कनेक्ट किया था, सबको बहुत मज़ा आया था. मुझे आज भी वो पहला रिएक्शन याद था, मेरे कज़न ने पहली बार ये मूवी देखी थी हॉल में जाके. ही वॉज द फर्स्ट वन द फैमिली टू वॉच दैट मूवी एंड ही केम बैक होम एंड सेड ओ माय गॉड, इस फिल्म में 14-15 गाने हैं और पूरे फिल्म में बस हर थोड़ी देर पर गाने ही आते हैं. ऑल द सॉन्ग्स आर सो ब्यूटिफुल. इनफैक्ट ये फिल्म इतनी लंबी थी कि इसको छोटा करके ही 3-3.5 घंटे की मूवी बनाई गई थी, 3.5 घंटे ऑलमोस्ट. एंड देन फिर से इस मूवी को कुछ सीन्स जो हटा दिए गए थे री रिलीज किया गया था, जिसमें एक गाना ऐड हुआ था. ये गाना फर्स्ट रिलीज में नहीं था, जब फिल्म दोबारा रिलीज की गई तो ये गाना आया.

0: इस खूबसूरत से गाने के साथ वक्त हो रहा है कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक पे जल्दी से जाते हैं, वापस आते हैं और कुछ प्यारे खूबसूरत गानों का सिलसिला चलता रहेगा। आपकी फरमाइशें ले रही हूँ तो आप स्टूडियो के नंबर पे कॉल करना मत भूलिएगा। फिलहाल ब्रेक पे जाते हैं और जल्दी से वापस आते हैं। सुनते रहिए फन एशिया 104.9 FM।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: यार मॉडर्न मंगलसूत्र ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ।
0: तो कैरेट लेन चलो, दे नाउ हैव अ स्टोर इन फ्रिस्को एंड द बेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस।
3: सीरियसली कैसा कलेक्शन है?
0: मिनिमल, डायमंड, एलिगेंट, एवरीडे स्टाइल्स। यू विल प्रोबेबली स्पेंड मोर टाइम चूजिंग देन शॉपिंग।
4: फाइंड द मंगलसूत्र दैट मैचेस योर स्टाइल एट कैरेलिन, होम टू द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस। Carrot Lane, now open in Frisco, next to Tanishq.
5: Floors clean.
6: Check.
5: Windows clean.
6: Check.
5: Kitchen clean.
6: Check.
5: Air ducts clean.
6: Wait, air ducts भी clean करना होता है?
7: बिल्कुल, जो दिखता है वो तो हम clean कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush, plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices, ya phir any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
12: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
13: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
12: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
13: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
12: ये क्या होता?
13: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
14: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
15: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
16: एक और लड्डू ले लो।
17: थोड़ी और बिरयानी?
16: अरे अमेरिका जाके थोड़ी मिलेगा।
18: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बनके साथ आ गए।
14: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए। स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अलॉन्ग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स, वी आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जायटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स। कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर।
19: हे, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
20: लिया।
19: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
20: नहीं आया।
19: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772। That's 972-863-772.
14: Visit www.senadainc.com today.
5: We need to talk.
21: अब क्या हुआ?
5: Nothing. It's not you.
21: Oh no.
5: It's the distance.
21: Distance? We live 10 minutes apart.
5: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
15: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
22: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार,
17: खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
20: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
22: हाय दिस इज शर्वरी, यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो।
0: वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक और आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फन एशिया 104.9 एफएम पे। और आज कुछ गाने चल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी फरमाइश पे, तो कॉल करना मत भूलिएगा। गाने लाइनअप करके रखे हैं मैंने और उन गानों से जुड़ी कोई ना कोई कहानी लेके आ रहे हैं आपके लिए। एक छोटी सी कहानी हर गाने के पीछे होती है, हर फिल्म के पीछे होती है, और कोशिश करूँगी कि वो कहानी और या फिर वो इंटरेस्टिंग सी बात इस गाने या फिल्म के बारे में आपके लिए लेकर के आऊँ।
23: आकर
24: ओह शिट,

0: ow.
1: Masagali. Ow. Masagali. Ow.
2: Ah, yeah, but,

दिल्ली 6 का ये गाना काला बंदर वाली फिल्म पर, काले बंदर के बारे में बात नहीं करेंगे, बात करेंगे इस फोक सॉन्ग की जिसको फ्यूजन में कन्वर्ट किया एआर रहमान साहब ने और आवाज दी रेखा भारद्वाज ने। और ये गाना एक फोक म्यूजिक है जो कि छत्तीसगढ़ से आता है, और आई मीन 1970s में ये गाना भुवल राम यादव ने गाया था, और ये एक फोक पोएट हैं गंगाराम शिवारे जिन्होंने इस गाने को लिखा था, बट एआर रहमान ने इसको फ्यूजन बना के हम सबके दिलों में ना इसकी कुछ अलग ही जगह बना दी थी।

हम साथ साथ हैं का ये गाना। और इस फिल्म से जुड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स तो हैं ही, पर इस फिल्म के शूटिंग के दौरान बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हुआ था जब सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम ब्लैक बक पोचिंग केस में आए थे और फिल्म से ज़्यादा चर्चा इस बात को मिली थी। फिल्म तो जो थी अच्छी थी, हिट हुई, सुरेश बरजातिया की फिल्म थी, उनका वही स्टार कास्ट जिसमें रीमा लागू हैं और सलमान खान है, करिश्मा कपूर है, ये सारे वो सारा सारा स्टार कास्ट आपको सिमिलर देखने को मिलता है, मोनिश पहल मिल जाएंगे। लेकिन ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई थी फिल्म क्योंकि उस समय ब्लैक बक की जो पोचिंग हुई थी उस केस में ये सारे के सारे यहाँ से वहाँ भाग रहे थे। चलिए अपने शो को आगे बढ़ाते हैं और ऐसी ही कुछ कहानियाँ ढूंढ ढूंढ के लाऊंगी किसी न

किसी गाने या फिल्म से जुड़ी हुई। फिलहाल आपको बता देते हैं खाने पीने की जगहों के बारे में, और हमारे पास है पेज 3 ईटरी। सिजलिंग कबाब हो या फिर फ्लेवरफुल चाट हो, फ्यूजन बाइट हो या रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स हो, यू हैव टू ट्राई दिस एट पेज 3। एंड इफ यू हैवंट स्टिल ट्राइड दिस एट पेज 3 ईटरी, यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग। इट्स लोकेटेड एट हब 121। दिस इज वेयर बोल्ड इंडियन स्ट्रीट फूड मीट्स मॉडर्न फ्लेयर। तो ब्रंच पे जाना हो, लंच पे जाना हो, डिनर पे जाना हो, डेट पे जाना हो, या फिर एक फूडी मीटअप हो दोस्तों के साथ, पेज 3 ब्रिंग्स द परफेक्ट मिक्स ऑफ फ्लेवर्स, एनर्जी एंड वाइब्रेंट वाइब्स। विजिट पेज 3 at Hub 121, and you can explore more at page3eatery.com. चलिए अगले गाने की तरफ चलते हैं। इस गाने की फरमाइश आई है सफी की तरफ से।

So here was this song from Dhoom 3 और सफी की फरमाइश पे था गाना. और इस गाने के बारे में अगर एक फैक्ट मैं ये बताऊं तो इस सिर्फ इस एक गाने के लिए सिर्फ इस एक गाने के लिए कटरीना ने 1.5 महीने तक खुद को ट्रेन किया था, 1.5 months. सो शी हैड पुट सो मच एफर्ट फॉर दिस सॉन्ग, जस्ट ओनली वन सॉन्ग. एंड दिस इज वॉट एक्टर्स एंड गुड एक्टर्स डू. वो किसी भी कैरेक्टर में जाने के लिए, किसी भी चीज़ को अच्छे से करने के लिए बड़ी ही कड़ी मेहनत करते हैं, और वो मेहनत हमें दिखती है उनके एक्टिंग के थ्रू. चलिए आगे बढ़ते हैं, शो को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाने के पहले क्यों ना आपको एक जानकारी दे दें. No health insurance or it's Passion Health out of your network. Stay connected to affordable primary care with Passion Health Direct for just $85 a month. Your membership includes primary care visits, follow-up, preventive care, chronic disease and medication management. Telehealth when appropriate, care coordination plus 20% savings on eligible self-pay labs, imaging and diagnostic services. Call text 214-666-6259 or visit passionhealthphysicians.com. Passion Health, our passion, your health, our community. This program is not a health insurance. Eligibility restrictions to apply.

No, no, it's 104.9. One 104.9.

स्टूडेंट ऑफ द ईयर सिद्धार्थ मल्होत्रा, वरुण धवन एंड आलिया भट्ट. हम सब जानते हैं कि ये इन तीनों की पहली फिल्म थी एज एक्टर्स, एंड आलिया भट्ट ने बहुत मेहनत की थी इस रोल के लिए. शी लॉस्ट ऑलमोस्ट 16 kgs एंड देन शी वॉज डूइंग दिस मूवी. लेकिन फैसिनेटिंग पार्ट ये है कि वरुण और सिद्धार्थ दोनों ने करण जौहर के साथ इसके पहले काम किया था, बट बिहाइंड द कैमराज. जी हाँ, दे हैड बोथ वर्कड एज असिस्टेंट डायरेक्टर्स विद करण जौहर इन 2010 माई नेम इज खान के लिए. एंड एक्टर बनने के पहले ये दोनों असिस्टेंट डायरेक्टर बन के करण जौहर के साथ काम कर रहे थे और फिल्में बना रहे थे. तो चलिए ऐसे ही कुछ कहानियाँ लेके आऊँगी मैं, अलग अलग गानों के बारे में, फिल्मों के बारे में, एक्टर्स के बारे में, जो भी उस गाने से जुड़े होंगे. चलिए अगला गाना ये रहा आपके लिए.

0: श्रावण हमें जोड़ता है भगवान से, रक्षाबंधन हमें जोड़ता है अपनों से, और कुछ रिश्ते एक डोर से शुरू होते हैं और एक अनमोल निशानी के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और पीएमजे ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे।
1: पीएमजे ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को।
2: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
3: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
4: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
3: Fear not. We have the perfect solution.
1: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new Weekend Lunch Buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
5: Aji, sunte ho?
6: Aji, nahi. Aji, sunte.
7: The OG of tax planning, AG FinTechs. Sunenge aapke financial concerns, denge smart solutions. Every Friday, 9:45 a.m. Only on Funasia Radio.
8: चीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
9: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
8: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
9: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
8: और एंटरटेनमेंट,
9: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स, सब आपकी खिदमत में।
8: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
9: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
10: द बिगेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव योर चाइल्ड इज द गिफ्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
11: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
12: Hi, this is Salim Merchant from Salim Suleiman, and you're listening to me on Funasia Radio.
13: Dallas ki dhadkan 104.9 FM, Funasia Radio.
14: वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फनेशिया 104.9 FM पर, और आज यहाँ पर आपसे बातें हो रही हैं कुछ प्यारे गानों के बारे में जिसके पीछे की छुपी कोई कहानी आप तक लेकर के आ रहे हैं। और अभी तक ये कहानियाँ या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस मूवी गाने के बारे में मैं लेके आ रही थी, पर हमारे कॉलर्स कहाँ कम हैं, उन्होंने भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दे दिया है हमें इस गाने के बारे में।

0: click on the bell icon to get regular
1: तो ये था यस बॉस का एक गाना आप लोगों के लिए, और इस यस बॉस के गाने के पीछे से जुड़ी है एक कहानी, और ये कहानी मैं नहीं लेके आई थी, मेरी कॉलर ने मुझे कहानी बताई, उन्होंने बोला कि बताने के पहले पता जरूर कर लीजिएगा। लेकिन कहानी है जुड़ी हुई इस कहानी के, इस गाने के दौरान जब शूटिंग हो रही थी बांद्रा में, तो शाहरुख खान इस शूटिंग के दौरान शाहरुख खान ने अपना घर देखा था, जो आज उनका घर है, जो कि उस समय नहीं था, मन्नत। और उसी समय उन्होंने ठान ली थी कि ये जो घर है वो लेंगे। उस समय ये घर किसी और का था, देयर वाज अ पारसी बिजनेसमैन हु यूज्ड टू ओन दिस हाउस, एंड वहां से उन्होंने मन्नत को खरीदने की ठानी थी और फाइनली खरीद भी लिया। तो इस गाने से जुड़ी कहानी आपके लिए लेकर के आई थी। अगर कोई और गाना आप सुनना चाहते हैं जिसके पीछे की कोई जुड़ी कहानी आपको पता है, तो ज़रूर शेयर करिएगा मेरे साथ। कॉल करिए स्टूडियो के नंबर पे और शेयर करिए अपनी वो कहानी।

कभी हाँ कभी ना का ये गाना, जिसमें है शाहरुख खान और उनके साथ है सुचित्रा कृष्णमूर्ति। 90s की वो फिल्म जहाँ पे ना हीरोइन के साथ हीरोइन फाइनली हीरो के पास नहीं जाती है, ये वो फिल्म है। शाहरुख खान ने इस फिल्म में किरदार निभाया है जो कि नटखट है, थोड़ा इमेच्योर है, अपने सपने पूरा करना चाहता है और एक लड़की से प्यार करता है। लेकिन कुंदन शाह जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने चाहा कि कुछ अनयूजुअल करते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं, और उन्होंने इस फिल्म में हीरोइन को हीरो के साथ नहीं जाने दिया। और लड़की को जब ये रियलाइज़ होता है कि वो उससे प्यार नहीं करती है, तो वो जा कर के हीरो उसके प्यार के पास उसको दे आता है। लेकिन कहानी वहाँ ख़त्म नहीं होती है यार, कभी हाँ कभी ना में एक और एक्ट्रेस आती है लास्ट में, जो कि शाहरुख खान को मिलती है सड़क पर। क्या आपको वो लास्ट सीन याद है? अगर आप मेरी तरह बॉलीवुड के फैन हैं ना, तो आपको वो लास्ट सीन जरूर याद होगा। तो चलिए जल्दी से कॉल करिए और मुझे बताइए उस आखिरी सीन में कौन है वो एक्ट्रेस जो दिखाई पड़ती हैं। फिलहाल आपको एक जरूरी जानकारी दे देते हैं, अगर आप वेडिंग, ग्रेजुएशन या हाउस वार्मिंग प्लान कर रहे हैं या कोई भी स्पेशल सेलिब्रेशन प्लान कर रहे हैं, तो स्ट्रेस करने के पहले वेन्यू, डेकोर, केटरिंग और छोटी छोटी डिटेल्स के पहले ना आपको एक नाम के बारे में जानना है, दैट इज वेनेसा इवेंट्स। दे मेक प्लानिंग सिंपल बाय ब्रिंगिंग एवरीथिंग टुगेदर इन वन प्लेस, फ्रॉम वेन्यू सिलेक्शन एंड ब्यूटीफुल डेकोर बाय सिग्नेचर इवेंट्स टू फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी एंड डिलिशियस केटरिंग एक्सक्लूसिवली बाय रेनोन्ड बसेरा ग्रैंड, सो यू कैन फोकस ऑन मेकिंग मेमोरीज व्हाइल दे टेक केयर ऑफ द रेस्ट। कॉल हरी बसेरा टुडे एट 469-442-8770। वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।

सो हियर वॉज दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग जो कि मरियम ने सोहेल के लिए डेडिकेट किया था. तो ये गाना लेकर के आए थे हम आपके लिए फिल्म गदर से. शो को आगे बढ़ाते हैं, कहानियों किस्सों का सिलसिला चलता रहेगा. मेरे सवाल भी मैं आपसे पूछते रहूंगी, लेकिन पहले आपको ये बता दूं दैट दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज प्राउडली ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स एंड अकाउंटिंग फर्म्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स. Whether you are an individual, a startup, or an established business, AG FinTechs offers innovative financial solutions tailored to your needs. From bookkeeping, payroll accounting, and bank and credit card reconciliations to proactive tax planning, tax compliance, financial reporting, and business advisory services, they help keep your finances organized, compliant, and future-ready. Trusted, efficient, and committed to your success, AG FinTechs is your partner in building a strong financial future. Call 469-942-9888 or visit agfintechs.com today. तो चलिए जल्दी से अगले गाने की तरफ आपको लेकर के चल रहे हैं. बड़ा ही खूबसूरत सा गाना है ये, और हम आज गानों के पीछे की कहानियाँ, फिल्मों के पीछे की कुछ सुनी अनसुनी कहानियाँ आप तक लेकर के आ रहे हैं. तो अगर किसी गाने की फरमाइश हो तो ज़रूर कॉल करिएगा स्टूडियो के नंबर पे. आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फन एशिया 104.9 FM पर. फिलहाल ये खूबसूरत सा गाना आपके लिए जो कि प्ले नहीं हो पा रहा है, माफ़ करिएगा इस डिले के लिए.

0: पहला नशा फ्रॉम द मूवी जो जीता वही सिकंदर। और ये फिल्म भी बड़ी प्यारी सी फिल्म थी और इसका एक गाना है वो मुझे बहुत पसंद है। उस गाने के बारे में मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगी। फिलहाल कमर्शियल ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं और गानों का सिलसिला चलता रहेगा फन एशिया 104.9 FM पर।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: This Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases, from silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make this Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
4: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 ईयर्स
5: डैड, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ हैं?
6: लैपटॉप में।
5: इन्वेस्टमेंट?
6: गूगल ड्राइव।
5: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
6: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है।
5: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है।
7: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
8: Hi, this is Deepti Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
7: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
9: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
10: Har samasya ka hal hai astrologer ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
9: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी।
10: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। नाउ इट्स योर टर्न, समस्या का पक्का समाधान। एस्ट्रोलॉजर ईश्वर, कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com।
11: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
12: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
13: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
14: इतना सब और प्राइस?
13: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
15: मैं हीरो।
16: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
17: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
0: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो। जॉइन पासिया एंड मार्केट योर बिजनेस फॉर फ्री। शोकेस योर डील्स एंड गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स नियर बाय। पासिया, बी वेयर योर कस्टमर्स आर लुकिंग।
18: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
19: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
0: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
7: तुमसे मिलके दिल का है।
19: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
0: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
15: जिंदगी के कई रंग। फनीशा रेडियो के संग।
0: वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, और आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फनीशा 104.9 एफएम पे। तो भाई आज बड़ा ही मजा आ रहा है, 90s के गाने चल रहे हैं, मेरे फेवरेट वाले जो कि आपके भी फेवरेट हैं ये मुझे पता है, और हर गाने के पीछे छुपी एक कहानी हम आप तक लेकर के आ रहे हैं। और मैं क्या कहानी लाऊंगी, मेरे पास तो एक से एक धुरंधर बैठे हुए, जितने धुरंधर फोन कर रहे हैं वो कोई ना कोई गाना और उसके पीछे की कहानी बता दे रहे हैं, और बहुत ही मजा आ रहा है बिकॉज ये जो एक्सचेंज ऑफ स्टोरीज चल रही है, कुछ मुझे नहीं पता है, कुछ आपको नहीं पता है, तो हम दोनों आपस में ऐसे ही गाने, थॉट्स और कहानियां एक्सचेंज करते रहेंगे। फिलहाल अगले गाने की तरफ लेकर के चल रही हूं, और इस गाने के साथ आ रहा है हमारा गिव अवे टाइम। तो बस फोन उठा लीजिए, पर सवाल सुन लीजिएगा, गाना सुन लीजिएगा, फिर कॉल करिएगा। बड़ा दुख होता है मुझे जब आप फोन कर देते हैं और आपको पता नहीं होता कि सवाल क्या है। सो प्लीज सवाल सुन लीजिएगा, लेकिन उसके पहले बता दूं कि क्या मिलेगा आपको। आप जीत सकते हैं सैन इडली रेस्टोरेंट की तरफ से डोसा, एनी डोसा ऑफ योर चॉइस, प्लस एक फिल्टर कॉफी। और सैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट इज इंडियन रेस्टोरेंट, इंडियन कंप्लीटली वेज रेस्टोरेंट, एंड दे हैव 100% वेजिटेरियन फूड मेड विद फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स। क्रिस्पी डोसाज हैं इनके पास, फ्लफी इडलीज है, कम्फर्टिंग साउथ इंडियन फेवरेट्स हैं, और साथ में शहर की सबसे बेस्ट फिल्टर कॉफी भी सर्व करते हैं ये। फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज, जैन फ्रेंडली ऑप्शन भी है। तो आप आज ही जा सकते हैं सैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट हाईवे 121 एंड कास्टर जंक्शन। तो चलिए अगला गाना सुना रही हूँ, 90s का गाना है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और सही जवाब जल्दी से दीजिएगा। स्टूडियो का नंबर है 972-235-5555, और ये रहा गाना।

रक्षाबंधन आ रहा है। जी हाँ, रक्षाबंधन के इस त्योहार पे फनेश और चौकटाव कैसिनो एंड रिजॉर्ट एंड ड्यूरेंट आपसे सुनना चाहते हैं एक कहानी, एक अनफॉरगेटेबल मेमोरी जो कि आपके भाई या बहन के साथ हो। तो अगर आपके पास ऐसी कोई अनफॉरगेटेबल सी मेमोरी है ना, तो फोन उठाइए और एक वॉइस नोट बना के भेजिए 2148377147 पे, एंड आप जी सकते हैं एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज, एन अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रियूनियन वीकेंड एट चौकटाव कैसिनो एंड रिजॉर्ट इन ड्यूरेंट। सो इफ यू नीड कंप्लीट डिटेल्स ऑफ दिस कॉन्टेस्ट, देन यू कैन गो टू सोशल मीडिया पेज, हमारे फनेशा के सोशल मीडिया पेज पे, और वहाँ पर आप जाकर के सारी जानकारी पा सकते हैं। यू मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। चौकटाव कैसिनो एंड रिजॉर्ट ड्यूरेंट, वे अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। और ब्रेक पे जाने के पहले गाना प्ले किया था, सवाल पूछना भूल गई थी, पर हमारे कॉलर समझदार हैं यार, सही जवाब मिल गया है हमें, तो जल्दी से एक जोरदार ताली हो जाए मिस्टर सचिन श्रीवास्तव के लिए। तो चलिए, एक और गिव अवे बचा हुआ है जो कि हम जल्दी लेकर के आएंगे आपके लिए। अगला गाना लेकर के आ रही हूँ, सवाल भी पूछ दे रही हूँ, स्टूडियो का नंबर भी बता दे रही हूँ। स्टूडियो का नंबर है 9722355555। और सवाल सिंपल है यार, मूवी का नाम ही तो बताना है, मुश्किल सवाल पूछती नहीं मैं।

0: अंजाम का गाना था ये, और हमारे सवाल का जवाब भी मिल गया है हमें। दूसरे विनर हैं हमारे जितेंद्र कासी जी, तो जोरदार तालियां इनके लिए भी। बाय। तो भाई अब वक्त हो रहा है हमारे विदा लेने का, लेकिन उसके पहले हम बता देना इस गाने के बारे में। अंजाम का जो गाना है, इसकी कहानी मेरे से थोड़ी सी, मतलब मेरे से, मेरा कोई लेन देन नहीं इस कहानी से, बट जब मैं छोटी थी ना तो मुझे गाना बहुत पसंद था। और जिस तरह से शाहरुख खान जब भी गाना गाते गाते लेट जाते हैं और माधुरी जी इनके ऊपर स्टेप करके निकल जाती हैं, तब वो मैं देखती तो मुझे आउच निकल जाता था अपने आप। और एक बार ये गाना ना मैंने गा दिया था अपने घर में कहीं पे, मुझे याद हो गया था इसके लिरिक्स। आई माइट बी 7 or 8 years old एंड तब मैंने ये गाना गा दिया। और उसके बाद ऐसा हुआ ना कि किसी ने सुन लिया घर में, फिर कोई भी आए तो उसके सामने बैठा के यही गाना गवाते थे मुझसे। ये जो बीमारी है ना हमारे घर में, बिठा के गवाने की, नचवाने की, ये पुराने वाले जो जमाने के हैं ना, मम्मी पापा दादा दादी, इनको बड़ा मजा आता था यार हमें लोगों के सामने ऐसी नचवा देने में, ठुमके लगवा देने में, गवा देने में। तो ये वो गाना था जो मुझे बिल्कुल रटा हुआ था। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं, अगले गाने की तरफ चलते हैं, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि भैया सोनू निगम आ रहे हैं डैलस में। जी हाँ, सोनू निगम रेवोल्यूशन, गेट रेडी फॉर एन अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक, द वन एंड ओनली सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट, एक्सपीरियंस रेवोल्यूशन, सैटरडे September 26 एट 8:30 PM एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सस इवेंट सेंटर इन एलन। योर फेवरेट सॉन्ग्स, दैट आइकॉनिक वॉइस, ऑल लाइव। टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 855-360 शोज। रेवोल्यूशन सोनू निगम लाइव, एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर इज फन एशिया। अगले गाने की तरफ लेकर के चलते हैं। जब 90s का दौर चल रहा है तो कहाँ और जाएगा आदमी, 90s का ही गाना सुनेगा बस।
1: मैं तेरे सामने तुझको देखूं कि प्यार करूं,

किरण तो ये था शाहरुख खान के विलन से रोमांटिक हीरो बनने का सफर वाला जो फिल्म है ना, ये वो है जहां पर एकदम खतरनाक वाले विलन के रोल में आए थे शाहरुख खान। और ये गाना वो है ना जब गाड़ी चला रहे हो आप और बिल्कुल हाई पिच में गाते हुए, सुर वुर का पता नहीं, गाना साथ में बज रहा हो और तुम भी जोर से गा रहे हो और खुद को फील कर रहे हो कि क्या बढ़िया गा रहे हम, ये उनमें से एक गाना है। अब शो को आगे नहीं बढ़ाते हैं, शो को खत्म करने का टाइम आ रहा है, लेकिन जाने के पहले आपको ये बता दूं, डायमंड्स आर इन जस्ट फॉर एवर, दे आर इवन मोर इरेजिस्टिबल ड्यूरिंग द तनिष्क फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स, एंजॉय अप टू 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस, प्लस 0% डिडक्शन ऑन एक्सचेंज ऑफ गोल्ड अबव 18 कैरेट। आई एम सो सॉरी, मैं फिर से बोल दे रही हूँ, एंजॉय अप टू 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस, प्लस 0% रिडक्शन ऑन एक्सचेंज ऑफ गोल्ड अबव 18 कैरेट, सेलिब्रेट द सीजन विद टाइमलेस स्पार्कल एट तनिष्क, टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई, विजिट तनिष्क इन फ्रिस्को। तो ऐसे जबान लड़खड़ा जाती कभी कभी, माफ कर दीजिएगा उसके लिए। आपकी होस्ट आयुषी आज के लिए विदा ले रही है, और अगर आप मुझे और सुनना और देखना चाहते हैं तो मुझे बिहारी मॉम इन अमेरिका से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है उस पर फॉलो करिए, आयुषी भूषण से मेरा फेसबुक हैंडल है उस पर फॉलो करिए। और आपको छोड़े जा रही हूँ ऐसे ही एक गाने के साथ जहाँ पे ना आप बिल्कुल वॉल्यूम तेज़ करके और हाई पिच में गाना गा सकते हैं, और ये भी शाहरुख का एक गाना है, आई थिंक यू नो हम सबका फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट नंबर्स होगा 90s से। तो इस गाने को गाने के लिए तैयार हो जाइए और मुझे आज के लिए विदा दीजिए। थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ फॉर द डे।

0: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम चिकन तंदूरी मलाई चिकन टिक्का पनीर टिक्का मोमो या सोया चाप अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
2: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
3: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
4: Sign milna mushkil hai, lekin Pleno mein zabardast tha na, uska signature mil gaya. Signature Cuisine in Pleno. Famous Nihari, Sizzling Grills, Crispy Fried Chicken or Mouth-watering Parhatha Rolls. Aur koi bhi celebration ho, to Banquet Services bhi. Located at Spring Creek and Alma, East Plano. Visit signaturecuisine.net. Signature Cuisine. Har taste par apna signature.
5: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
6: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
5: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
6: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
5: सच में? सब संभालेंगे?
6: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनोन्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
3: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
9: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
11: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे.
12: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL Worldwide को बुलाते हैं.
11: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
12: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
11: इंडिया तक.
12: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और Worldwide, कंप्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज.
3: SFL Worldwide, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
13: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
14: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
13: Kya matlab?
14: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
13: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
14: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
13: Ab to karna hi padega, madam.
15: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
16: Hi, this is Akshay Kumar and you're listening to Funasia Radio.

A very, very good afternoon to the listeners of 104.9 FM Financial Radio. Sun rahe hain aap. Main hoon Kiran aapke saath. This is your afternoon drive time with Sunehri Kiran. Monday through Friday, 2:30 baje se 5 baje tak main rehti hoon aapke saath. Yani ke all your weekdays while you are driving back from work or going somewhere else, I am here with you. Aur har roz lekar aati hoon aapke liye ek naya flavor taaki hamare gaane bhi badalte rahein aur flavors bhi badalte rahein. Aur Wednesday is always very special because दो तीन चीजें आपके लिए लेकर आते हैं. सबसे पहले हम बिगिन करते हैं रोमांटिक मेलोडीज के साथ. देन वी गो ऑन टू पॉप फ्रीक्वेंसी. आई प्ले सम पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक फॉर यू. और 3:30 से 4 तक आपका फेवरेट सेगमेंट आता है द टॉप 10 ट्रेंडिंग ड्रामास ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द TRP चार्ट्स. आपको बताती हूँ कि कौन से ड्रामे हैं जो आपको देखने चाहिए. रिकमेंडेशंस देती हूँ, मेरी नहीं होती, टीआरपी चार्ट्स के हिसाब से होती हैं. तो उसके बाद हम करते हैं ट्रॉफी ट्रैक्स एंड ब्लॉकबस्टर बीट्स. सो आज का शो है आई प्रॉमिस अ कंप्लीट जैम पैक. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग एंड गुड आफ्टरनून.

पी के फिल्म से सुन रहे थे आप ये गाना। वैसे तो आमिर खान थे इस फिल्म में, लेकिन अनुष्का और सुशांत सिंह राजपूत पे पिक्चराइज्ड वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स फ्रॉम पी के इज चार कदम। तो जी रोमांटिक मेलोडीज आपके लिए चल रही हैं। आई हैव अनदर 15 मिनट्स ऑफ रोमांटिक मेलोडीज बिफोर वी मूव इनटू पॉप फ्रीक्वेंसी। और इस 15 मिनट्स में गाने तो प्ले करूंगी, लेकिन एक गिव अवे भी आपके लिए लेकर आई हूं मिराज लाउंज की तरफ से। दिस इज शुड बी योर नेक्स्ट फेवरेट हैंग आउट स्पॉट। प्रीमियम हुक्कर्स मिलते हैं यहाँ पे, डिलिशियस बाइट्स हैं, हैंडक्राफ्टेड कॉकटेल्स, लाइव म्यूजिक, और उसके साथ साथ डीजे नाइट्स होती हैं, लेडीज नाइट्स होती हैं, कॉलेज नाइट्स होती हैं। मतलब इट रियली डजंट मैटर व्हाट काइंड ऑफ इंटरेस्ट यू हैव, हर तरह का आपको यहाँ पे जो है इंटरेस्ट आपका सैटिस्फाई होगा। सो डू चेक मिराज लाउंज आउट, दे आर ऑन मेकनी रैंच पार्कवे। और अब जो है आपके लिए गिव अवे आया है, ये यू कैन विन $20 ऑफ योर बिल ऑफ $50 और मोर। तो जी अगर आप मिराज लाउंज जाएंगे, आपका $50 का बिल होगा या उससे ज्यादा, तो आपको $20 ऑफ मिल जाएगा। दैट्स अ ग्रेट गिव अवे ब्रॉट टू यू बाय मिराज लाउंज। आई हैव टू विनर्स टू पिक, यू हैव टू डाइन इन, दैट्स रिमेंबर दैट। तो रोमांटिक मेलोडीज में अब आप मुझे फोन कीजिए और बताइए आपका पसंदीदा रोमांटिक गाना कौन सा है। कोशिश कीजिए 90s से आगे का करिए, वैसे आप मुझे कोई भी बता सकते हैं, लेकिन जो अगर मैं कोई उनमें से एक दो प्ले करूंगी तो वो 90s से आगे के करूंगी। बट यू कैन टेल मी योर मोस्ट फेवरेट रोमांटिक सॉन्ग एंड यू कैन बी अ पार्टिसिपेंट इन विनिंग दिस मिराज लाउंजेस $20 ऑफ विद मिनिमम डाइन इन बिल ऑफ $50 और मोर। 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो।

All right, जी, लेकर आई थी आपके लिए गिव अवे जो कि मिराज लाउंज की तरफ से आया था. यू हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ विनिंग $20 ऑफ योर मिनिमम डाइन इन बिल ऑफ $50 और मोर. और आप तमाम लोगों की पार्टिसिपेशन का बहुत बहुत शुक्रिया. शैली, सिमर, पल्लवी, शिवानी, कमला, सईदा जी एंड सो मैनी जिन्होंने कॉल करके अपनी अपनी पसंद के रोमांटिक गाने बताए. कुछ बहुत ही खूबसूरत गाने. ये जो गाना आप सुन रहे थे ये वन ऑफ द रिकमेंडेशन या वन ऑफ देयर फेवरेट्स था. तो सारे मैंने गाने नोट कर लिए हैं. आगे आगे जब मतलब यू नो शो भी बढ़ेगा और उसके साथ अगली बार जब हम रोमांटिक मेलोडीज लेके आएंगे तो मैं इन्हीं गानों को आपके लिए प्ले करूंगी. आपकी पसंद जो है दैट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट. और अब जो मुझे दो विनर्स सेलेक्ट करने थे वो मैथ के फॉर्मूले ने मुझे जवाब दे दिया है. जी, जिस सीक्वेंस में आपकी कॉल आती है वो नंबर मैथ के फॉर्मूले में डाले जाते हैं और मैंने दो नंबर निकाले जो उनमें हमारी सबसे पहली विनर है सिमर जैन एंड हमारी जो दूसरी विनर है वो है कमला. सो सिमर एंड कमला, कंग्रेचुलेशंस. जीत लिया है आपने ये $20 ऑफ योर डाइन इन बिल ऑफ $50 और मोर एट मिराज लाउंज लोकेटेड ऑन मिकनी रैंच पार्कवे. दो दिन का हमें टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर रेस्टोरेंट पे पहुंचाने के लिए एंड देन यू विल हैव अबाउट 7 days टू अवेल योर $20 ऑफ योर मिनिमम डाइन इन बिल ऑफ $50 और मोर. सो कंग्रेचुलेशंस, enjoy, and for all of you who participate, bahut bahut shukriya. What matters the most is aapki participation. It really makes me happy. Thank you so much.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फनीशा रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस।
2: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, प्लीज प्ले रिस्पांसिबली।
3: तारा वो तारा हर तारा।
4: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट ताराएनर्जी.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
2: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी. ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
0: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी.
3: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग. फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव.
4: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099.
5: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
6: Beta, 95% aaye?
7: Haan, mummy.
6: Good. Ab chaliye, papa, aap apna report card dikhaiye.
8: Mera?
6: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals, sare accounts updated.
8: वो
9: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज. विजिट agfintechs.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी. सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
10: तुझे देखा तो ये जाना सनम.
11: 90s का रोमांस, 90s की मेलोडीज और वो लेजेंडरी आवाज. DFW, get ready to relive the magic of Kumar Shanu live, unforgettable 90s. September 11th at the brand new Robinson Fine Arts Plano. Gaiye, jhoomiye aur fir se jee lijiye apne favorite 90s ke gaane. Limited seats, free parking aur meet and greet options available. For tickets, visit eventbrite.com ya fir call kare 214-869-2668 par. Presented by Focus Entertainment and Fortune Group.

सुन रहे हैं आप 104.9 FM Fun Asia Radio. Thank you so much for tuning in. Afternoon Drive Time with Sunehri Kiran में अब वक्त हुआ है जी पॉप फ्रीक्वेंसी का. कुछ पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक आपके लिए प्ले करेंगे फॉर द नेक्स्ट वन आवर. 3 बजे से 4 बजे तक ये सेगमेंट आपके लिए चलता है और इन बिटवीन 3:30 से 4 तक मैं आपके लिए लेकर आऊंगी द टॉप 10 ट्रेंडिंग ड्रामास अकॉर्डिंग टू द TRP चार्ट्स. तो बने रहिए मेरे साथ. कुछ बड़े ही मजे के ड्रामे ऐड हुए हैं TRP चार्ट्स में और 3-4 एक्चुअली ऐसे ड्रामे हैं जो आपको बिल्कुल बिल्कुल मिस नहीं करने. तो सुनते रहिए, बनी रहिए, बिकॉज आज बहुत जबरदस्त खुलासा होने वाला है कुछ ड्रामों का. अच्छा जी, ये हुआ पॉप फ्रीक्वेंसी का पहला सेगमेंट जो मैं शुरू कर रही

और तीन चार चार एक्चुअली ऐसे ड्रामे हैं जो आपको बिल्कुल बिल्कुल मिस नहीं करने. तो सुनते रहिए, बनी रहिए, बिकॉज आज बहुत ज़बरदस्त खुलासा होने वाला है कुछ ड्रामों का. अच्छा जी, ये हुआ पॉप फ्रिक्वेंसी का पहला सेगमेंट जो मैं शुरू कर रही हूँ. और 17th, और आज है जी 26th August, 17th August को एक बहुत ही पॉपुलर फिल्म स्टार ने किया अपना बर्थडे सेलिब्रेट. नाम था उनका, बल्कि है उनका, झरना बासक, जो कि फिल्मी नाम जिन्होंने हासिल किया शबनम जी का. बिल्कुल एब्सोल्युटली बांग्लादेशी पाकिस्तानी स्टेज नेम जो उन्हें मिला फिल्म एक्ट्रेस शबनम जी को. हम उन्हें शबनम के नाम से जानते हैं, लेकिन असल नाम उनका था झरना बासक. और एक्टर वहीद मुराद ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया था जब बंगाल से वो लेकर आए थे, उन्हें उनको ऑफर की थी. और 1968 में फिल्म समंदर से जब शबनम ने फिल्मी दुनिया में एंट्री ली, तो फिर अगले 10-20 साल फिल्मी दुनिया में शबनम ने किया राज. और ख़ास तौर पे उनकी जोड़ी जो है वो नदीम साहब के साथ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई. अच्छा जी, एक दो गाने मेरे पास शबनम जी के हैं जो मैं आपके लिए प्ले करूँगी टू गिव हर अ ट्रिब्यूट एंड सेलिब्रेट हर बर्थडे राइट हेयर ऑन पॉप फ्रीक्वेंसी विद द सुनहरी किरण. दिस वन इज़ अ ब्यूटिफुल सॉन्ग पिक्चराइज ऑन हर. और ये है जी मेरा और आपका, हम सब ने सुना है ये गाना. दिस इज़ मेरा बाबू छेल छबीला.

Saath Hi Saath, she was the leading actress in the film industry for 28 years in Lollywood back then. Then she migrated, Shabnamji migrated from East to West Pakistan in 1968 and lived there around till 90s, and then she went back to her native Bangladesh. So we are celebrating Shabnamji aur kuch behtareen gaane dekhi chote se time mein. Ye to bilkul justify nahi ho sakta ki unke sare gaane aapke liye play kiye jaye, lekin ek aur gaana maine unke liye aapke liye unka nikal rakha hai. Madam Noor जहां की आवाज में एक बहुत ही खूबसूरत गाना. इस गाने को आपने किसी न किसी रूप में जरूर सुना होगा, बिकॉज इसकी इतनी सारी रेंडिशंस बनी हैं, बॉलीवुड में भी बनी हैं, कुछ लोगों ने प्राइवेटली भी गाया है. दिस इज हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है.

1968 में लीड रोल किया, फिल्म समंदर से अपने करियर का लीड रोल में आगाज किया. देन शी रिमेन्ड एक्टिव इन लॉलीवुड इन द 60s एंड 70s एज वेल एज 80s. और निगार अवार्ड, शी हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर निगार अवार्ड सेवरल टाइम्स. 13 टाइम्स उन्होंने निगार अवार्ड को जीता. दिस इज द मोस्ट दैट एनी एक्ट्रेस हैज एवर वन अ निगार अवार्ड. शी हैज अपीयर्ड इन ओवर 150 फिल्म्स और

here's wishing the actress Shabnam Ji a very, very happy belated birthday. 17th August 1946 is her birthday. अच्छा जी ये तो हुई ये बात और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं पिछले 13 साल से टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक प्राउडली हमारी कम्युनिटी को सर्व कर रहा है और अब दे आर ग्रोइंग विद अ ब्रांड न्यू नेम एंड अ सेकंड फ्रेस्को लोकेशन. सो वेलकम लनॉक्सी मेडिकल LUNOXY अगर आप सर्च करना चाहते हैं दैट इज द स्पेलिंग. लनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. ये वो जगह है जहां आपको मिलेगा प्राइमरी केयर अर्जेंट केयर इन हाउस लैब टेस्टिंग. एक्सरे कराना है आपने सीटी स्कैन्स कराने हैं एवरीथिंग इज अवेलेबल इन हाउस. कार्डियक डायग्नोस्टिक है इन हाउस और साथ ही साथ हिमालयन मेड स्पा सर्विस भी आपको एक ही छत के नीचे मिलेगी यानी कि इन हाउस. सो एवरीथिंग इज देयर अंडर वन रूफ. और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि दे आर ओपन फॉर यू 7 days अ वीक 8 AM till 8 PM. So that is a great thing. Or another great thing is कि आपको अपॉइंटमेंट लेने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है. यू कैन वॉक इन एनी टाइम. सो दिस इज जबरदस्त सिनेरियो जो कि लनॉक्सी मेडिकल ने आपके लिए इंट्रोड्यूस किया है. जरूर अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए अपनी वेलबींग का ख्याल रखिए एंड चेक आउट लनॉक्सी मेडिकल.

My Time Equity, led by CPA Sudhir Pai, help karte hain individuals as well as families ko to build smarter financial strategies through portfolio management, real estate opportunities as well as alternative investments. To chahe aap long-term wealth plan kar rahe ho, ya aap retirement planning karna chahte ho, ya you're just planning to grow your wealth and investment, My Time Equity is the right place for you. They offer personalized solutions jo ke aapke goals ke ird-gird design kiye jaate hain. तो आपके जहन में कोई भी सवाल ये सुन के आया है तो माई टाइम इक्विटी को कॉल कीजिए. दे आर जस्ट अ फोन कॉल अवे. डिस्कस व्हाट यू वांट टू डिस्कस एंड देन यू नो देयर इज नो हार्म इन कॉलिंग एंड डिस्कसिंग. दैट नंबर इज 469-702-1272 इज द नंबर. या फिर आप उनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं विच इज mytimeequity.com. दैट इज mytimeequity.com. आप सुन रहे हैं पॉप फ्रीक्वेंसी. इस गाने के साथ हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की तरफ. ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं आपको बताने वाली हूं द टॉप 10 ट्रेंडिंग ड्रामास ऑफ लास्ट वीक अकॉर्डिंग टू द TRP चार्ट्स. बने रहिए मेरे साथ. लॉट्स ऑफ एक्सट्रीमली फन इंफॉर्मेशन इज अबाउट टू कम. अच्छा, इस गाने की मुझे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आती है, सो हियर इट इज.

0: भगवान से, रक्षाबंधन हमें जोड़ता है अपनों से, और कुछ रिश्ते एक डोर से शुरू होते हैं और एक अनमोल निशानी के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और पीएमजे ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरो की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे।
1: पीएमजे ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को।
2: ओचो
3: होको
2: ओचो
3: होको
2: ओचो
3: इट्स होको।
4: अरे बस भी करो यार।
3: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है।
4: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है।
5: एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा।
1: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में। वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस। टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज।
6: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
7: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
6: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
7: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
6: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
7: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
6: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
8: सुनो कल बहुत काम है, पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली, कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
9: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
8: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी, एंड इनसाइड फूडिस्तान एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
1: फूडिस्तान इन ऑबरी, मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट।
10: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
11: लिया।
10: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
11: नहीं आया।
10: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772। That's 972-863-772.
12: Visit www.sanadainc.com today.
13: Party is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights B.
1: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, cause miracles happen in Mirage.
14: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khawaja, your legal lifeline.
15: मेरे कल वाले खाने में डोसा, आने वाले खाने में डोसा।
9: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? योर सर्च एंड्स हियर।
16: फैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, 100% प्योर वेजिटेरियन मेड विथ फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडलीज, कंफर्टिंग साउथ इंडियन थाली और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी। फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शंस।
1: विजिट फैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट द हाईवे 121 और कस्टर जंक्शन।
17: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
18: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
1: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
19: तुमसे मिलके दिल का है।
18: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
1: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
2: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फोनेशिया 104.9 FM।

You tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio. ये है जी afternoon drive time with Sunehri Kiran. Pop frequency में अब time आ गया है drama fever का. जी हाँ, top 10 trending dramas of Pakistan from last week TRP charts के हिसाब से for the week of August 17th till August 23rd. तो जल्दी से begin करते हैं before we move on. शुरू के दो drama आपको बताती हूँ. Number 10 से हम शुरू करते हैं हमेशा. 10वें number पे जिस drama ने TRP charts पे अपनी जगह बनाई, that is नजर नाराज है जिंदगी. ये है जी हम टीवी पे ड्रामा जो कि मंडे टू फ्राइडे यानी कि पांच दिन आता है शाम 9 बजे और अलीज़े शाह और सुभान अवान इसके अंदर हमें नजर आ रहे हैं. द स्टोरी ऑफ द ड्रामा इज अबाउट द मेन लाइव्स फोर मेन लाइव्स जो कि टू डिफरेंट वर्ल्ड्स को बिलोंग करते हैं. दे आर डीलिंग विद हार्ट ब्रेक एंड बिट्रेल इन लव एंड फैमिली एक्सपेक्टेशंस और थोड़ा सा स्लो प्लॉट जरूर है लेकिन ऑडियंस ने इस हफ्ते इस ड्रामे को देखा और पसंद किया. लेकिन मैं एक सारे सिलसिले के बाद एक ऐसा ड्रामा आपको बताऊंगी जो कि इसी हफ्ते शुरू हुआ है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द वो भी आपको मुझे लगता है कि अगले ही हफ्ते आपको उसको टीआरपी चार्ट्स में आप देखेंगे. बट फिलहाल नंबर 10 पे है ड्रामा नाराज है जिंदगी और इसी के साथ नंबर 9 पे जिस ड्रामे ने अपनी जगह बनाई दैट इज ड्रामा सीरियल टूटा हुआ दिल जो कि ARY डिजिटल पे आता है. ये भी एक डेली सोप है, शाम 7 बजे आता है एवरी डे. आगा अली और नाजिश जहांगीर हमें इस ड्रामे में नजर आ रहे हैं और ड्रामा जो है वो फॉलो करता है एक इमोशनल और ड्रामेटिक नैरेटिव जो कि सेंटर्ड है अराउंड कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स और साथ ही साथ लाइफ ऑल्टरिंग डिसीजंस के क्या होता है. लोगों को ये ड्रामा पसंद आ रहा है. व्यूअर्स कनेक्ट डीपली विद द हाई स्टेक्स इमोशन एंड हार्टफेल्ट स्टोरी लाइन ऑफकोर्स और स्पेशली आगा अली और नाजिश जहांगीर की जो परफॉर्मेंस है वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है. पावरफुल, एंगेजिंग एंड द केमिस्ट्री इज व्हाट पीपल आर रियली रियली लाइकिंग. सो ये थे 9th और 10th नंबर पे जो ड्रामा स्टैंड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द TRP चार्ट्स. आफ्टर दिस सॉन्ग व्हेन वी कम बैक आई विल टेल यू 6, 7 and 8 और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चलेंगे और फिर पहुंचेंगे टॉप 3 तक. दिस इज ड्रामा फीवर. स्टे ट्यून्ड.

All right, जी, और 6.5 TRPs के साथ आठवें नंबर पे जो ड्रामा रहा, दैट वाज ड्रामा सीरियल हमराही. दानिश तैमूर और हिबा बुखारी का ये ड्रामा. शहजाद नवाज एक सपोर्टिंग कास्ट में बहुत ही कमाल का रोल इन्होंने अदा किया है बाबर जावेद की डायरेक्शन में. दिस इज लाइक Love lives forever. That is the tagline, अगर आप कह लीजिए इस ड्रामे की. जो स्टोरी है फॉलो करती है टू डीपली कनेक्टेड लोगों को, जो कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह मिल ही जाते हैं. तो स्टार केमिस्ट्री इज वॉट पीपल आर रियली लाइकिंग. दानिश तैमूर और हिबा बुखारी की केमिस्ट्री को तो हमेशा ही, इससे पहले भी जो ड्रामे वो कर चुके हैं उनको पसंद किया जाता है. और इंटेंस वाइब्स जो दानिश तैमूर का खासा है वो कोई नई बात नहीं है. वाई ऑडियंस इज लाइकिंग इट, बिकॉज ऑफकोर्स यही उनका खासा है और इसी में वो रॉक करते हैं. तो ये ड्रामा आप अपनी लिस्ट पे डालिए इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दानिश तैमूर्स ड्रामा. और इसी के साथ जो ड्रामा सातवें नंबर पे रहा विद 7.2 TRPs इज ड्रामा सीरियल, देखिए मैं तेरा ड्रामा. अरेज अहमद और युसरा इरफान इस ड्रामे में हमें नज़र आ रही हैं. और ये ड्रामा जो है जी, ये शो करता है कुछ रिलेशनशिप्स, फैमिली डायनामिक्स खास तौर पे, और जो कॉम्प्लिकेटेड नार्सिसिस्ट लोगों का रिलेशनशिप होता है अपनी वाइफ्स के साथ, उस तरह की किसी चीज़ को ये टच कर रहा है. और इस ड्रामे को देख के मुझे काफ़ी तकलीफ सी होती है और मुझे ना बस बहुत परेशानी सी होती है. बट रियलिटी इज़ रियलिटी, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दिस रियलिस्टिक फैमिली ड्रामा देन यू मस्ट वॉच मैं तेरा. उसके साथ अगला ड्रामा जो कि टीआरपी चार्ट्स पे रहा छठे नंबर पे, एंड दैट वाज विद 7.4 TRPs इज द ड्रामा सीरियल तपिश. ये ड्रामा आता है जी मंडेज एंड ट्यूसडेज को शाम 8 बजे ऑन जियो एंटरटेनमेंट. इसमें हमें मुनीब भट्ट, लाइबा खान, साद कुरैशी, सबा फैसल, बहुत खूबसूरत स्टार कास्ट है. प्लॉट है जी एक प्राउड और कॉन्फिडेंट शख्स का जिनमें बहुत ज़्यादा ईगो है. हमारे सारे मेल्स कुछ ऐसे ही ड्रामे में हीरो होते हैं, और वो बिलीव करते हैं कि कोई उन्हें कभी चेंज नहीं कर सकता जब तक कि एक प्यारी सी लड़की उनकी ज़िंदगी में नहीं आती. और फिर कहानी कैसे चेंज होती है, दैट इज़ द स्टोरी ऑफ दिस ड्रामा विच is तपिश. अच्छा, जो लोगों को ये ड्रामा क्यों पसंद आ रहा है, मैं देख रही थी कि why are people liking it, because they are enjoying the high stake theme of obsessive love and emotional transformations. और जो मुनीब भट्ट और लाइबा खान की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री है उसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे the fast pace of the drama is what people are really really liking. So that was the top 6 to 10 जो आपके साथ हमने शेयर किए. अब जब वापस आएंगे तो we will talk about 4th and 5th trending dramas on the TRP charts. Stay tuned, and still बहुत मज़े के ड्रामे तो अभी तस्करा उनका बाकी है.

और इसी के साथ छठे नंबर, पांचवें नंबर पे, एक्चुअली छह हम कर चुके थे, पांचवें नंबर पे जिस ड्रामे ने टीआरपी चार्ट्स पे लीड किया विद 7.6 टीआरपीज इज ड्रामा सीरियल लीडर. लीडर ड्रामा जो है वो काफी अरसे से हमें टीआरपी चार्ट्स पे नजर आता रहा है, कोई नया ड्रामा नहीं है हमारे जानने के लिए. किंजा हाशमी और अली रजा इसमें हमें मेन लीड्स में नजर आ रहे हैं और द स्टोरी ऑफ द ड्रामा इज रिवॉल्विंग अराउंड यू नो देयर डीप बॉन्ड्स बिटवीन पीपल, मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड एम्बिशंस, फ्यूडल पावर, साथ ही साथ स्टूडेंट पॉलिटिक्स, ये तमाम चीजें इस ड्रामे में बड़ी ही खूबसूरती से टच की गई हैं. और फिर चौथे नंबर पे, अब ये जो टॉप फोर ड्रामे मैं आपको बता रही हूं, ये ड्रामे तो आपने बिल्कुल मिस नहीं करने, अभी ही अपनी लिस्ट पे डाल लीजिए. कुछ ड्रामों की तो खैर बहुत सारी एपिसोड्स हो चुकी हैं और कुछ अभी नए नए शुरू हो रहे हैं, तो यू कैन क्विकली कैच देम अप. सो चौथे नंबर पे द ड्रामा इज दर्रे निजात, जो कि फ्राइडे और सैटरडे को आता है 8 बजे शाम. उमेरा अहमद का लिखा हुआ ये ड्रामा, जो कि दुर्रफिशा सलीम, शहरियार मुनव्वर और नमीर नवाज खान इसमें हमें लीड रोल्स में नजर आ रहे हैं. उसी के साथ सहर हाशमी, रुमैसा खान, सानिया सईद, सबा हमी, मतलब नादिया अफगान, बहुत सारे कमाल के किरदार हैं, कमाल के लोग हैं जो इस ड्रामे में परफॉर्म कर रहे हैं. एंड चूंकि अभी सिर्फ 5-6 किस्तें हुई हैं इस ड्रामे की, तो कहानी शेप अप हो रही है और बड़ी खूबसूरती से शेप अप हो रही है. और आप जानते हैं कि उमेरा अहमद के ड्रामों का जो खासा होता है वो होता है ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड ह्यूमन रिलेशनशिप विद ऑलमाइटी, तो इन दोनों का सफर जो है वो बड़ी खूबसूरती से दिखाती हैं. So we are all watching very closely what this drama has in store for us. Aur teesre number pe jo drama hai, that is Ehsan Khan and Urva Hukain's आपकी इज्जत. ये भी उमेरा अहमद का लिखा हुआ ड्रामा है. जैसे ही ये ड्रामा आया वैसे ही ये लोगों के दिलों पे छा गया और टॉप 3-4 में इसने अपनी जगह बनाई हुई है. फ्राइडे और सैटरडे को शाम 8 बजे आता है. दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ मैरिड कपल जो कि 14 साल से शादीशुदा हैं और फिर उनकी लाइफ इज गोइंग ब्यूटिफुली एंड देन वन फाइन डे हस्बैंड डिसाइड्स कि उन्होंने दूसरी शादी करनी है और फिर क्या होना है उनकी जिंदगी में. एंड द गर्ल फील्स ऑफ कोर्स बिट्रेड एंड व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट इज व्हाट द स्टोरी इज अबाउट. आजकल उनके पास्ट को दिखाया जा रहा है एंड बड़ा ही प्यारा सा उनका जो अर्ली रोमांस है और अर्ली लाइफ थी उसके बारे में बात की जा रही है. सो ऑडियंस इज लविंग द स्टोरी, एहसन खान एंड उर्वस केमिस्ट्री. सो डू चेक इट आउट अगर आपने आपकी इज्जत अभी तक देखना शुरू नहीं किया. आई थिंक अभी 10-12 एपिसोड्स अराउंड आ चुकी हैं. और इसी के साथ अब जब हम इस गाने से वापस आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी द टॉप 2 ट्रेंडिंग ड्रामाज ऑफ लास्ट वीक और एक नया ड्रामा जो इस हफ्ते शुरू हुआ है जो कि मुझे लगता है कि बहुत जल्द हमारे चार्ट्स पे आने वाला है.

और इसी के साथ ड्रामा फीवर में बताने का टाइम आ चुका है आपको द टॉप टू ड्रामास दैट वर ऑन द लिस्ट दिस वीक. सेकंड नंबर पे जो ड्रामा मौजूद था वो है जी बस तेरा साथ हो. एक और दो की ये जंग अभी तक जारी है. कभी बस तेरा साथ हो दूसरे पे आ जाता है, कभी पहले पे आ जाता है. तो बस तेरा साथ हो, फरहान सईद और सना जावेद हमें इस ड्रामे में नजर आ रहे हैं. द इंटायर स्टार कास्ट ऑफ द ड्रामा इज परफॉर्मिंग. आई थिंक जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा हर बंदे ने परफॉर्म किया है, चाहे वो चाचा जी हो या चाची जी हो या फिर चाहे वो हीरो के कजन्स हो. हीरो का जो मेल कजन है वो तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर है, मुझे मतलब अजीब सा वो डम सा विलन लगता है. और साथ ही साथ जो बहन है उनकी यानी कि चाचा जी की जो बेटी है वो एक बड़े क्रिटिकल मोड पे, उनका भी रिलेशनशिप आया हुआ है और अब देखना है कि आगे क्या होना है. उधर अंसा की फैमिली जो है वो भी अपने ड्रामे उनके खत्म नहीं हो रहे, तो जरूर चेकआउट कीजिए आप दिस इज बस तेरा साथ हो. और नंबर वन पे जो ड्रामा वापस अपनी जगह जिसने बना ली है बहुत हफ्तों, सेकंड पे रहा, इट इज़ बैक टू वन एंड दैट इज़ जंजीरें. और इसका ऑफकोर्स हमें रीज़न पता है, मेन लीड्स की हो गई है शादी, बहुत सारे राजों से उठ गया है पर्दा और बहुत कहानी जो है वो बहुत ज़्यादा खुल के अब हमारे सामने आने लगी है. तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि अब आगे क्या होने वाला है. जंजीरें ड्रामा सीरियल वेंसडे और थर्सडे को शाम 8 बजे आता है हम टीवी पे. सो सज्जल अली और दानियाल जफर हमें इस ड्रामे में नज़र आ रहे हैं. सो अगर आपने इन चार टॉप 4 ड्रामास को नहीं देखना शुरू किया तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा टाइम निकालिए और देखिए, यू आर रियली रियली गोइंग टू लाइक इट, दैट इज फॉर श्योर. अच्छा, अब जब बात हो रही है दर निजात की तो चलिए फिर दर निजात के टाइटल ट्रैक से हम आगे बढ़ते हैं. और फिर मैं आपको बताऊंगी एक बोनस ड्रामा जो इसी हफ्ते शुरू हुआ है, 2 एपिसोड्स आए हैं एंड आई डोंट फाइंड दैट बैड, आई थिंक इट इज क्वाइट गुड फॉर नाउ.

बेचारा दिल टेकन फ्रॉम द मूवी एक थी डायन से सुन रहे थे आप ये गाना. अच्छा जी, आगे बढ़ते हुए आपको बताऊं, इफ योर चाइल्ड इज गोइंग फ्रॉम थर्ड ग्रेड थ्रू फिफ्थ ग्रेड तो नेक्स्ट जेन स्पीकर्स एकेडमी कैन हेल्प देम बिल्ड द कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप स्किल्स जो उनके लिए एक लाइफ टाइम के लिए काफी हैं. Created by experienced coaches Sunhi Simon Santiago and Audra Langston, who have mentored debate champions and valedictorians as well as Ivy League graduates, ye online program to design hua hai to help young minds grow into confident leaders. To agar aapko mazid iske bare mein jankari hasil karni hai, which you know, there's no harm in finding out more what they are offering, go visit nextgenspeakersacademy.com. nextgenspeakersacademy.com या फिर आप उनको कॉल कर सकते हैं. देयर नंबर इज 214-724-2867. दैट नंबर अगेन इज 214-724-2867. सो गिव योर चाइल्ड द कॉन्फिडेंस टू लीड टुमारो स्टार्टिंग टुडे विद नेक्स्ट जेन स्पीकर्स अकेडमी.

और right, जी मातरू की बिजली का मंडोला से लिया गया था ये गाना। अच्छा आगे बढ़ रही हैं और आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊं कि गिव अवे लेकर आई हूं आपके लिए, एक बड़ा ही मजे का गिव अवे। एंड दिस इज ब्रॉट टू यू बाय फ्यूजन रिपब्लिक इंडियन किचन एंड बार। अगर आप ढूंढ रहे हैं बेहतरीन लंच बफे जो कि रेगुलर से या यूजुअल से ज़रा हट के हो, तो फिर फ्यूजन रिपब्लिक, already loved in Richardson, is now bringing its fabulous fusion flavors to a brand new location in Irving. Aur 25 se zyada items daily lunch buffet mein hote hain inke paas, featuring chaats and tandoor platters, exotic flavors hain, favorites like siraga samba, mutton biryani, apricot malai kofta, chili paneer bao, burrata chicken tikka, aur bhi bahut kuch. Ab 25 items hain to aap soch sakte hain ki kitna kuch hoga wahan pe aur kya kya hoga. Dinner jo hai wo a la carte available hota hai, but lunch buffet inka 25 items ka lagta hai. To aap visit kar sakte hain Fusion Republic, जो कि कहाँ लोकेटेड है ये मुझे आपने बताना है, क्योंकि जब आप मुझे बताएंगे इसका फुल एड्रेस तो आप जीत लेंगे वन फ्री गिव अवे विच कैन बी सिरागा सांबा या फिर दम मटन बिरयानी या फिर वेजिटेबल दम बिरयानी। इन तीनों में से कोई एक आप जाके वहां जीत के खा सकते हैं। और आपको मुझे कॉल करके बताना है फ्यूजन रिपब्लिक इंडियन किचन एंड बार जो कि अर्विंग में लोकेटेड है उसका एड्रेस। रिचर्डसन में ये ऑलरेडी मौजूद हैं, बट चूंकि अर्विंग में नए नए खुले हैं इसलिए आपको अर्विंग का एड्रेस बताना है। 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो।

All right, thank you so much for your participation. सबसे पहले मैं आपको correct address बता दूँ, Irving location का of Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. ये location है जी 8080 Walton Boulevard, Suite 120, Irving, Texas 75063. इस लोकेशन पे जाना है आपने और ये गिव अवे जिन्होंने भी जीता है वो ये गिव अवे विच यू हैव वन वन फ्री सिरागा सांबा या फिर दम मटन बिरयानी या फिर वेजिटेबल मटन वेजिटेबल दम बिरयानी. इन तीनों में से कोई एक आप चीज़ खा सकते हैं. और आप तमाम लोगों की फ़ोन कॉल्स अंकिता अपेक्षा प्रियंका दीपा रागिनी एंड मैनी मोर अभी भी मुझे फ़ोन लाइन्स बज हो रही हैं बट कॉन्टेस्ट का टाइम हो चुका है ख़त्म. हमारी आज की विनर हैं मैथ के फॉर्मूले से निकलता है विनर जी, मैं नहीं निकालती, आपकी लक फैसला करती है. रागिनी मलिक, रागिनी कांग्रेचुलेशंस, आपने जीत लिया है ये गिव अवे. हमें दो दिन का टाइम दें आपका नाम और नंबर फ्यूजन रिपब्लिक इंडियन किचन पहुंचाने के लिए एट अर्विंग लोकेशन. और उसके बाद सात दिन का टाइम है आपके पास टू गो टू दिस लोकेशन एंड गेट योर फ्री गिव अवे सरीगा सिरागा सांबा मटन दम बिरयानी या फिर वेजिटेबल दम बिरयानी. सो और आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, आपकी पार्टिसिपेशन का एज ऑलवेज बहुत बहुत शुक्रिया. रियली रियली मैटर्स टू मी अ लॉट. थैंक यू.

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
3: Floors clean.
4: Check.
3: Windows clean.
4: Check.
3: Kitchen clean.
4: Check.
3: Air ducts clean.
4: Wait, air ducts bhi clean karna hota hai?
5: Bilkul. Jo dikhta hai, wo to hum clean kar lete hain. Lekin jo nahi dikhta, uska kya? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush. Plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices, ya phir any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
10: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया। ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
11: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
10: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
11: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
10: ये क्या होता?
11: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
12: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस। फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
13: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल।
14: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
15: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे।
16: अरे, बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्डवाइड को बुलाते हैं।
15: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
16: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
15: इंडिया तक।
16: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्ड वाइड, कम्प्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
13: SFL वर्ल्डवाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
17: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
18: अगर
3: आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
18: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो। जॉइन पासिया एंड मार्केट योर बिजनेस फॉर फ्री। शोकेस योर डील्स एंड गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स नियरबाय। पासिया, बी वेयर योर कस्टमर्स आर लुकिंग।
19: हाय, दिस इज विनय पाठक एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन फन एशिया रेडियो।

और जी, रक्षाबंधन इज अराउंड द कॉर्नर एंड दिस टाइम फन एशिया रेडियो एंड चौकटाओ कैसीनो एंड रिजॉर्ट इन ड्यूरेंट आपके लिए लेकर आए हैं एक्साइटिंग डेली प्राइजेस एज वेल एज द ग्रैंड प्राइज. दीज आर डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज और ग्रैंड प्राइज है एन अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटाओ कैसीनो एंड रिजॉर्ट ड्यूरेंट. तो आपको क्या करना है, आपको अपनी एक मिनट का वॉइस नोट बनाना है वे यू आर गोइंग टू शेयर अ मेमोरी, ब्यूटिफुल मेमोरी विद योर सिबलिंग. And send that voice note to WhatsApp 1-214-837-7147. 214-837-7147 पे आप WhatsApp कीजिए इस नोट को एंड यू विल ऑटोमेटिकली एंटर इन टू दीज प्राइजेस. एंड कंप्लीट कॉन्टेस्ट डिटेल्स आपको हमारे फन एशिया रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस पे मिल जाएंगे. चौकटाओ कैसीनो एंड रिजॉर्ट इज द प्लेस वेयर यू मेक अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. यू हैव टू बी 21 ईयर्स और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई एंड व्हाइल यू आर देयर प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली. और अब जो है इट इज़ ऑलमोस्ट टाइम नाउ फॉर मी टू से बाय बाय टू यू. लेकिन मैं आपसे मिलूंगी कल और एज प्रॉमिस्ड जी कल लेकर आऊंगी आपके लिए 90s का बॉलीवुड लेकर आती हूं. और कल का 90s का बॉलीवुड होगा डेडिकेटेड टू कुमार सानू. कुमार सानू जी वैसे आ रहे हैं डालस में. सो तैयार हो गए हैं क्या आप लोग एक खूबसूरत शाम के लिए जिसमें आपको मिलेंगी अनफॉरगेटेबल टाइमलेस मेमोरीज, वो 90s का नॉस्टैल्जिया म्यूजिक जिसने मेरे लिए तो खैर बॉलीवुड को डिफाइन किया. आई एम नॉट श्योर अबाउट यू, लेकिन वो जो कुमार सानू साहब की आवाज और वो गाने, वो सारे गाने वैसे मैं आपको कल सुनाने वाली हूँ वो 90s के बॉलीवुड में. लेकिन अगर आप जो है लाइव गाना चाहते हैं, वो लाइव एनर्जी देखना चाहते हैं जो कि जरूर देखना चाहिए आपको, तो कुमार सानू साहब का कॉन्सर्ट आ रहा है जी. दिस इज अनफॉरगेटेबल 90s सितंबर 11th को एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स इन प्लेनो. तो फ्री पार्किंग है इस इवेंट पे. एक्सक्लूसिव मीट एंड ग्रीट ऑप्शंस अवेलेबल हैं. आप उनका टिकट खरीद सकते हैं eventbrite.com पे जाके. अगर आपका कोई भी और सवाल है तो आप लॉग ऑन कीजिए 214-869-2668. Presented by Focus Entertainment and Fortune Group. The number is 214-869-2668. Go to eventbrite.com and buy your ticket. This is happening on September 11th at the brand new Robinson Fine Arts in Plano. With that, it is time now to say my byes to you. Thank you so much for connecting with us this afternoon. I will see you tomorrow. Have a lovely rest of your evening.

A very warm welcome to the listeners of Fun Asia Radio. I missed you all, man. Bahut sara maine aapko miss kiya Monday or Tuesday, because Wednesday and Thursday I was on off. But Monday or Tuesday, meri awaaz hi nahi nikli. Shayad biwi ki dil ki tamanna puri ho gayi ki ye banda do din kuch na bole, meri sune. Doctor ne bola, beta, na radio karna hai, na apna muh khol ke zyada baatein karni hai. Ghar jao, biwi ki suno. And that's what I did. And you know, kabhi kabhi jab aap biwi ki sun lete ho, sabke liye lesson hai. Hai? बीवी की सुनो आवाज, क्या सब कुछ वापस आ जाएगा मेरे दोस्त. नमस्कार है जी, सलाम वालेकुम है जी, सत श्री अकाल है जी. केम छो डी एफ डब्ल्यू स्टूडियो का नंबर आपके लिए हमेशा खुला रहता है जी, 972-235-5555. आवाज को आज थोड़ा नजरअंदाज कीजिएगा, मैं बंदा वही हूँ, बंदा बिंदास, मार बिंदास. दिस इज योर इवनिंग ड्राइव टाइम शो जिसका नाम है द बिंदास शो, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. एंड मेरी थोड़ा आवाज का कांड हो गया, तो मैंने कहा आज दिन को हम शुरू भी इस गाने से करेंगे. वहाँ जंगल में कांड हो गया, यहाँ मेरे गले का कांड हो गया. इट इज़ ऑल गुड. बर्थडेज एनिवर्सरीज हमेशा हमारे स्टेशन पे वेलकम है. आ जाइए, लेट्स शेयर एंड स्प्रेड दैट जॉय.

अजी सुनती हो, अजी नहीं सुनते, पर एजी जरूर सुनते हैं. एजी फिनटैक्स, आपके टैक्स कंसल्टेंट, विल डेफिनेटली लिसन टू यू. वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स एंड अकाउंटिंग फर्म्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स, वेदर यू आर इंडिविजुअल स्टार्टअप है, आपका एस्टैब्लिश बिजनेस है, विद ग्रेस ऑफ गॉड एजी फिनटैक्स ऑफर्स इनोवेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशंस एंड दे आर टेलर्ड टू फिट योर नीड्स. बुक कीपिंग हो, पेरोल हो, अकाउंटिंग हो, बैंक क्रेडिट कार्ड रिकंसिलेशन हो, या प्रोएक्टिव टैक्स प्लानिंग हो. गला तो बिल्कुल आज नाराज हो रहा है, बट आप लोग नाराज ना हो, एजी फिनटैक्स के पास जाइए. आपकी सारी नाराजगी जितने भी टैक्स प्लानर के साथ थी, जो भी आपके फ्लॉज थे, वो सारे कर देंगे ठीक. एजी फिनटैक्स ऑन द वेबसाइट, दैट्स agfintax.com, और गिव देम अ कॉल 4699429888. इज्जत कहते हैं जी बड़ी जरूरी चीज है. देखो मेरे साथ ना फालतू इज्जत की बात किया मत करो. रात को ना मच्छर भी मेरे पैर छूने आते हैं.

0: एंड व्हाट इज अप DFW, गर्मी की छुट्टियां खत्म है जी, स्कूल शुरू हो चुके हैं ऑलमोस्ट एवरीवेयर एंड कुछ कुछ काउंटीज अब लेट खोल रही हैं स्कूल, बट दैट्स ओके। आपकी जो जान सूखी हुई थी, बच्चे उन्हें तंग कर रखा था, वो धीरे धीरे वापस अपनी अपनी लहर में आ रहा है, सो डोंट वरी अबाउट इट, एवरीथिंग दैट इज नाउ विल पास, है ना। ये तो कहते हैं घर वाले भी कि बेटा घबराओ मत, जो भी बुरा है सब निकल जाएगा, और अपना टाइम तो आना ही है, वो आएगा।
1: फटके बाहर आंदे।

0: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़ावे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 डेज अ वीक 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम 9191 काइज़ावे सुइट 205 फ्रिस्को।
2: गिव योर चिल्ड्रन द गिफ्ट ऑफ स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग एंड कल्चरल आइडेंटिटी थ्रू चिन्मया मिशन्स बालविहार प्रोग्राम। Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration of Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
3: होचो
4: होको
3: ओचो
4: होको
3: ओचो
4: इट्स होको।
5: अरे बस भी करो यार।
4: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है।
5: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है। एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूड़ी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा।
1: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में। वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरीड केटरिंग ऑप्शंस। टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है. तारा कमर्शियल एनर्जी 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
2: अरे यार, घर मिल गया.
3: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग.
0: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट. अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर. वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी.
3: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
0: बिल्कुल. विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम.
4: आप पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था.
5: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा, ईस्ट प्लेनो. विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
6: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था. ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं. आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक. फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया. उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले. हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी. उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ.
0: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR. द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा. आपका हक, उनके जिम्मेदारी.
7: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
8: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
0: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
9: तुमसे मिलके दिल का है.
8: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
0: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.

अपनी जान कितनी प्यारी होती है लोगों को, सबको अपनी जान बहुत प्यारी होती है यार। कौन अपनी लाइफ को खिलवाड़ में डालता है? पीपल डोंट टेक रिस्क बिकॉज जिंदगी का खतरा, और ये जिंदगी के चक्कर में ही सारा खेल रचा हुआ है उस ऊपर वाले ने भी, है ना। अगर आपने नोटिस नहीं किया तो आप नोटिस करेंगे कि एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड जान, यू नो, जान है तो जहान है। बस एक दिन यमराज आए थे, आए और बोले मैं तेरी जान लेने आया हूँ। मैं कहा पाजी मैं तो डर गया था, तीन घर छोड़ के रहती है, ले जाओ। लो कल्याण हमारी जान लेने आए हो तो तीन घर छोड़ के रहती है, बड़ी खूबसूरत है, सुप्रिया नाम है, जब मर्जी ले जाओ। दोज वर द गोल्डन डेज, जब जान एक की जगह कही जगह जान जहान में, इतनी जान मतलब समझ रहे हो, प्राण बोल रहा हूँ यार, फूक दिया करो जान। डिस्कवर द ग्रोसरी स्टोर दैट यू बीन मिसिंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये आपके लिए आ चुका है जी ग्रैंड प्रेरी में। इसका नाम है जी हिमालयन बाजार, नाउ ओपन फॉर यू, एंड दिस इज ऑन 5103 मैग्ना खाड़ा बुलेवार्ड इन ग्रैंड प्रेरी, राइट एट द इंटरसेक्शन ऑफ 360 एंड हाईवे 20। अब आप मैंसफील्ड में रहते हैं, आर्लिंगटन में जाते हैं, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। ऑथेंटिक ग्रोसरी, फ्रेश प्रोड्यूस, प्रीमियम हलाल मीट एंड वैरायटी ऑफ एसेंशियल, साथ साथ गरम गरम समोसा, पानी पूरी, मसाला चाय और कॉफी शाम को आपको वहां लाइव मिलेगी जनाब। एंड इफ यू लिव इन अ 5 mile रेडियस, एनीथिंग ओवर $50 दैट यू ऑर्डर, घर पे मुफ्त आएगा जी, घर पे डिलीवरी हो जाएगी। पुराने जमाने में ना, मतलब हमारे लिए पुराने हुआ, 90s के जमाने में ना अखबार में ऐड आया करती थी फ्री होम डिलीवरी। मेरे चाचे का लौंडा था 4 साल का, कहता है मम्मा अब हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, सारा काम यहीं हो जाया करेगा। बट रिमेंबर द नेम हिमालयन बाजार इन ग्रैंड प्रेरी फॉर यू, मेक श्योर टू चेक दम आउट। ने प्लीज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वाटर बफ इज ऑल्सो अवेलेबल।

That was a beautiful number. Aankhon mein doob jaane do. The 19 inka band ka naam hai, and they made a fancy name. The likha hai, THE, and then number 9, and then teen, the 19. K3G, ab ye pata nahi ke kabhi khushi, kabhi nahi pata nahi. K3G, chalo K3G, Kejriwal. Apne ko kya farak padta hai yaar? Apne to aapka rakhna hai khushhal. और अपना हाल ठीक ठाक रखना है. मेरा गला खराब है दो दिन से. दो दिन मैं था नहीं. आप लोगों ने किसी ने मेरा हाल चाल नहीं पूछा ना. देख लिया मैंने आपका प्यार. यही होता है मोहब्बत, यही होती है प्यार. बस बीच में आ जाती है आवाज़ की दीवार. भाई गॉड, इतना मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगे. बट कोई बात नहीं, कर लिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ यार. एक बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड आपको मुझे बताना है जी. मैं गाना लगाऊंगा एंड आपको फटाफट पता लग ही जाना है. आप लोग बहुत तेज़ हो. गिफ्ट क्या है? फन पिज्ज़ा किचन का $10 का गिफ्ट कार्ड है भैया. एब्सोल्युटली फ्री है. आज हम एक बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑफ दिस वंडरफुल ब्यूटीफुल आर्टिस्ट एंड शी इज़ ड्यूअल प्लेयर. ये हिंदी सिनेमा में भी काम कर चुकी है, पंजाबी में भी कर चुकी है. इनका करियर स्टार्ट हुआ था देवानंद की एक फिल्म आई थी मैं 16 बरस की 1998 में. एंड देन काफ़ी और फिल्में, उनका नाम नहीं बताऊँगा, फटाफट पहचान लोगे. ये लो जी गाना. कॉलर नंबर 3 जो देगा मुझे सही जवाब ले जाएगा आज $10 का गिफ्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम फन पिज्जा किचन इन मिकिनी ऑन कस्टर्न 121. मेक श्योर कि अगर आप मुझे आंसर दे रहे हैं तो आप इसको वहां जाके इंजॉय भी कर सकें. हियर इज द ट्रैक. टेल मी हूज बर्थडे एम आई टॉकिंग अबाउट.

0: Sandali Sandali Naina Vich Tera Naam Ve Mundeya. Good evening, Fanesia. Who is this? Oh, itni hawaein kahan se chal rahi hain? Kaun se mausam se call kar rahe hain yaar aap?
1: Hello, yeah, hi, good evening.
0: Hi, good evening, brother. It is very, hello, brother, good evening. It's very windy behind you. What is happening? Are you in a, behind a fan or something?
1: Yeah, it's my AC.
0: AC is very cool, man. Very cool in the heat. Okay, tell me, brother, do you know the name of the artist?
1: Neeru Bajwa.
0: Neeru Bajwa. And aapka naam?
1: Rajesh.
0: Rajesh bhaiya kehte hain Neeru Bajwa. Caller number one the. Dusre pe kaun hai bhaiya? Radio ka volume kam kar leo, nahi to dukaan agli pe chala jata hai. Marvin, phatafat, kaun bol raha hai? Good evening.
2: Good evening. My name is Varun. Neeru Bajwa's birthday.
0: Aapne kya bola? Naam kya aapka?
2: Mera naam Varun.
0: Varun.
2: Haan ji.
0: वरुण जी कह रहे हैं नीरू बाजवा. वरुण जी, आपने पीके देखी है?
2: पीके देखी है.
0: कैसी लगी? लोग कहते कड़वी होती
2: है. अगर सिंगल मॉल्ट
0: नहीं, नहीं, नहीं, कॉफी कॉफी कॉफी ब्लैक कॉफी की बात कर रहे हैं क्या यार? वरुण भाई, आप भी ना शाम को मूड खराब कर रहे हो जनता का यार. ऐसे मत किया करो यार वरुण जी. चलो देखते हैं नेक्स्ट कौन है हमारे साथ. तीसरे नंबर का लकी कॉलर कौन हो सकता है? गुड इवनिंग फन एशिया, हुज दिस?
3: माय नेम इज कृतिका. सो हर नेम इज नीरू बाजवा.
0: बाद बाद में तो कहानी खत्म हो जाती है. पिक्चर दी एंड. ठीक कह रही है. क्या नाम, क्या नाम बोली आप अपना?
3: कृतिका.
0: कृतिका जी, कैन यू गो टू मिकिनी?
3: सॉरी,
0: मिकिनी जा सकती हैं?
3: हाँ हाँ जा सकती हूँ.
0: बहुत अच्छे, जाइए, मैंने कौन सा रोका है. पर चलो, फन पिज्जा किचन का गिफ्ट कार्ड देता हूँ. होल्ड द लाइन फॉर मी एंड आई विल कम बैक आफ्टर अ ब्रेक.
4: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
5: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं. Everyone's asking लंच में क्या है.
6: Fikar not. We have the perfect solution.
7: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
8: Breaking news! Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai transparent pricing. No hidden fees. No surprises. Aur haan, sabse badi khabar, unka AI-powered platform real-time rates compare karta hai taki aapko mile better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews. Hazaro families ka bharosa. Visit MyFamilyHomeLoan.com or call 469-734-3338. 469-734-3338. MyFamilyHomeLoan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
9: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
10: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
9: That magic removal ho. Love and relationship issues ho. Get trusted solutions with 100% privacy.
10: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn. Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar. Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
11: Dad, property papers kahan hai?
12: Laptop mein.
11: Investment?
12: Google Drive.
11: Insurance? Passwords?
12: Beta, don't worry, mujhe sab pata hai.
11: Dad, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है.
9: योर फैमिली शुडंट हैव टू सर्च फॉर आंसर्स व्हेन यू आर नॉट देयर टू गिव देम.
13: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद एनआरआई वेल्थ. विद प्रॉपर एस्टेट प्लानिंग, प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव बिल्ट एंड गिव योर फैमिली क्लैरिटी एंड कंट्रोल.
9: कॉल 669-243-5799. दैट्स 669-243-5799 और विजिट nriwealth.com फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन. एनआरआई वेल्थ. Don't leave a mess. Leave a plan.
14: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दूं.
15: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
9: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
16: वेट, इतना सब और प्राइस?
9: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा.
17: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
18: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
17: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानीपुरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी, एंड इनसाइड फूडिस्तान एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
19: फूडिस्तान इन ऑबरी, मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट।
20: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 ईयर्स older to game.

नगाड़ा बजा टेकन फ्रॉम द मूवी जब वी मेट, और देख लो आपसे बिना मिले हम मीटिंग हो गई हमारी, हर शाम को होती है मुलाकात 5 से 7, जैसे वो कहती है ना एक और हमारे पास आज फ्राइडे को कहती है 5 से 7 स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट है, क्या बात है उनकी, नवनीता उनका नाम, मेरा नाम मारवीन है, मैं तो 5 से 7 वैसे ही आपके साथ, इतनी खास कोई हमें प्रेजेंटेशन आती नहीं, बट एक सैड न्यूज़ है यार, जो लास्ट वाइट राइनो बचा था वो अब नहीं बचा भैया, ऑफिशियली एक्सटिंक्ट हो गया, मार्किंग अनदर डेवस्टेटिंग रिमाइंडर ऑफ हाउ फ्रेजाइल आवर पेरेंट्स बायोडाइवर्सिटी कैन बी, फॉर जनरेशंस राइनोज हैव फेस्ड रिलेंटलेस थ्रेट्स फ्रॉम हैबिटेट्स लॉस, पोचिंग, ह्यूमन एक्टिविटी, और डिसअपीयरेंस जो उनकी है वुड नॉट जस्ट मीन लूजिंग वन एनिमल, इट वुड मीन लूजिंग एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम, एंड दैट्स वेयर वी आर टुडे, वाइल्ड लाइफ एक्सटेंशन इज फॉर एवर, एक बार चला गया तो वापस नहीं आऊंगा, मैं कौन सा उनकी फिल्म हूँ मैं वापस आऊंगा, नहीं ब्रदर, ये जो एनिमल्स हैं ये हमारी प्रोटेक्शन है, हमारा काम है नेचर को प्रिजर्व करना, हमारा काम है, नहीं तो हो सकता है कि आने वाली जनरेशन को ये पता ही ना हो कि झरना क्या होता है, अब वो सोचते रहेंगे झरना उस लड़की का नाम है जिसने रिजेक्ट कर दिया था, पर उनको क्या पता, खैर मेरे को क्या लेना है, अपने लगाने बढ़िया गाने, सेलिब्रेटिंग द बर्थडे ऑफ नीरू बाजवा, गाना ब्रेक पे जाने से पहले भी उनका लगा था, समबडी हुज डन लॉट ऑफ मूवीज स्पेशली ऑन द पंजाब साइड, जट एंड जूलियट, जट एंड जूलियट 2, सरदार जी, लॉन्ग लाची, शड़ा, कलीकोट जोटा एंड जट एंड जूलियट 3, टुडे मार्क्स हर बर्थडे, बॉर्न इन सरी, ब्रिटिश कोलंबिया, कनेडा, 45 साल दी होगी जी, हैप्पी बर्थडे नीरू जी। ऐसे थोड़ी करते हैं यार, एक गाना लगाना ये वाला, नीरू जी का बर्थडे है, नीरू जी का गाना लो।

भाई और जमाना ना, एक्चुअली मैं देख रहा हूँ कि पुराने ज़माने में क्या होता था कि कोई आपके घर गेस्ट आया, मान लो उसने 4 रसगुल्ले खा लिए, तो जो छोटा बेटा या बेटा होता था घर में, वो जाके मम्मी को बताता, मम्मी अंकल ने 4 रसगुल्ले खा लिए, और वो बात वहीं की वहीं दबी रह जाती थी। किसी को नहीं पता लगता था सिवाय मम्मी और बेटे के कि अंकल ने 4 रसगुल्ले खाए हैं। आजकल की रिश्तेदारियाँ ऐसी हो गई हैं, घर जाते हो आप, मेहमान जो आपके रिश्तेदार हैं वो पूछते हैं, एक रसगुल्ला और ले लो ना, आप कहते हो नहीं नहीं शुक्रिया, मैं पहले ही 3-4 खा चुका हूँ। रिश्तेदार से तेजा कहते, ले 4 तो नहीं, 8 तो खा चुके हो, गिन लिए थे मैंने। सोनू निगम इज कमिंग टू टाउन, गाइस आर यू एक्साइटेड अबाउट दैट? बिकॉज आई एम। इफ यू डोंट नो, मैं बताता हुआ जाता हूँ जी, सोनू बाबा आपके लिए आ रहे हैं जी डालस फोर्ट वर्थ, एंड दिस इज गोना बी अ बिग इवेंट दैट यू डू नॉट वांट टू मिस। इतनी सोलफुल आवाज, इतने प्यारे गाने, एंड समबडी हैज गिवन अस काउंटलेस मेमोरीज। दिस इज गोना बी ऑन September 26, 8:30 PM, क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर इन एलन। याद रखिए, अभी भी आपके पास एक महीना है, बिल्कुल 1 month फ्रॉम टुडे, September 26th, एक्सपीरियंस रेवोल्यूशन विद सोनू निगम, योर फेवरेट सॉन्ग्स, दैट आइकॉनिक वॉइस, all live. Tickets available at ticketmaster.com or call 855-360-SHOWS.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
6: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: This Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases. From silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make this Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
8: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
9: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
8: नहीं।
9: बुककीपिंग अपडेटेड है?
8: नहीं।
9: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
8: वो भी नहीं।
9: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
10: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुककीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG FinTax, your growth, our strategy.
11: AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
12: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
13: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
14: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
15: हेलो टेक्सास परिवार, वेयर डू यू गो व्हेन बैंक सेज नो? आर यू सेल्फ एम्प्लॉयड and are you struggling with your qualification? Yes, we have loan options for you. So call KJ Kamna Co at 214-845-4189 kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 926641.
16: भूख लगी
17: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
18: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 ईटरी। ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
19: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी।
20: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
21: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
20: Kya matlab?
21: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
20: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
21: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
20: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
5: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
22: मेरे कल वाले खाने में डोसा, आने वाले खाने में डोसा।
23: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? योर सर्च एंड्स हियर।
24: फैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, 100% प्योर वेजिटेरियन, मेड विथ फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडलीज, कंफर्टिंग साउथ इंडियन थाली और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी। फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शंस।
23: विजिट फैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट द हाईवे 121 और कस्टर जंक्शन।
0: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.

एब्सोल्युटली बिंदास से बोलो जी, नामार बिंदास बोलो, चाहे दो घंटे के लिए मेरे साथ मजे में हो लो यार, पांच से सात यही रहता है जी शो, जिसका नाम है द बिंदास शो, ओनली ऑन 104.9 एफएम, फन इज योर रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। सॉरी मैं दो दिन लापता था, मतलब मेरी आवाज लापता हो गई थी, मेरे से नाराज हो गई थी, और दो दिन तक डॉक्टर ने कहा बेटा तुम घर जाओगे, किसी से कोई बात नहीं करोगे। वैसे तो मन में बड़ा मजा आया, वो कुछ कुछ कहती थी मैं सुनता गया, वो कुछ कहती गई मैं फिर सुनता गया, फिर वो कुछ कहती गई, मैंने कहा क्या। This part of the show is brought to you by Texas Star Rehab and Performance Center, जो कि proud to announce है जी their brand new state of the art Frisco location, जहां पे आपको orthopedic and sports injuries के साथ साथ pelvic floor therapy, massage therapy, geriatric rehabilitation, sports medicine, red light therapy and functional nutrition, they deliver personalized one-on-one care designed to help you perform at your best. And ये मैं बात आपको ऐसे नहीं बोल रहा, it's personal experience से बताऊंगा। A trusted individual, the name is Rushi, he is the practitioner who owns this practice, और इसके साथ साथ एक लोकेशन इनकी और है जो कि अर्विंग में है, राइट ऑन बेल लाइन एंड 635। ही इज बीन द गाय हुज ब्रॉट मी बैक टू माय फीट, आई हैड अ हिप रिप्लेसमेंट, आई हैड मेनी इश्यूज इन माय बोन्स, विद द राइट एक्सरसाइज, विद द राइट न्यूट्रिशन, आई एम फीलिंग मच बेटर। इफ यू हैव पेरेंट्स हु हैव नी इश्यूज, मेरी बैक अकड़ जाती है, पत्र मन कों कों करदा, इफ एनी ऑफ दोस प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट, गेट देम द राइट ट्रीटमेंट, एक्सरसाइज कैन क्योर मेनी थिंग्स एंड यू विल गेट दैट क्योर एट टेक्सास स्टार रिहैब .com is the website, वहाँ जाइए, बड़ा इजी सा है, texasstarrehab.com. One thing I do want to tell you, he's also the physiotherapist for cricketers like Sachin Tendulkar, Virendra Sehwag, the Rawalpindi Express, and also the official physiotherapist for Mumbai Indians, New York. याद रखिएगा, जिंदगी में ना बहुत तकलीफें आएंगी, जैसे वो शाहरुख खान ने कहा था ना, जिंदगी में बहुत मुश्किलें आती पर दो तरह के रास्ते होते हैं, आपका काम है मुश्किलों को इग्नोर कर दो, जैसे कि वो गोलगप्पे वाला जिसके गंदे गंदे उंगली अंगूठों से आप गोलगप्पे खाते हो ना, आलू पिचका पिचका के, भैया एक पानी और देना प्लेट, बस उसी तरह आपने अपनी मुसीबतों को नजरअंदाज करना है।

0: थोड़ी बड़ी ड्रामा क्वीन है भाई, कौन है हमारे साथ ही, इनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो वाला, गुड इवनिंग, हु इज दिस?
1: हेलो,
0: हाय,
1: मैं अमिता बोल रही हूँ।
0: अमिता जी होल्ड करेंगे आप मेरे लिए, मैं आपसे बात करता हूँ ऑफ द ईयर। इन द मीन टाइम एक ना गाना आया था और उस गाने के साथ ना गिव अवे है मेरे पास। पहले गाना सुनो फिर क्या गिव अवे बताता हूँ, सुनो।

अच्छा जी, हाय हुकू, हाय हुकू, हाय हाय नहीं है, होको होको होको, होको हुकू नहीं, होको, इट्स नॉट हाय हुकू। ये हाय हुकू तो इन्होंने होको रेस्टोरेंट से कॉपी किया, तो जो आपने गाना सुना है इनकी गलती हुई थी, इनको कहना था हाय होको, हाय होको, हाय हाय, तेरा खाना बड़ा मजा, आए आए, ऐसा करना था, बट इनसे हो गया हाय हुकू, हाय हुकू। चलो कोई बात नहीं, आपको मौका मिल रहा है जी इस लेजेंडरी प्लेस का जो खुल चुका है जी प्रेस्टन रोड पे, 2693 प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को, जहाँ पे आपको मिलेंगे जबरदस्त लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, फ्लेवरफुल करीज और द फेमस होको कोल्ड कोको। होको द कोल्ड कोको पीता, कुछ नहीं कीता। इफ यू हैवंट हैड द कोल्ड कोको फ्रॉम द होको देन नथिंग यू डिड। हाँ, ऐसी ताली ठोको, सिद्धू भी नाराज हो गया, परेशान हो गया, कहता पहले गो टू होको, हैव अ कोल्ड कोको देन ताली ठोको। एंड आपको दे रहा हूँ जी मैं मौका जहाँ पे आप जीत सकते हैं वन आइटम आलू टिक्की चाट, जबरदस्त सी आपको मुफ्त में खिलाएंगे। सवाल तो पूछने दो, सवाल ये है कि आज एक डायरेक्टर साहब का बर्थडे, डायरेक्टर साहब, ठीक है जी, डायरेक्टर साहब बर्थडे मना रहे हैं आज अपना। वो डायरेक्टर साहब ने ये फिल्म डायरेक्ट की थी जिसका मैं लगाने लगा गाना, आपको मुझे बताना है उसका नाम डायरेक्टर साहब का। जो कॉलर नंबर 3 मुझे देगा सही जवाब उसको मिलेगा जी एक आलू टिक्की चाट फ्रॉम हाय होको, हाय होको, हाय हाय, समझ गए मेरी बात, चेक करो गाना। डायरेक्टर साहब बर्थडे सेलिब्रेटिंग, कॉलर नंबर 3 होको दी आलू टिक्की वेटिंग। वाह, बर्थडे डायरेक्टर साहब सेलिब्रेटिंग, राइट विनर होको दी आलू टिक्की वेटिंग।

0: होता हुआ मैं लेफ्ट की तरफ निकल गया और बोला मैंने होको की कॉफी पियो फिर ताली ठोको। अब मुझे बताओ सर आपका नाम और डायरेक्टर साहब का नाम।
1: मेरा नाम हुआ रविशंकर, डायरेक्टर का नाम है मधुर भंडारकर।
0: आपका नाम हुआ रविशंकर, डायरेक्टर का नाम हुआ मधुर भंडारकर। देखते हैं उनके भंडारे से आज आपके लिए आलू पूरी आई है कि नहीं, बने रहे मेरे साथ। और कौन है भंडारे में एंट्री लेने वाला? गुड इवनिंग फनेशिया, कौन बोल लिया भाई?
2: भाई मैं संजय कुमार।
0: फंजय जी कैफे हैं, सब ठीक है?
2: बस सब सब ठीक है, आप कैसे हो?
0: मेरे ना
2: दो
0: एक
2: दिन से मिस कर रहा
0: मेरे,
2: हूं
0: मेरे ना मामू होते थे, एक पटियाला में रहते थे, सरदार थे। उनका ना एक दोस्त था, वो स को ना फ बोलता था। क्या बोलता था? स को।
2: अच्छा,
0: फ। सर। तो जैसे साड़ी तो फाड़ी, ठीक है, सर्दी तो फर्दी। तो एक दिन मेरे
2: अच्छा।
0: मामा जी कहीं गए हुए थे, वापस आए मामा जी तो बोलता है ओ फरदार फतनाम फिंग तू किथे गया फी आप फमाने जाना फी। और मैं कहा इतनी तो कॉफी होको ने नहीं पिला, इतनी तो फी फी फी करके कॉफी को फूके मार दी। खैर आप बताइए सर, डायरेक्टर साहब का नाम मालूम है?
2: मधुर भंडारकर सर।
0: मधुर भंडारकर, आपके आलू पूरी लिखे हुए उनके भंडारे से कि नहीं, देखने के लिए बने रहे फनेशिया के साथ। रेडियो का वॉल्यूम कम, बाहर की नॉइज बंद, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट आ चुका है। आपकी हो रही है बात बंदा बिंदास मारू बिंदास के साथ, कौन बोल रहे
3: हैं? सर भरत।
0: भरत जी कैसे हैं?
3: मैं बढ़िया सर, आप कैसे हैं?
0: बस बढ़िया। क्यों गाड़ी नहीं ठीक चल रही?
3: चल रही सर।
0: तो गाड़ी बढ़िया भी बोलो ना यार, ऐसे बस बढ़िया क्या हो? चलो डायरेक्टर साहब का नाम बताइए।
3: मधुर भंडारकर।
0: मधुर भंडारकर के भंडारे में आपके लिए आलू पूरी जरूर रखे हुए हैं। अब ये बताइए कि क्या आप फ्रिस्को जा सकते हैं?
3: यस सर।
0: वाह क्या बात है, तो दो अपने आप को ताली, कॉन्ग्रेचुलेशंस। होको का आलू टिक्की चाट खाना मजा है, तो दो ताली ठोकना और मुझे बताना। होल्ड करेंगे आप मेरे लिए लाइन, आई टेक योर इन्फॉर्मेशन ऑफ द ईयर। यस इट इज इंडीड मिस्टर मधुर भंडारकर, जिनका आज होता है जन्मदिन 26th August 1968, मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं एंड पद्मश्री वगैरह ले चुके हैं। फिल्म में बड़ी यूनिक, जैसे कि चांदनी बार, नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था फॉर द बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इशूज, देन क्रेम पेज 3 विच वॉज अनदर क्रेजी मूवी, ट्रैफिक सिग्नल 2007 लव्ड इट, फैशन 2008 जिसने बनाया जी एक ऐसा मतलब मोर्चा विच लॉट ऑफ मूवीज डिडंट गेट टू सी, नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म मिला था उसको, नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्शन मिला था एंड वाइल्स्ट अर्निंग फिल्म फेयर नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट डायरेक्टर एंड बेस्ट स्क्रीन प्ले फॉर दैट एज वेल। टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग मिस्टर भंडारकर, और उनके भंडारे से होको की तरफ से जीता है मेरे भाई ने एक आलू टिक्की चाट एब्सोल्युटली फ्री। एंड इफ यू हैवंट बीन टू होको देन आई वुड रिकमेंड यू कि जाओ होको, हैव अ कोल्ड कोको इफ यू लाइक इट, सिद्धू पाजी को याद करो और ताली ठोको। हा हा। चलो जी एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आया वापस, डोंट गो एनीवेयर, दिस इज योर इवनिंग ड्राइव टाइम शो।
4: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
5: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
6: यार मॉडर्न मंगलसूत्र ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ।
7: तो कैरेट लेन चलो, दे नाउ हैव अ स्टोर इन फ्रिस्को एंड द बेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस।
6: सीरियसली कैसा कलेक्शन है?
7: मिनिमल, डायमंड, एलिगेंट, एवरीडे स्टाइल्स। यू विल प्रोबेबली स्पेंड मोर टाइम चूजिंग देन शॉपिंग।
8: फाइंड द मंगलसूत्र दैट मैचेस योर स्टाइल एट कैरेट लेन, होम टू द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस। कैरेट लेन नाउ ओपन इन फ्रिस्को नेक्स्ट टू तनिष्क।
9: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
10: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
11: जीनी हुकम मेरी अकल हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
12: मिराज लाउंज चलिए मेरी अकल, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
13: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
12: नो प्रॉब्लम अका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
13: और एंटरटेनमेंट,
12: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में।
13: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
12: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
14: हे, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
15: लिया।
14: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
15: नहीं आया।
14: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-7772. That's 972-863-7772.
16: Visit www.senadainc.com today.
17: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
18: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
19: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
20: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
19: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट एस्ट्रो

0: तो भाई जिस जिसने जाना है होको पीनी है कोल्ड कोको, पहले एक बारी गाड़ी रोको और ताली ठोको, बीवी की तरफ मत देखना नहीं तो तुम ठुक जाओगे। भैया बात साफ कर दी है, कॉल थोड़ा इंतजार नहीं है लोगों को, बेबस जनता, मैंने होल्ड पे डाला हुआ फिर भी काटे। हेलो एक मिनट भाई, आ रहा हूँ। हेलो, हाँ भाई, हेलो, अब बोलते नहीं यार तुम, हेलो के आगे भी।
1: नमस्कार
0: वनम्र, नमस्कार सर, कोटि कोटि प्रणाम, पैरों को पैरों से ऊपर।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
2: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
0: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
3: तुमसे मिलके दिल का है।
2: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
0: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

मुझ जैसे कई लोग होंगे इस लिसनिंग ऑडियंस में जिनको लगता होगा कि कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि ये दौलत, ये शोहरत, तमाम ऐशोराम त्याग कर संन्यास ना ले लें। लगता है ना आप लोगों को भी ऐसा? पर फिर ख्याल आता है कि पहले ये चीजें आ तो जाएं,

कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप में कोई यकीन नहीं करता, होता है ऐसा यार, मुझ में भी कई लोग यकीन नहीं करते, कहते ऐसे हाँ ठीक है, यकीन नहीं करते। ये जो समस्या है ना यकीन करने की, कोई समस्या नहीं है दोस्तों। अगर कोई आप पे यकीन नहीं करता, आपने देखा कि टीवी में और बाकी जगहों पे लोग कहते हैं मैन सचिन तेंदुलकर अनबिलीवेबल है जी, कोई नया लड़का आया छक्के मारे जा अनबिलीवेबल, बट आप रियलिटी में देखो अगर इफ़ नो वन बिलीव्स यू, यू आर अनबिलीवेबल।

भाई देखो बात ऐसी है कि जो सच होता है मैं तो वही बताता हूँ। पापड़ को ले लो, जहां से तोड़ना चाहते हो वहां से कभी टूटा पापड़ नहीं यार। एक कच्चा पापड़ पक्का पापड़ जहां भी गया अपनी मर्जी का मालिक बन के रहा, और इसने और किसी की नहीं सुनी। आज के दिन हम याद कर रहे हैं जी डॉली, समबड़ी हु हैड बीन सच इंस्ट्रूमेंटल पर्सन इन इन द अमेरिकन म्यूजिक इंडस्ट्री। डॉली पार्टन वॉज हर नेम। 19th of January 1946 शी वॉज बॉर्न, पास्ड अवे यस्टरडे व्हिच वॉज द 25th of August 2026। क्वीन ऑफ कंट्री कहते थे जिन्हें। मोस्ट ऑनर्ड कंट्री परफॉर्मर रही हैं। 11 ग्रैमी अवार्ड्स, 3 एमी अवार्ड्स एंड नॉमिनेशंस व्हिच वर फॉर 2 फॉर अकेडमी अवार्ड्स, 6 गोल्डन ग्लोब्स के लिए मिले एंड अ टोनी अवार्ड एज वेल। नोन फॉर अ कल्चरल इन्फ्लुएंस एंड फिलैंथ्रोपी विया डॉलीवुड एंड द डॉलीवुड फाउंडेशन विद मोर देन 100 मिलियन रिकॉर्ड्स सोल्ड। डॉली पार्टन अमंग द बेस्ट सेलिंग म्यूजिक आर्टिस्ट ऑफ ऑल टाइम एंड वी आर डेफिनेटली गोना मिस हर। And while we do that, why don't we remember her with one of her most loved tracks, the one that is called I Will Always Love You, in memory of Dolly Parton Dean.

It is 6:35 in the studio clock, and 6:35 highway is always packed. Avoid karo yaar 6:35 ko. But 6:35 time ko avoid mat kiya karoge. Waqt jo hai wo to aapke liye rukna nahi. Udhar 6:35 ka traffic bhi waise aapke liye rukna nahi. Uski apni marzi hoti hai. Nonetheless, ek gana aur iske baad chota sa commercial break. You're listening to your evening drive time show, jiska naam hai the one and only Fun Asia Radio. Acha, aapko pata hai ki sir ka dard jo hai na, sir ka dard. Acha, isme sir ka bhi involved hai. Dekha aapne sir ka dard aur sir ka. अब ये जो सिरका मैंने दूसरा वाला लिया है, वो सिरका दर्द इस वजह से होता है क्योंकि आपका जो सिर दर्द है वो घर में रहता है, तो कभी अपने सिर दर्द से अपना सिर दबा के देखना, बिल्कुल मजा आ जाएगा.

0: I would like you all to pray for the disaster in Nepal that got struck by a surprise flood. Lots of lives are still not being able to connect to the families. I hope and pray for everyone out there.
1: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
2: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
3: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
4: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं, और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म। सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर।
5: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह। कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259।
6: वी नीड टू टॉक।
7: अब क्या हुआ?
6: नथिंग, इट्स नॉट यू।
7: ओह नो,
6: इट्स द डिस्टेंस।
7: डिस्टेंस? We live 10 minutes apart.
6: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
2: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
6: Floors clean.
8: Check.
6: Windows clean.
8: Check.
6: Kitchen clean.
8: Check.
6: Air ducts clean.
8: Wait, air ducts bhi clean karna hota hai?
9: Bilkul. Jo dikhta hai, wo to hum clean kar lete hain. Lekin jo nahi dikhta, uska kya? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No rotor brush. Plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices, ya phir any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
10: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
11: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुर्राटा चिकन टिक्का न्यू लव।
10: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
11: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
12: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
13: Hello Texas Parivar, kya aapko pata hai there is a first time home buyer program under Fannie and Freddie for conforming loans that helps you to get better rates by almost half a point to 1%. So call kijiye Kamna ko at 214-845-4189 kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 96641.
14: Hocho.
15: It's Hoko.
16: अरे बस भी करो यार।
17: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है।
16: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है?
12: एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा।
2: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको, अब फ्रिस्को में। वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस। टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज।
18: जिंदगी एक रंगमंच है।
19: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल। रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो। दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन। फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग, एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com।
20: इस रक्षाबंधन चौकटॉक कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटॉक कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837 7747 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फनीशा रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
3: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांत, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पांसिबली.
0: फ्लैश फ्लड एंड मडस्लाइड डिजास्टर अलोंग द नेपाल-चाइना तिब्बत बॉर्डर हैज किल्ड एट लीस्ट 160 पीपल एंड लेफ्ट हंड्रेड्स ऑफ फॉरेनर्स, टूरिस्ट्स एंड लोकल्स मिसिंग. द डिजास्टर स्ट्रक अर्ली ऑन वेडनेसडे, व्हिच वाज ऑगस्ट 26, हिटिंग रिवरसाइड कम्युनिटीज एंड बॉर्डर्स क्रॉसिंग पर्टिकुलरली इन नेपाल्स रसुवा या कि नवाकोट डिस्ट्रिक्ट. मेरी दरखास्त है आपसे कि हम इन सब के लिए दुआ करें. चेक विद योर फैमिली, चेक विद योर फ्रेंड्स एंड मेक श्योर एवरीबॉडी इज सेफ. डू योर बिट व्हेन यू कैन एंड एक्सटेंड दैट हेल्प व्हेन इट्स नीडेड एज वेल. ऑफ कोर्स विद दैट आई ऑल्सो वांट टू थैंक दिस लेडी दैट टुक बर्थ एंड शी इज नो लॉन्गर विद अस, बट जो ये कर गई आई थिंक दैट्स गोना स्टे विद अस फॉर एवर. आई एम टॉकिंग अबाउट अंजीजी वांगसे बॉक्साउ यानी कि मदर टेरेसा और सेंट मदर टेरेसा ऑफ कैलकटा, द अल्बेनियन इंडियन कैथोलिक नन, फाउंडर ऑफ द मिशनरीज ऑफ चैरिटी एंड अ कैथोलिक सेंट. बॉर्न इन स्कोप, द पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, शी वॉज रेज्ड इन अ डेवोलूटी कैथोलिक फैमिली. At the age of 18, she moved to Ireland to join the Sisters of Loreto and later to India, where she lived most of her life and carried out missionary work. Today, we are remembering her on her heavenly birthday, Miss Mother Teresa, Teresa of Calcutta, or the, as they call her, Saint Mother Teresa of Calcutta. Taking you to the next track, keeping the music up, this is your Evening Drive Time show, and we're almost in the last segment, ending coming up soon.

0: Hi, this is Ranbir Kapoor.
1: And I'm Vani Kapoor.
2: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
3: Official tax and finance partner, AG FinTax.
2: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: In association with Passion Health Primary Care.
4: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
5: श्रावण हमें जोड़ता है भगवान से, रक्षाबंधन हमें जोड़ता है अपनों से, और कुछ रिश्ते एक डोर से शुरू होते हैं और एक अनमोल निशानी के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और PMJ ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरो की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे।
2: PMJ Jewels, now open on 13215 Main Street, Frisco.
6: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग, एजेस 8 एंड अबव।
7: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099.
8: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
9: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000+ गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट माई फैमिली होम